0: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमैन बनना नहीं आसान है।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
2: रियली
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन,
2: हाउ
1: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ, यूज भीम ऐप टू पे,
2: इट्स द माही वे। थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।

0: above the nation. So while the Congress is reaching back to its history to defend its current position, the BJP is challenging the Congress's claim to define that history. Listen in to these political reactions before we get in a lowdown with my colleague Tejshree Purandare.
1: कमेटी की बैठक में इस बात को दोहराया गया कि जो 1937 का वंदे मातरम पर जो रेजोल्यूशन था पहले दो अंतरे गाने का वो उसी का पालन करेगी कांग्रेस। अब बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है।
2: क्या देश के नायक कौन है? बीजेपी है इस देश का नायक। इस देश के नायक सरदार पटेल, सी राजगोपाल आचार्य, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब हैं। इनके खिलाफ जाएंगे हम? जाएं जिनको जाना है उनके खिलाफ। ये तब भी इनकी खिलाफत करते थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी कर रहे हैं। ये हैं असली देश के दुश्मन। हमें इनसे लड़ना आता है, पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे।
1: आप अपनी परंपरा का पालन करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि
2: नहीं, परंपरा नहीं है, इस देश की संस्कृति है। इस देश की संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की है।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि नई मुस्लिम लीग हो गई है।
2: अरे छोड़िए, ये संघी लोग, देश के दुश्मन, गद्दार लोग, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे? इनको इस देश से निकालना जरूरी हो गया। अब
3: नो कंफ्यूजन ऑन दैट। टुडे पीडब्ल्यूसी में कांग्रेस प्रेसिडेंट कैटेगरिकली टोल्ड यस्टरडे इटसेल्फ ही सीपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस दा क्लैरिफाई कर दिया। बट अगेन टुडे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी हमने डिस्कस कर दिया। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेसोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, this type of Sardar Patel ji, this type of topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will abide that decisions. We are very very clear on that, that our Congress party workers will do that only. This is our decision.
1: वंदे मातरम को लेकर के जो आप लोग ने कहा कि दो अंतरे ही गाएंगे, बीजेपी कह रही है कि नई मुस्लिम लीग हो गई है कांग्रेस।
4: 80 साल से दो अंतरे ही गा रहे हैं। हमें कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से। कांग्रेस पार्टी का अपना इतिहास है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और आज नया तो हम कुछ कह नहीं रहे। हम तो जो 80 साल से कर रहे हैं वही कर रहे हैं।
1: वो कह रहे हैं कि नई मुस्लिम लीग।
4: और भाई वो कुछ भी कहें, कुछ भी कहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जो 80 साल से हमारे पूर्वज कर रहे हैं, हमने तो किया नहीं है। खरगे साहब ने तो किया नहीं है, सोनिया गांधी जी ने तो किया नहीं है, राहुल जी ने किया नहीं है। जो 80 साल से हो रहा हम वही कर रहे हैं।
5: आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी बैठक में जो वंदे मातरम को लेकर प्रस्ताव पारित किया है वो अत्यंत ही निंदनीय है। और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव। और वो भी कब? गुलामी के कालखंड की कार्य समिति, 1937 का प्रस्ताव। और वो भी कौन सा प्रस्ताव? जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के आगे पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करके कांग्रेस ने किया था। अर्थात कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है।
6: बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। वो वंदे मातरम जिसका उद्घोष करते हुए हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए थे, आज वो सौभाग्य का दिन आया है कि संसद ने ये तय कर दिया है वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा और वंदे मातरम का अपमान अपराध होगा। वंदे मातरम प्रतीक है हमारे राष्ट्रीय गौरव का, हमारी संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं का। वंदे मातरम का अपमान हमारे देश का अपमान है, भारत माता का अपमान है और अभी अपराध है। इसलिए कांग्रेस ने अगर पूरा वंदे मातरम नहीं गाया तो यह भयानक अपराध किया है।
1: सीतापुरसी की बैठक में वंदे मातरम को लेकर के जो फैसला हुआ दो अंतरे गाने का, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग हो गई है।
7: देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो आदत है कि हर बात में अपना हस्तक्षेप करते हैं और जो हमें गाइडलाइन खड़गे जी ने कल दी है, जो हमारा पार्टी का स्टैंड है, हम उसी के मुताबिक फॉलो करेंगे और उसी के मुताबिक चलेंगे।
0: तेजश्री इज ट्रैकिंग द लेटेस्ट डिटेल्स फॉर अस, शी जॉइंस अस लाइव एट द मोमेंट। Tejshree, the Congress, they're saying this is simply the continuation of a 90-year-old practice with Mr. Kharge challenging the BJP to file cases against Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and Sardar Patel if the version Congress sings is somehow improper?
8: Well, yes, absolutely. That's the logic the Congress party has been giving, that, you know, since 1937, we have been singing just the two paras as our tradition of Congress party is concerned. And now, given that in 2026 as well, we'll be following the same tradition and culture, and we'll be just singing two stanzas no matter what. And if you have to put us in jail, if you have to file complaint against us, go ahead, we are ready for it. But before that, you also have to file an FIR against Patel, Nehru and Mahatma Gandhi as well, is what the Congress party has been stating. However, now if we talk about as to what the BJP has been saying, we just heard number of ministers of the BJP who have been, you know, stating that this is nothing but just an insult to Vande Mataram, and this is the anti-India mindset of the Congress party that's been exposed by their statements.
0: Teji, we'll of course continue to track how the Congress and the opposition parties are reacting. As always, thanks so much for sharing that update. All right, on that note, let's turn our attention to the further stories we're tracking at the moment. You know, the cabinet meeting yesterday, that appears to have had an unusual item on the table, a performance review of the government's social media presence. NDTV's inside track on the cabinet meeting yesterday reveals that on the agenda was not just policy, but also a surprise report card. We've learned from sources that ministers were given a report tracking their activity and engagement across the platforms of X, Facebook and Instagram, covering the period from the 1st of May till the 15th of August. And sources are telling us ministers were handed a report on their social media presence. So, you know, a social media review of ministers, that may sound like a communications exercise, right? But the timing is interesting. Sources suggest that the government is also preparing a more direct outreach to young voters, with our sources indicating that ministers could soon begin visiting universities under some proposed One Day, One University initiative, engaging students and talking about government programs and schemes essentially. But this comes after sustained student mobilization around the paper leak issue and wider concerns around education and crucially jobs as well. And at a time when politics and social media are more linked than ever before, the BJP has entrusted a little-known party leader from Chhattisgarh to lead its digital machinery. Speaking to NDTV soon after his elevation, Deepak Mahaske said that Instagram is where his main focus is going to be. Vishnu Shom spoke to the new BJP IT cell chief. Here's what he told us about the BJP's roadmap.
9: I'm just curious to know, how important is it for the BJP, with elections coming up, to spread the message not only of the government but of the party? How is social media essential for communications more than ever before?
10: देखिए दो बातों का जवाब मैंने दूंगा कि एक आपने कहा कि I am replacing Amit Malvi. हमारी पार्टी में हम किसी को replace नहीं करते हैं, हमको अलग-अलग दायित्व मिलता है.
9: जी,
10: उन्होंने बहुत अच्छे से अभी तक संभाला था और पार्टी ने अब मुझे दायित्व दिया है. और एक तो ये विषय था, दूसरा सोशल मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, करता रहा है और आने वाले समय में और भी करेगा. हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जो अच्छा कंटेंट है, जो ट्रू कंटेंट है, उसको अलग अलग मीडियम से लोगों तक पहुंचाना. अलग अलग राज्यों की तासीर अलग अलग होती है, तो आइडियाज़ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एम ये रहेगा कि सरकार की उपलब्धियां, और अगर विदेशी पार्टियां अगर कुछ भ्रम फैला रही है, झूठ फैला रही है, तो उसको ट्रू कंटेंट के साथ लोगों तक पहुँचाना.
9: दीपक जी, हमने कुछ दिन पहले देखा कि प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पे ज़्यादा पोस्ट कर रहे थे. शायद बीजेपी ने इतना इंस्टाग्राम में पहले पोस्ट नहीं किया है, पर एक जेंजी, एक नया इंडिया, वो लोग शायद ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करते हैं. आप ये मानते हैं कि आप लोगों का फोकस ज़्यादा इंस्टाग्राम में होना चाहिए? ट्विटर पर तो आप लोग माहिर हो, पर डू यू थिंक यू नीड टू डू मच मोर ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया फोरम्स?
10: बिल्कुल, हम लोग सभी जितने भी मीडियम से सोशल मीडिया में, उसमें हम लोग और एक्टिविटी बढ़ाएंगे. अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए रहते हैं, लेकिन हमारे लिए सारे ग्रुप्स इम्पोर्टेंट, सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं.
9: और तो मतलब आपका फोकस, आप इंस्टाग्राम के बारे में कुछ बताइए. आई मीन, हाउ इज इट गोइंग टू बी अ रियल प्रायोरिटी फॉर द बीजेपी गोइंग फॉरवर्ड?
10: देखिए, इंस्टाग्राम तो हमारी प्रायोरिटी रहेगा ही, यूथ सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम में है. तो हर प्लेटफॉर्म्स के जो कंटेंट हैं, जो उसके ऑडियंस हैं, उसके हिसाब से हम लोग आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर प्लान करेंगे. अभी भी अच्छा प्लानिंग हो रहा है, उसको बेटर आइडियाज़ के साथ और फ्लोट करेंगे, ताकि हमारे जो स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम में ज़्यादातर यूथ जुड़ता है, तो उनके स्पेसिफिक कंटेंट हम उसमें डालने का प्रयास करेंगे। फेसबुक के ऑडियंस थोड़े से अलग हैं, ट्विटर के ऑडियंस अलग हैं, तो वो सिलेक्टिव चीज़ें रहेंगी और वैसे हम लोग कंटेंट बनाएंगे और उनको भेजने का है, ताकि जो सोशल मीडिया में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं उन तक बीजेपी की बातें पहुँच सकें।
0: All right, in other crucial news you must note, the reconstitution of the NCERT panel responsible for drafting political science textbooks for classes 11 and 12 has now opened a larger debate over who gets to shape what students are taught about India's politics, about our democracy, and about our history crucially. The 20-member textbook development team has now been tasked with preparing the new textbooks, but the controversy is over the backgrounds of some of its members, you must note. Among those named are Yadunath Deshpande, who has held organizational positions in the ABVP, former ABVP National Secretary Vandana Mishra, Prashant Divekar, who has been associated with the RSS link Janana Prabodhini. The Congress has now alleged that the government is using the textbook revision process to bring people with an RSS ideological background into institutions that are responsible for shaping school curricula. Now, Congress leader Pawan Khera has accused the government of recruiting people with RSS mindsets. The Congress and the NSUI has reacted to the matter. Listen in.
1: एनसीईआरटी की एक नई कमेटी गठित की गई है,
2: उसमें भर दिए हैं, मैंने
1: उसमें देखा, मैंने संघ की पृष्ठभूमि के कई लोग हैं, क्या आपके
2: संघी भर दिए हैं? संघियों का आपको मैं उदाहरण दूं, आप ही में से किसी एक के चैनल में परसों एक संघी ने क्या कहा था खड़गे साहब के लिए कि दलित की मानसिकता मतलब गुलामी की मानसिकता, ऐसी है ये संघ की मानसिकता, ये बनाएंगे पाठ्यक्रम।
11: कोई आश्चर्य नहीं है, ये तो हर इंस्टीट्यूशन हमारे देश में इसको कब्जे में लाने के लिए आरएसएस बीजेपी संघ परिवार वो लगे हुए हैं, और जब तक कि उनको पलटकर हमारी सरकार न आए तब तक इसको झेलना पड़ेगा।
12: एनसीईआरटी की राजनीतिक विज्ञान की किताबें लाखों करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य को तय करती हैं, लेकिन जिस तरीके से पाठ्य पुस्तक विकास समिति के अंदर जो है आरएसएस और एबीवीपी के लोगों को जो है इस समिति का सदस्य बनाया जा रहा है, ये बेहद चिंताजनक है, और इस तरीके से जो है एनसीईआरटी की गुणवत्ता और शिक्षा व्यवस्था पर जो है बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, हमारी स्पष्ट मांग है कि समिति को तुरंत प्रभाव से जो है भंग किया जाए, और साथ ही इसके अंदर जो है एक स्वतंत्र एक वास्तविक शिक्षा विशेषज्ञ को और राजनीतिक विद्वानों और जो कि संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, अनुभवी लोग हैं, उनको इस समिति का सदस्य बनाया जाए। और आरएसएस को हम लोग कहना चाहते हैं, एबीपी को हम लोग कहना चाहते हैं, सरकार को हम लोग कहना चाहते हैं कि ये आपकी प्रयोगशाला नहीं है।
0: तेजी पुरंदरे has been tracking all the latest reactions coming in. She joins us live at the moment. Tejshri, as we were discussing, this is ultimately a question of institutional credibility, right? When the people writing political science textbooks have identifiable ideological affiliations, what safeguards are in place to ensure that students get education, not political indoctrination, right, in this case?
8: Well, you see, as far as the formation of this entire committee is concerned, then it has been reconstituted as the team tasked to, prepare with the entire syllabus, the curriculum, and it also, in fact, aims to bring the students together on the basis of the academics and also, in fact, the...
0: All right, we'll just try and reconnect with my colleague Tejshri, who's been tracking all the finer details and the political reactions, crucially, beyond the political allegations as well. We currently want clarity on what the criteria is for selecting members to basically draft an NCERT textbook, and how does NCERT ensure ideological diversity and academic independence in that process? Because currently, they have a 20-member team that has been put in place, but the reconstitution of the NCERT panel, tasked with drafting political science textbooks for classes 11 and 12, that has triggered a political row for the kind of people who are part of this 20-member team. You must note that among those named are Yadunath Deshpande, who has held organizational positions in the ABVP, former ABVP National Secretary Vandana Mishra, Prashant Divekar, who has been associated with the RSS link Janana Prabodhini. So the Congress has alleged that the BJP and the RSS are attempting to influence institutions, especially educational institutions, with the Congress leader Pawan Khera also accusing the government of recruiting people with an RSS mindset. Listen in to these reactions once again.
1: एनसीईआरटी की एक नई कमेटी गठित की गई है, उसमें भर दिए, उसमें देखा मैंने संघ की पृष्ठभूमि के कई लोग हैं, क्या आपके
2: संघ ही भर दिए हैं? संघियों का आपको मैं एक उदाहरण दूं, आप ही में से किसी एक के चैनल में परसों एक संघी ने क्या कहा था खड़गे साहब के लिए कि दलित की मानसिकता मतलब गुलामी की मानसिकता, ऐसी है ये संघ की मानसिकता, ये बनाएंगे पाठ्यक्रम।
11: आश्चर्य नहीं है, ये तो हर इंस्टीट्यूशन हमारे देश में इसको कब्जे में लाने के लिए आरएसएस बीजेपी संघ परिवार वो लगे हुए हैं, और जब तक कि उनको पलटकर हमारी सरकार न आए तब तक इसको झेलना पड़ेगा।
12: एनसीईआरटी की राजनीतिक विज्ञान की किताबें लाखों करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य को तय करती हैं, लेकिन जिस तरीके से पाठ्य पुस्तक विकास समिति के अंदर जो है आरएसएस और एबीवीपी के लोगों को जो है इस समिति का सदस्य बनाया जा रहा है, ये बेहद चिंताजनक है। और इस तरीके से जो है एनसीईआरटी की गुणवत्ता और शिक्षा व्यवस्था पर जो है बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। हमारी स्पष्ट मांग है कि समिति को तुरंत प्रभाव से जो है भंग किया जाए, और साथ ही इसके अंदर जो है एक स्वतंत्र एक वास्तविक शिक्षा विशेषज्ञों को और राजनीतिक विद्वानों और जो कि संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, अनुभवी लोग हैं, उनको इस समिति का सदस्य बनाया जाए। और आरएसएस को हम लोग कहना चाहते हैं, एबीपी को हम लोग कहना चाहते हैं, सरकार को हम लोग कहना चाहते हैं कि ये आपकी प्रयोगशाला नहीं है।
0: Alright, joining us for a live reaction at the moment, we have Rashid Alvi joining us on behalf of the Congress Party. Mr. Alvi, glad to have you back. Thank you for your time. As we were discussing earlier with our colleague Tejshree as well, ultimately, do you believe this is a question of institutional credibility? Because when the people writing political science textbooks have identifiable ideological affiliations, in this case, the ABVP and the RSS, what safeguards are in place to ensure that students get education and not political indoctrination, something your party has highlighted already?
13: Basically, this BJP government has nothing to do with the Department of Education. They have been destroying it. And not only in education, everywhere, whether vice chancellor or judges of the High Court, they are introducing only RSS members. They are implementing, they are trying to implement ideology of Rashtriya Sevak Sangh. They are destroying this country. They want to change the history. How can you change the history? No, in the coming days, nobody will believe as far as this new history is concerned. I strongly condemn. It is not surprising also, because when a BJP is in power, they can do anything. They have nothing to do with the country. They have nothing to do with the people of this country. Just they want to implement ideology of Rashtriya Sevak Sangh.
0: Mr. Alvi, thank you so much for joining us on behalf of the Congress this morning. There are pertinent questions that we are raising at this point about the expertise that these members bring. Who else was considered for this post? What is the selection process exactly, and what safeguards exist crucially to ensure that the final textbooks are based on scholarship and constitutional values rather than the ideology of any political organization? And to decode that, let's go across to Tejshree Purandare, who continues to be with us. All right, I'm told we're still reconnecting with Tejshree Purandare, but the focus firmly is on the expertise that these members are likely to bring and who else was really considered in this selection process. It is a 20-member team that has been formed. Their task is to prepare the new Class 11 and Class 12 textbooks. And as I mentioned, among those named are Yadunath Deshpande, who's held organizational positions in the ABVP earlier. Former ABVP National Secretary Vandana Mishra is also part of this team. Prashant Devekar, who has been associated with the RSS link Janana Prabodhini, is part of this 20-member team too. And as you've heard, the Congress is alleging that the BJP and the RSS are attempting to influence institutions, educational institutions, political organizations, with Pawan Khera also accusing the government of recruiting people with RSS mindsets. There are pertinent... All right, I'm told we have a reaction coming in from the CPIM as well. P. Sandesh joins us on the broadcast at the moment. We've heard the Congress, what they have to say in their critique that RSS and ABVP linked members are being brought into this fold to spearhead an educational curricula. Your first thoughts regarding the matter?
13: Nothing new in No Wonder, because they are for complete association in education sector. So we have to expect more of these kinds of stuff from the RSS BJP control regime. These people who had no role in India's independence movement, you know, tried to become champions of nationalism. So ridiculous, but what to do? Unfortunately, as of now, complete power is in the hands of this team. So this is likely to continue for, you know, at least 2-4 years. But let's wait and see. See, you cannot, you know, construct history. You cannot produce it. It's a reality, a concrete reality, which you need to accept and address. But RSS BJP team is not at all ready for that. So, everywhere, not only in this committee, where are you? Who are the vice chancellors of this country? Most of our vice chancellors are, even in Kerala, RSS minded people. And what is their academic credentials? They don't have that much, you know, quality to become vice chancellors of the country. So, starting from vice chancellors to government secretaries and these so called experts are all RSS, you know, henchmen only. So, this is so ridiculous. But things will not continue like this for a long time. There will be an end for everything. And the new step up for agitation against these kinds of atrocities. That is what I can tell you at this moment.
0: All right, Mr. Kumar, thank you for your time. Thank you for joining us on behalf of the CPIM. We will, of course, revert to you for regular updates. The question isn't whether these people are qualified, the members of this 20-member panel. The question is whether the range of perspectives represented in the room is sufficiently broad for a political science textbook. What mechanism ensures that? We'll continue to track all that and more with my colleague Tejshree Purandare. For now, let's switch tracks. All right, with the 2027 Uttar Pradesh election just months away, the Samajwadi Party Congress seat sharing battle is already beginning to take shape. The Congress says discussions with the Samajwadi Party will begin in September, with a seat sharing deal that's expected to be finalized by October. And the message from the Congress is quite clear. It wants a respectable pact while asking the Samajwadi Party to show a big heart. The Congress has also backed Akhilesh Yadav as the alliance face, even as leaders on both sides continue to trade sharp barbs. And the latest sign of friction came in the viral spat between Imran Masood from the Congress and Samajwadi Party MLA Ashu Malik. In fact, that on-camera clash, it's added fresh fuel to questions over the alliance ahead of 2027, even though Imran Masood continued to downplay that entire matter. And as Ajay Dubey highlighted, that entire thing between Mr. Masood and Mr. Malik goes back to an old rivalry too. The Samajwadi Party, meanwhile, is targeting the BJP's alliance strategy and insisting that its own PDA formula will prevail.
14: मुझे लगता है सितंबर में बातचीत शुरू होगी और अक्टूबर में सब कुछ क्लियर होके और टिकट वितरण का काम चालू हो जाएगा।
1: और जो आपने शुरुआत में कहा था कि आपको बराबर की हिस्सेदारी चाहिए, आप अभी भी उस बात
14: को? तो मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि रेस्पेक्टफुल समझौता होना चाहिए। हम पार्टनर्स हैं, इंडिया ब्लॉक के साथी हैं और हम लोग मजबूती के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हम लोग हमारा लक्ष्य 2027 में सरकार बनाना और हम अखिलेश यादव जी के चेहरे को आगे बढ़ाकर चल रहे हैं, तो वो हम बड़ा दिल रखते हैं, वो भी बड़ा दिल रखें,
1: अपेक्षा कितनी
14: मजबूत,
1: अपेक्षा कितनी
14: वो बताया जाएगा, समय आने दो। अभी सीनियर लीडरशिप में अभी डिस्कशन इस मुद्दे पे होगा, तब हम एक्यूरेट बता पाएंगे। अभी एक्यूरेट नहीं बोल सकते, लेकिन सम्मानजनक होगा, ये मैं कह सकता हूँ।
0: All right, in other news, a five-hour wait at a checkpoint has now produced a viral confrontation, and one line from that confrontation has taken over the internet. That line is, "We are Gen Z. We will not tolerate this nonsense." The woman, a tourist traveling through the Dras Kargil sector, was stopped at the Minimarg checkpoint amid restrictions on movement along the route towards Zojila and Sonmarg. And in the video, she challenged

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।
7: सबका राजा प्योर मसाला।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
9: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: also likely to issue a fresh statement referring to the 1937 CWC resolution. The Congress General Secretary K.C. Venugopal has said that the party would abide by the decision taken by its leadership back in 1937, 90 years back, and that there was no confusion over its position. Going on to say that Vande Mataram is an emotional issue for the party, while accusing the BJP of only politicizing the issue.
1: सर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात को दोहराया गया कि जो 1937 का वंदे मातरम पर जो रेजोल्यूशन था पहले दो अंतरे गाने का वो उसी का पालन करेगी कांग्रेस। अब बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है।
2: क्या देश के नायक कौन है? बीजेपी है इस देश का नायक। इस देश के नायक सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब है। इनके खिलाफ जाएंगे हम, जाएं जिनको जाना है उनके खिलाफ। ये तब भी इनकी खिलाफत करते थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी कर रहे हैं। ये हैं असली देश के दुश्मन। हमें इनसे लड़ना आता है, पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे।
1: आप अपनी परंपरा का पालन करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि
2: नहीं, परंपरा नहीं है, इस देश की संस्कृति है। इस देश की संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की है।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि नई मुस्लिम लीग हो गई है।
2: अरे छोड़िए, ये संघी लोग, देश के दुश्मन, गद्दार लोग, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे? इनको इस देश से निकालना जरूरी हो गया। अब
3: टुडे पीडब्ल्यूसी में कांग्रेस प्रेसिडेंट कैटेगरिकली टोल्ड यस्टरडे इटसेल्फ ही सीपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस दा क्लैरिफाई कर दिया। बट अगेन टुडे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी हमने डिस्कस कर दिया। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेसोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, this type of Sardar Patel ji, this type of topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will abide that decisions. We are very very clear on that, that our Congress party workers will do that only. This is our decision.
1: वंदे मातरम को लेकर के जो आप लोग ने कहा कि दो अंतरे ही गाएंगे, बीजेपी कह रही है कि नई मुस्लिम लीग हो गई है कांग्रेस।
4: 80 साल से दो अंतरे ही गा रहे हैं, हमें कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से। कांग्रेस पार्टी का अपना इतिहास है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और आज नया तो हम कुछ कह नहीं रहे। हम तो जो 80 साल से कर रहे हैं वही कर रहे हैं।
1: वो कह रहे हैं कि नई मुस्लिम लीग,
4: और भाई वो कुछ भी कहें, कुछ भी कहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जो 80 साल से हमारे पूर्वज कर रहे हैं, हमने तो किया नहीं है। खरगे साहब ने तो किया नहीं है, सोनिया गांधी जी ने तो किया नहीं है, राहुल जी ने किया नहीं है। जो 80 साल से हो रहा है हम वही कर रहे हैं।
1: सीडब्ल्यूसी की बैठक में वंदे मातरम को लेकर के जो फैसला हुआ दो अंतरे गाने का, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग हो गई है।
5: देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो आदत है कि हर बात में अपना हस्तक्षेप करते हैं, और जो हमें गाइडलाइन खड़गे जी ने कल दी है, जो हमारा पार्टी का स्टैंड है, हम उसी के मुताबिक फॉलो करेंगे और उसी के मुताबिक चलेंगे।
6: वेल, बीजेपी हैज अ न्यू फाउंड पेट्रियटिज्म बेस्ड ऑन सोशल मीडिया ट्रोल्स, पेट्रियटिज्म ऑफ दोज पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, हु आर अगेंस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट। आरएसएस एंड हिंदू महासभा ऑलवेज यूज द सेम Vande Mataram to divide Indian people. So there's a difference. We are quite confident of the fact that Vande Mataram cannot be a dividing song. It is a uniting song. It was not BJP's, RSS, Hindu Mahasabha song. It was Congress's song. It was Congress song since 1896. The first Indian flag, which was unfurled in Stuttgart, Germany, by Madam Bhikaji Kama, had Vande Mataram written on it. Every session of Congress party since 1896 starts with Vande Mataram. Every session of parliament, every session of assembly ends with Vande Mataram. This is all Congress party's contribution.
0: My colleague Tejasri is joining us in order to get us details. Tejasri, the Congress on their part is saying that they are following the age-old tradition of two stanzas. That tradition is historically rooted, it's inclusive, reaffirming their 1937 position.
7: Well, yes, absolutely. It's the Congress party who has been stating that they are not going to change their stand as far as their decision is concerned. And remember that this entire controversy started from 15th of August. We also saw what happened there in the Congress headquarters. Later on, there in Goa, where a meeting was convened by the party president, Mallikarjun Kharge. There also, in fact, two stanzas were meant to be sung of Vande Mataram. And later on, now the Congress has officially announced that in any of their programs, they will be just singing only

0: लिए रहते हैं, लेकिन हमारे लिए सारे ग्रुप्स इंपॉर्टेंट, सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं।
1: और तो मतलब आपका फोकस, आप इंस्टाग्राम के बारे में कुछ बताइए। आई मीन हाउ इज इट गोइंग टू बी अ रियल प्रायोरिटी फॉर द बीजेपी गोइंग फॉरवर्ड?
0: देखिए, इंस्टाग्राम तो हमारी प्रायोरिटी रहेगा ही, यूथ सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम में है, तो हर हर प्लेटफॉर्म्स के जो कंटेंट हैं, जो उसके ऑडियंस हैं, उसके हिसाब से हम लोग आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर प्लान करेंगे। अभी भी अच्छा प्लानिंग हो रहा है, उसको बेटर आइडियाज़ के साथ और फ्लोट करेंगे, ताकि हमारे जो स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम में ज़्यादातर यूथ जुड़ता है, तो उनके स्पेसिफिक कंटेंट हम उसमें डालने का प्रयास करेंगे। फेसबुक के ऑडियंस थोड़े से अलग हैं, ट्विटर के ऑडियंस अलग हैं, तो वो सिलेक्टिव चीज़ें रहेंगी, और वैसे हम लोग कंटेंट बनाएंगे और उनको भेजने का है, ताकि जो सोशल मीडिया में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, उन तक बीजेपी की बातें पहुंच सके।
2: And with that, we're slipping into a very short break. Back with a whole lot more on the other side. Don't go anywhere.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way.
4: Hindustan mile, Hindustan se.
5: Desh ka tire, JK tire.
6: Jante hain, main Elite Matrimony kyun recommend karta hun? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी।

0: She taught them in the classroom, and police now allege that one of her own class 10 students walked into her home to steal from her and ended up stabbing her 27 times. In Telangana's Nalgonda, a 50-year-old school principal was found brutally murdered inside her home. Police say two 16-year-old students spent five days planning the theft. They allegedly wrecked her house, bought gloves, and knew she would have cash after collecting school fee. Then came the moment that changed everything. Police allege that Rupa Reddy recognized the student, and a theft turned into a brutal murder. Investigators say she was stabbed 27 times, her phone was taken, cash was stolen, but the killer may have left behind the most chilling clue of all. Babu. That was the word Rupa Reddy, the principal, uttered while speaking to her aunt shortly before her phone went silent. Police say she used Babu for her students. That single word shifted the investigation back to her school. More than 80 people were questioned, including history cheaters. Then the police zeroed in on two class 10 students, bloodstained cash and CCTV footage strengthened the case. A principal murdered in her own home, a theft that turned into a killing, and a trail that led investigators straight back to her classroom, unfortunately, to her students. I'm Vedika Sood. This is Breaking Ground at 1 p.m. These are the headlines we're tracking at this hour. Home Minister Amit Shah slams Congress's Vande Mataram, two stands a stand, calls Congress anti-national, says insulting national song, and nation is Congress's only agenda. Also, Amit Shah chairs key meeting with South chief ministers. D.K. Sivakumar and Vijay sit next to each other amid political tensions between the two states. Telangana and Puducherry chief ministers skip the home minister's crucial huddle. NCERT reshuffles its political science textbook panel with reports pointing to multiple RSS-linked members joining the team. Opposition attacks NCERT, says educational institutes have been hijacked by the RSS. India removes security barricades outside the Pakistan High Commission in the national capital in a tit-for-tat move. The action comes after Pakistan removed barricades outside the Indian High Commission in Islamabad. And Harry and Meghan are reportedly heading back to Britain this month, 6 years after stepping away from royal duties and swapping palace life for California. The political row over Vande Mataram has intensified, with the Congress reiterating its stand on the national song. Union Home Minister Amit Shah has launched a scathing attack on the Congress and said about an hour back that the Congress opposed Vande Mataram in 1937 for appeasement politics, and now they are doing it yet again. He also urged people to unite against the Congress's move. This came after the CWC meeting in which, according to sources, a resolution was passed on the issue with a consensus to sing only the first two stanzas of Vande Mataram at Congress events. The party is also likely to issue a fresh statement referring to the 1937 CWC resolution. The Congress said the party would abide by the decision taken by its leadership back in 1937 and that there was no confusion over its position. You have the Congress also hitting back at Amit Shah's comment.
1: कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है. वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे. आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है. मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है. मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है, आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे।
2: वंदे मातरम जिसका उद्घोष करते हुए हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए थे, वो वंदे मातरम जो भारत का गर्व है, वंदे मातरम को पूरा ना गाना ये वंदे मातरम का अपमान नहीं है, भारत माता का अपमान है। कांग्रेस की लीगी मानसिकता अब तक बदली नहीं है। 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने यह फैसला लिया था कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे। आज भी कांग्रेस भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं और जड़ों से जुड़ी नहीं है।
3: कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो गांधी जी का कांग्रेस था, ये कांग्रेस सोनिया गांधी का कांग्रेस है, राहुल गांधी का कांग्रेस है, जो भारत से नफरत करता है। ये सोनिया गांधी शादी के 15 साल बाद तक भारत से नफरत करती रही, भारत की नागरिकता नहीं ली।

0: आप देश को तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है।
1: सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात को दोहराया गया कि जो 1937 का वंदे मातरम पर जो रेजोल्यूशन था पहले दो अंतरे गाने का, वो उसी का पालन करेगी कांग्रेस। अब बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं मुस्लिम लीग है।
2: क्या देश के नायक कौन है? बीजेपी है इस देश का नायक। इस देश के नायक सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब हैं। इनके खिलाफ जाएंगे हम? जाएं जिनको जाना है उनके खिलाफ। ये तब भी इनकी खिलाफत करते थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी कर रहे हैं। ये हैं असली देश के दुश्मन। हमें इनसे लड़ना आता है, पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे।
1: आप अपनी परंपरा का पालन करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि
2: परंपरा नहीं है, इस देश की संस्कृति है। इस देश की संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की है।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि नई मुस्लिम लीग हो गई है।
2: अरे छोड़िए, ये संघी लोग, देश के दुश्मन, गद्दार लोग, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे? इनको इस देश से निकालना जरूरी हो गया। अब
1: मुस्लिम लीग ऑन द वंदे मातरम इशू, सर, व्हाट इज योर रिस्पांस?
3: आई टोल्ड यस्टरडे इटसेल्फ, वंदे मातरम एंड नेशनल एंथम इज एन इमोशनल थिंग फॉर अस। वी आर इमोशनली टच विद दैट, बिकॉज दैट इज बोथ द थिंग्स आर सॉन्ग्स आर इमोशनली टच विद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। BJP can say anything, but they didn't have any role in freedom struggle. Not even single BJP, somebody was there, they were totally apologized, you know that, to Britishers. These things, leave it. They cannot question our nationalism.
4: अमित शाह बोल रहे हैं कि वंदे भारत पे जो कल फैसला लिया है वो देश विरोधी फैसला है। आप लोग एक बार फिर से देश में दो तरह की परिस्थिति को डेवलप करना चाहते हैं।
5: यही लोग तो देश को आज़ादी दिलाए थे। हाँ। यही लोग संविधान बनाए थे। ऐसी बात करते हैं,
4: वो कहते हैं कि राहुल गांधी की नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी है वो वापस से मुस्लिम लीग बनती जा रही है।
5: उनके कहने से तो कांग्रेस पार्टी का कोई सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं।
6: कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कांग्रेस अध्यक्ष ने बोला, और एक प्रकार से उन्होंने कांग्रेस जनों को निर्देश भी दिया कि जो दो स्टेंजा 90 साल से हम लोग पढ़ते आए हैं, गाते आए हैं, हम वही गाएंगे। कांग्रेस से 1937 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ऐसे तमाम लोग मौजूद थे, और जिन्होंने ये तय किया था कि सिर्फ दो स्टेंजा ही पढ़ा जाएगा उसका। तो इसलिए उस ये हम लोग उन्हें तय किया कल वर्किंग कमेटी में कि कांग्रेस अपने कार्यक्रम में जो परंपरा हमारी चली आ रही है 90 सालों से, हम उस परंपरा के अनुसार हम इस गीत को गाएंगे।
7: मैं तो BJP के अध्यक्ष को बोलूंगा कि पहले दो स्टैंडर्ड भी वंदे मातरम ठीक ढंग से बोलने सीखिए, उसके बाद वंदे मातरम की बात कीजिए। वंदे मातरम का इनका संबंध ही क्या है? मैं तो कहूंगा सोनिया जी की तारीफ करूंगा। कांग्रेस भाई पहले वहां उसको विरोध करना चाहता हो, क्यों नहीं हुआ मालूम नहीं, लेकिन सोनिया जी ने ये मुद्दा लिया और खड़गे जी ने वो आगे लिया है, बहुत अच्छी बात है। ये मैं पूरा तरह से इसका समर्थन करता हूँ, और कांग्रेस वाला होने की वजह से मैं ये दो स्टांजा जी बोलूंगा, उनको क्या करने का वो करने दो।
8: इन लोगों ने तो विरोधी थे वंदे मातरम के। नितिन नवीन को मेरे सामने आ जाए, मुझे नहीं आते पूरा, लेकिन मैं देखूंगा कागज पे, और मुझे वंदे मातरम वो जितने भी है ना शुरू से लेकर अंत तक सुना दे। अभी चले, अभी मैं तैयार हूं। अब पुनः है ये हिंदू मुसलमान पे आ गए, क्योंकि इनके पास बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई, पेपर लीक, महंगाई, काला धन, पेट्रोल डीजल, गैस सिलेंडर, इसके ऊपर जवाब नहीं है। तो स्वाभाविक है कि इनको हिंदू मुसलमान पर आना है। बेचारों को खाना नहीं पचता है।
9: All right, we have some breaking news coming in. This has to do with the meeting that is underway, being chaired by the Home Minister Amit Shah with the Chief Ministers of the South. We're now getting to know that the Tamil Nadu Chief Minister Vijay, while speaking during the summit, has asked for a few issues to be resolved. In those issues are, of course, the fairer fiscal federalism for high-performing states. Also, the interstate water dispute has found mention, where Vijay said respect the law

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्थ।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, voices refusing to wait their turn. India is chasing years. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.
6: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस।

0: authorities there to the personnel there. The video has received massive backlash online.
1: हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, फिर अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर।
0: Alright, so that video has certainly gone viral, and that lady has now spoken to NDTV managing editor Shivarur. Listen in.
2: And speaking out for the first time and joining me live here on NDTV for the first time since her video from Ladakh went completely viral is the woman who was on camera having that big angry meltdown after there was a road closure for a few hours in that forward area. Madam, at your request, we are not taking your name out of respect for your request. But I would like to start by asking you what happened, because this video is viral. You are seen on camera, you know, shouting at security personnel, saying things like, "We are Gen Z. You know, how dare you do this? My taxes pay your salaries." There is a lot of anger that has come out, madam, over that video. I want your side of the story. What happened? Tell us.
3: Hello. उस दिन जो चीजें हुई थी उसका जो वीडियो लोगों ने डाला हुआ है वो करेक्ट वीडियो नहीं है। उसमें मैं हूँ और मैं वहां पे चिल्ला भी रही हूँ, शाउट भी कर रही हूँ, इवन मैं फ्रस्ट्रेट होके बहुत चीजें बोल भी चुकी हूँ उस वीडियो में, जो कि मैं जानती हूँ। और पहली बात ये कि ये वीडियो एक मंथ पुरानी है जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीजें बोली। उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे, हमें नहीं पता था कि उस दिन VIP मूवमेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है। हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे तो हमें 3-4 घंटे वहाँ सुबह से वहाँ पे वेट करते हुए हो गए। फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर और कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला कि मैम 1 घंटा और लगेगा। फिर हम लोगों ने 1 घंटा और वेट किया, वैसे वेट करते करते 6 घंटे हो गए। तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है, फौजी और शायद जो वहां पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ। हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए, हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की। उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई, मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 6 घंटे हो गए हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे, कुछ नहीं जा पा रहे, आपके VIP मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है? लेकिन उस चीज को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर, मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं रहा।
2: जी जी बिल्कुल मैडम, लेकिन लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो जो जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है, ये आपके शब्द हैं। हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम, लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज्ड जोन है, उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन ज़ी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा, यू नो माई सैलरीज पे योर टैक्सेस, और एंड इन दिस वीडियो वी कैन क्लियरली सी कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, तो इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये 1 महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि कोई किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए, वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है।
3: जी हाँ, मैंने ये सब चीजें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज्यादा गलत था, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा मेरा भी फोन ओपन है। बट जब वो चीजें सारी खत्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी क्योंकि गलती हमारी है। अगर VIP मूवमेंट था, हमें नहीं पता था,

0: स्टेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया। मैंने उन सर से वहां सॉरी भी बोला था, जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है। वहां की पुलिस को भी सॉरी बोला था। अब मैं दोबारा आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, J&K की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को, उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुंची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वजह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर या कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ कि मैं पॉपुलर होने के लिए किसी के साथ ऐसी चीजें करूंगी। मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, 25 साल की लड़की हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तहे दिल से सबसे माफी मांगती हूँ। कृपा करके आपके माध्यम से मुझे माफी दिलवाई जाए और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ 100 बार 1000 बार, कृपा करके इस चीज को बंद किया जाए।
1: मैडम बिल्कुल, और आप NDTV पर बोल रहे हैं, ये इंडिया का सबसे बड़ा TV नेटवर्क है, तो जिन जिन ऑडियंस ने आपको देखा है, ये जो वायरल वीडियो देखा है, आपकी ये जो माफ़ी है, आपकी ये जो रिग्रेट है, सब देखेंगे मैडम। मैं इसलिए आपको इस नेटवर्क पे नहीं बुलाया हूँ कि आपको आप पर शाउट करूँ या आपको स्कोल्ड करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी एक सिटीज़न है मैडम, आपने जो फ्रस्ट्रेशन में किया है वो ऑलरेडी वायरल जा चुका है, इसलिए ये आपके लिए एक मौका है कि एक्सप्लेन करने के लिए क्या हुआ था। क्योंकि और मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैडम, क्योंकि
0: जी सर,
1: सबको ये फ्रस्ट्रेशन होता है मैडम, किसको नहीं होता है, VIP मूवमेंट या मिलिट्री मूवमेंट को लेकर किसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है ना,
0: तो जी हाँ।
1: लेकिन कुछ शब्द जब हम बोलते हैं वो वायरल हो जाते हैं और इसी माहौल में बहुत बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं। ये तीन शब्द जो आपने बोला, VR Gen Z, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे, रिस्पेक्टफुली मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, आपने ये शब्द क्यों चूज किए, VR Gen Z, ये माहौल जो चल रहा है Gen Z प्रोटेस्ट को लेकर, इसलिए आपने चुना वो शब्द?
0: सर मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से वो वर्ड अचानक से आ गया, क्योंकि पीछे से बहुत लोग प्रोवोक कर रहे थे मेरे को कि हमारे साथ ये सब चीज बहुत होती है, आप लोग टूरिस्ट हैं, आपके साथ पहली बार हुई, आपको फेस करनी पड़ रही है, हम लोग रोज ये सब चीजें फेस करते हैं, ये सब चीजें उन्होंने मेरे को बताई। तो उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि अगर मैं ये सब चीजें बोलूंगी तो ये सब प्रॉब्लम हो जाएगी, बट ये चीज अचानक से हो गई। तो मैं अब क्या बोलूं इस चीज़ को, मेरा कोई अटेंशन नहीं था कि Gen Z का नाम लेके मैं कोई चीज़ ऐसा करती, ये बस गलती से चीज़ हो गई है सर।
1: देखिए मैडम, जब हम इमोशनल और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो बात निकल जाती है, मैं समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, और इसलिए मैं आपको ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि आपने ये सब क्यों बोला। क्योंकि देखिए मैडम, हम भी ऑनलाइन होते हैं, हम भी गाली खाते हैं ऑनलाइन, और आपने इस 24 घंटे में बहुत कुछ देखा होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, क्या क्या लोग बोल रहे हैं आपके खिलाफ। मेरे शो कल मेरे शो पे भी कुछ वेटरन्स थे आपके लिए कुछ मैसेज दिए थे, आपने वो भी देखा होगा। लेकिन जब आप बोलते हैं कि कश्मीर में ये हुआ और अब ये यहाँ पे हो रहा है, ये भी आपका गुस्सा था, आप एक पॉइंट, यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉइंट, इसलिए आपके गुस्से में ये बोला।
0: सर वहाँ पीछे से लोग बोल रहे थे कि आप लोग टूरिस्ट हो, आपको ये सब फेस पहली बार करना पड़ रहा है तो आपको इतना बुरा लग रहा है, हम लोग रोज ये चीज फेस करते हैं उस वीडियो में, लेकिन वो चीज किसी ने दिखाई नहीं है जो पीछे से वहाँ जनता बोल रही थी, स्पेशली मेरे को टारगेट करके, मेरे को ही एज अ गर्ल मेरे को इतना बदनाम किया गया है, विक्टिम बनाया गया है कि मैं उसके खिलाफ अब मैं क्या बोल सकती हूँ। मैं सिर्फ माफी मांग सकती हूँ, क्योंकि मेरे को ये सब चीजें नहीं आती कि मैं वायरल होने के लिए ये करूँ वो करूँ, मेरा कोई पब्लिक फिगर ही नहीं है तो मैं क्या वायरल होंगी सर, आप बताइए। मैं माफीनामा के लिए भी आपके आपके चैनल के थ्रू ये चीज भेज रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं अपना माफीनामा भी कहीं से अपलोड कर सकूं, इसलिए आपके माध्यम से मैं देश की जनता से जिनको बुरा लगा है उनसे भी सॉरी मांग रही हूँ, अपने इंडियन आर्मी से भी मांग रही हूँ, जिनकी वजह से हम लोग इतना फ्रीडमली जीते हैं, अगर वो लोग नहीं होते तो हम लोग तो घर से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सर मैं इसलिए आपके माध्यम से आगे अपनी माफी पहुंचाना चाहती हूँ बस, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ सर।
1: क्या आप Gen Z जो जनरेशन है मैडम, उनसे कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है अभी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे इतना जो वायरल हुआ है, बहुत ऐसे Gen Z लोग हैं जो बोलते हैं कि ये Gen Z का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम

0: इसका खंडन करते हैं, हम इसको इसके खिलाफ हैं ऐसे बिहेवियर का। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जेंजी को बदनाम करने के लिए प्लांट हुआ है। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियोरीज है मैडम आपके बारे में, ये सब बोला जा रहा है, तो इसके इसका रिप्लाई क्या देंगे आप?
1: सर मैं नहीं जानती कि इसका मैं क्या रिप्लाई दूं आपको, लेकिन जेंजी का जो मैंने वहां नाम लिया था वो मैंने किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया था या किसी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लिया था। वो फ्लो फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया कि हम लोग जेंजी है, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं दिनों आपको पता है एक महीने पहले जंतर मंतर पे जो चीजें चल रही थी वो दिमाग में मेरे घर कर चुकी थी, जिसकी वजह से मेरे दिमाग ने पता नहीं क्या उस टाइम क्या मुझे नहीं समझ आ रहा क्या प्रॉब्लम हुआ कि मैंने उस टाइम वो मेरे मुंह से निकल गया वो वर्ड, जबकि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मेरे को क्या मतलब बनता है कि मैं वहां पे उस सिक्योरिटी जो वो थे वहां पे लोकल पुलिस में उनसे जेंजी जेंजी बोलूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए मेरे कोई पर्टिकुलर किसी को पॉइंट नहीं था कि मैंने जेंजी को पॉइंट किया या किसी और को पॉइंट किया। मेरे बारे में लोग इतना गंदा गंदा कॉमेंट कर रहे हैं, बहुत उल्टे सीधे कॉमेंट कर रहे हैं, जिससे मेरी फैमिली मेरा सारा पूरा फ्यूचर खराब हो रहा है उस चीज की वजह से। इसलिए मैं आपके चैनल पे आई हूँ, जबकि मैं मेडिकली और फिजिकली अभी फिट नहीं हूँ कि मैं किसी से बात कर सकूँ, बट उसके बाद भी मैंने सोचा कि नहीं बोलना जरूरी है वरना लोगों को लगेगा कि मैं गलत हूँ।
0: पहले तो मैं आपसे आपको ये बोलना चाहता हूँ मैडम कि आप प्लीज़ रोइए मत, आप इमोशनल मत होइए, ये सब होता रहता है मैडम। ये इस सोशल मीडिया के ज़माने में एक चीज़ जो वायरल होता है एक दो दिन के लिए होता है, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है, तो मैं आपको बोलना
1: सर,
0: चाहता हूं
1: मेरे साथ अगर पहली बार हुई तो इसलिए थोड़ा मैं मेंटली बहुत हैरस हो गई। इवन मैं कल 19 तारीख को मैं साइबर क्राइम भी गई थी, मैंने वहां भी कंप्लेन दी कि सर मेरे साथ ये सब चीजें हो रही है। वहां मेरे को पैनिक अटैक आ गया, उन लोगों ने एम्बुलेंस भी बुलाई थी, मैं गई थी उनके पास, उन्होंने मेरे को रिसीविंग कंप्लेन भी दी कि जिसने भी आपका वीडियो इस तरीके से डाला है विदाउट परमिशन के या आपने जो भी वहां चिल्लाया, लेकिन आपका वीडियो इस तरीके से नहीं डालना चाहिए था क्योंकि गर्ल्स की प्राइवेसी, मेरा फेस हाइड नहीं किया था, जिसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन मेंटली इतना हैरेस हो गई कि उन्होंने मेरे लिए एम्बुलेंस बुला ली थी, मेरी तबीयत इतनी खराब हुई थी।
0: मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं आपको मैडम कि जो वायरल हुआ है वो हट नहीं सकता है। अब आप भी जानते हैं, आप बोल रहे हैं कि आप पब्लिक फिगर नहीं हो, ये ठीक है, लेकिन जब इंटरनेट पे कुछ डलता है मैडम आपको भी पता है कि वो वहीं पे रहता है, वायरल हो जाता है, लोग बात करेंगे उस पर, गुस्सा करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, आप सब आपको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं अभी। लेकिन मैं आपको दिल से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक इंडियन सिटीज़न है मैडम, ठीक है, आप कोई विलन नहीं हो, जो कुछ भी हुआ है आप इमोशनल हो सकते हो, आप डिप्रेस्ड हो सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि दो तीन दिन बाद ये हट जाएगा, क्योंकि आपने आपने क्लैरिफाई किया है, आपने अपने आपके शब्द के लिए रिग्रेट व्यक्त किया है, आपने माफ़ी मांगी है इंडियन आर्मी से, और देखिए जब हम शो करते हैं NDTV पर, इंडियन आर्मी ने आपसे माफ़ी नहीं मांगा है, वो समझते हैं आपके फ्रस्ट्रेशन। कल हमारे शो में इंडियन आर्मी के वेटरन्स थे मैडम, उनका बोलना था कि हम समझते हैं नागरिकों का फ्रस्ट्रेशन, हम समझते हैं, तो इसलिए सेंसिटाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप आर्मी को क्या बोलेंगे मैडम, क्योंकि एक तस्वीर, एक पिक्चर, एक इमेज, एक वीडियो का बहुत महत्व होता है, वो वायरल होता है, लोगों के मेमोरी में रहता है मैडम, तो आप आर्मी को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आर्मी एक इमोशनल चीज़ है मैडम।
1: मैं आर्मी को पहले तो जय हिंद, अपने जवान भाइयों को जो मेरे भाई बाप सब कुछ हैं जिनकी वजह से हम लोग अपने घर में सेफली सो पाते हैं, सुबह उठ पाते हैं, आप लोग बॉर्डर पे रह के हम लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हम जैसे बदतमीज लोग फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी बोल देते हैं, जबकि आप लोग हमें कभी कुछ नहीं बोलते, हम ही लोग फ्रस्ट्रेशन में आपको हमेशा पॉइंट आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने जवान भाइयों से, तमाम इंडियन आर्मी से और J&K की आर्मी से भी दिल से माफी मांगती हूँ, मुझे छोटी बहन समझ के मेरी बातों को आप प्लीज इग्नोर करें और मुझे माफ कर दें सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने ये सब चीज बोली, मुझे ये चीज बहुत रियलाइज पहले भी हुई थी, तभी मैंने वो वीडियो कभी भी नहीं चढ़ाया क्योंकि मुझे पता था मैंने वहां पे चिल्ला के गलत किया है, लेकिन आप लोगों ने कुछ भी मुझे नहीं बोला, मैं ये चीज मानती हूँ, प्लीज मेरे देश के जवान भाई मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी वहाँ पे गलती की है प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए।
0: और मैं आपको ये रीअश्योरेंस देना चाहता हूँ मैडम कि आर्मी में कोई गुस्सा नहीं है आपके खिलाफ, कोई भी गुस्सा नहीं है, वो पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता है मैडम रोड क्लोज करने में, डिले करने में, ये फॉरवर्ड एरियाज में ये सब करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है। VIP मूवमेंट्स या सिक्योरिटी मूवमेंट्स ये एक इनकन्वीनियंस है सबके लिए, और अल्टीमेटली आर्मी किसके लिए काम कर रही है मैडम, देश के लिए,
1: पब्लिक के लिए, सर हमारे लिए।
0: लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन, मैं भी एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं, हम सब इनकन्वीनियंस फेस करते हैं, आर्मी ये समझती है मैडम, ये बिल्कुल समझती है। मैं आखिरी सवाल आपको मैडम, आपकी फैमिली, आपकी परिवार, आपके पेरेंट्स वो ठीक हैं इस ये सब वायरल होने के बाद, उनका क्या मेंटल स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं आपको?
1: सर वो सब लोग, उन्होंने फोन करके मुझे इतना सुनाया कि कहने लग गए कि तू तो कभी भी ऐसे ऑनलाइन कभी कोई चीज नहीं करती, तू तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उस दिन क्या हो गया तुझे, तू तो कभी इतने तेज बात भी नहीं करती, किसी से लड़ती भी नहीं है, मतलब मैं ऑलवेज ज्यादा सपोर्टिंग रहती हूँ, जो कैट्स और डॉग्स होते हैं जिनको लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं मैं उनकी हेल्पिंग करती हूँ ऑलवेज। तो उन्होंने बोला तेरा हेल्पिंग नेचर है तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली। मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया कि ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, मुझे भी पीछे से बोला गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते, उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने इतना सब कुछ बोल दिया। तो उसके लिए मैं इसलिए बहुत सॉरी हूँ, मेरी फैमिली बहुत मेंटली बहुत इस टाइम डिस्टर्ब है क्योंकि वो हैरस हो चुकी है, सारे रिश्तेदार जितने आस पड़ोस सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस वजह पे, क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है और मुझे इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, मुझे लोग बहुत बहुत चीज़ें बोल रहे हैं जबकि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, उनको व्यूज के लिए या किसी चीज के लिए वो मुझे यूज कर रहे हैं कोई नहीं, मुझे सिर्फ अपने देश की जनता और अपने जवान भाइयों से माफी मांगनी थी आपके माध्यम से, वो मैंने मांग ली तो मेरे को अब थोड़ा बहुत दिल को सुकून है कि मैंने ये चीज करी।
0: मैडम हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक दो दिन की बात है, ये लोगों को गुस्सा आता है जब जब लोग ऐसे तस्वीर देखते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, आपको भी पता है, तो इसलिए जो आपने दिल से माफ़ी मांगी है, क्लैरिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, उसके लिए मैं आपको एडमायर करता हूँ और NDTV पर आपकी बात रखी जाएगी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम।
1: थैंक यू सर। थैंक यू।
2: All right, so that woman who went viral yesterday using the Gen Z card, apologizing, they're very sorry, apologizing to everyone, including the armed forces, and hopefully the public can leave it at that. With that, we'll sip into a short break. More news on the other side.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
6: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters.
7: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
6: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
8: So many attacks.
6: The chaos and cries of disaster zones. The fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
8: It's incredible.
6: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
8: Welcome to Left, Right and Center.
6: Hard facts.
8: War-struck country.
6: Hard questions.
8: In the Ukraine.
6: 30 years of trust.
9: In the Kargil area.
8: North Ukraine.
9: In France. In Italy.
8: At Srinagar. Vishnu Shom for NDTV.
6: Vishnu Shom. Only on NDTV.
10: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
9: I am in Ahmedabad's gift city today. This is Prime Minister Narendra Modi's dream of building an international financial center. Now think we're reaching a point where the international financial operators are the ones chasing gift city.
11: Began, there were just about 100 registrations. Today it's close to 1,250.
9: Always be that tension between your aspiration for GIFT City and the reality of Gujarat being a dry state.
11: Within the regulatory framework, everything what would be available outside the state is available.
9: I've been seeing that Edelweiss has been doing a lot of work in and around the GIFT City.
12: I think it's like making an investment in the MF business of 20 years ago.
9: Okay.
12: And hopefully 20 years later, we can say GIFT is what mutual fund is today.
9: How has customer adoption been and how are these products which are operating out of GIFT faring versus what you do outside?
12: We want this to be a destination for NRIs coming into India via multi-manager. We are also enabling something else, Indians investing abroad.
13: Well, tracking more updates coming in at this hour, a video of a tourist confronting security personnel at a checkpoint in Kargil has now gone viral. The woman was left waiting near the Minimarg checkpost in Dras after local police stopped the travel on Minimarg Zojila Sonmarg Road. The holdup was due to travel restrictions in place on that stretch. And in that video, she can be heard arguing with the army personnel, saying, and I quote, that we are Gen Z, we will not tolerate this. Telling them your salary comes from our taxes. The video has now received massive backlash online. Take a look.
14: हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखा इन्होंने किसी ताला लगा दिया पे, अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है, यहाँ पर यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। आपको
15: आपने उकसाया था
14: मैं ठीक
16: है।
14: हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसीलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए। अब आपका जो भी हुआ था मैंने उसकी वीडियो बनाई, अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना मेरा नाम बदल देना।
13: Well, that was the video, and NDTV's managing editor Shiv Varur has now spoken to Captain Yashika H. Tyagi, the former army officer and Kargil war veteran, to get more perspective on this very video. Listen into what she had to say.
17: What goes through your mind when you see this video? I'm sure you've already seen it. I have detailed the reasons why it displays a complete sense of entitlement and ignorance. But as someone who has literally defended the country in areas like this, what goes through your mind when you see someone say, we are Gen Z, and shout at security personnel because her car has been made to wait?
18: Jai Hind Shiv, you have asked me my true thoughts when I heard the sentence, tumhari tankha hamare taxpayer ke paise.
2: Welcome back. Let's get you the latest emerging from the Home Minister's meeting with Southern Chief Ministers and officials. Andhra Pradesh has pitched for stronger cooperation. Chief Minister Chandrababu Naidu has said that mutual trust to resolve issues. That is the point that he raised during this meeting. Naidu proposed a bullet train corridor as well. And Andhra also called for common logistics network. He also, and in fact, the Chief Ministers praised the Andhra Chief Minister's proposal during this meeting. Home Minister Amit Shah is chairing the 31st meeting of the Southern Zonal Council in Tamil Nadu's Mahabalipuram, and this brings together representatives from the 5 southern states, 3 union territories. In fact, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay is there, Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar, in fact, both sat next to each other, Keralam Chief Minister V.D. Satishan, and Andhra Pradesh Chief Minister Minister and Chandrababu Naidu are attending this meeting, while Puducherry Chief Minister and Telangana Chief Minister have skipped this crucial huddle. So at this meeting, Andhra Pradesh, they're pitching for stronger cooperation with Chief Minister Chandrababu Naidu, talking about mutual trust to resolve all issues. It comes at a time when, both Karnataka and Tamil Nadu are engaged in a battle over Kaveri water. Chandrababu Naidu also proposed a bullet train corridor in the region, and he called for common logistics networks, and his suggestions were clearly appreciated by the other chief ministers who are in attendance at this meeting. So that is the big breaking news coming in right now. More details emerging of this huddle that Home Minister Amit Shah is holding with the South Chief Ministers. Earlier, Tamil Nadu Chief Minister Vijay raised the issue of NEET as well as delimitation. Remember, these are two issues that are very controversial currently in Tamil Nadu. So Vijay raising the issue of delimitation, how they want that the number of seats in Parliament should be frozen to the current number, and also the sorting out of the Kaveri issue. This is something that D.K. Shivkumar also raised about Karnataka's project on the Kaveri River. So let's just listen into what was said at that meeting.
15: Kaveri, it is already very clear. We cannot discuss the Kaveri issue in this in any other meetings, because it is already pending with the Supreme Court, and the Supreme Court has been monitoring all the Kaveri water management board, and a lot of petitions are already pending in Supreme Court. So apart from Supreme Court, we cannot discuss Kaveri issue in any other forum or any other meeting or any other place. So definitely we are very cautious. Our CMO is very cautious in this, and definitely Kaveri issue has not been discussed in this issue.
2: All right, so Nirmal Kumar there, criticizing the discussion of the Kaveri water issue at this particular meeting, saying it is an issue that is already there in the Supreme Court, so there's no need to discuss it at this meeting. But let's take you through what Chandrababu Naidu spoke about at the meeting that was chaired by the Home Minister. This is the Southern Zonal Council that is being, it's the 31st meeting of the Southern Zonal Council currently underway in Mahabalipuram, and Andhra pitching for stronger cooperation, mutual trust to resolve issues. Chandrababu Naidu also proposing a bullet train corridor and calling for common logistics network, and other chief ministers there appreciating his suggestions. Moving on to other news now, the reconstitution of the NCRT panel tasked with drafting political science textbooks for classes 11 and 12 has now triggered a political row. The 20-member textbook development team has been tasked with preparing the new class 11 and class 12 textbooks, and among those named are Yadunath Deshpande, who has held organizational positions in the ABVP, former ABVP National Secretary Vandana Mishra, Prashant Divekar, who has been associated with RSS Link, Nanna Prabodhini, and Congress now has alleged that the BJP and RSS are attempting to influence institutions, with Congress leader Pawan Khera accusing the government of recruiting people with RSS mindset.
16: एनसीईआरटी की एक नई कमेटी गठित की गई है,
19: उसमें भर दिए, मैंने
16: उसमें
19: देखा, मैंने
16: संघ की पृष्ठभूमि के कई लोग हैं, क्या आपके
19: संघ ही भर दिए हैं? संघियों का आपको मैं एक उदाहरण दूं, आप ही में से किसी एक के चैनल में परसों एक संघी ने क्या कहा था खड़गे साहब के लिए कि दलित की मानसिकता मतलब गुलामी की मानसिकता, ऐसी है ये संघ की मानसिकता, ये बनाएंगे पाठ्यक्रम,
20: उसको कोई आश्चर्य नहीं है। ये तो हर इंस्टीट्यूशन हमारे देश में इसको कब्जे में लाने के लिए RSS, BJP, संघ परिवार वो लगे हुए हैं, और जब तक कि उनको पलट कर हमारी सरकार न आए तब तक इसको झेलना पड़ेगा।
21: एनसीईआरटी की राजनीतिक विज्ञान की किताबें लाखों करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य को तय करती हैं, लेकिन जिस तरीके से पाठ्य पुस्तक विकास समिति के अंदर जो है आरएसएस और एबीवीपी के लोगों को जो है इस समिति का सदस्य बनाया जा रहा है, ये बेहद चिंताजनक है, और इस तरीके से जो है एनसीईआरटी की गुणवत्ता और शिक्षा व्यवस्था पर जो है बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। हमारी स्पष्ट मांग है कि समिति को तुरंत प्रभाव से जो है भंग किया जाए, और साथ ही इसके अंदर जो है एक स्वतंत्र एक वास्तविक शिक्षा विशेषज्ञ को और राजनीतिक विद्वानों और जो कि संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, अनुभवी लोग हैं, उनको इस समिति का सदस्य बनाया जाए। और आरएसएस को हम लोग कहना चाहते हैं, एबीपी को हम लोग कहना चाहते हैं, सरकार को हम लोग कहना चाहते हैं कि ये आपकी प्रयोगशाला नहीं है।
18: Political science is a study of governance. One needs to understand that it teaches you how governance works. And if you're going to bring in certain influences in this kind of subject,

0: वो करेक्ट वीडियो नहीं है, उसमें मैं हूँ और मैं वहां पे चिल्ला भी रही हूँ, शाउट भी कर रही हूँ, इवन मैं फ्रस्ट्रेट होके बहुत चीजें बोल भी चुकी हूँ उस वीडियो में, जो कि मैं जानती हूँ। और पहली बात ये कि ये वीडियो 1 मंथ पुरानी है, जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीजें बोली। उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे, हमें नहीं पता था कि उस दिन वीआईपी मूवमेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है। हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, तो हमें 3-4 घंटे वहाँ सुबह से वहाँ पे वेट करते हुए हो गए। फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर और कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला कि मैम 1 घंटा और लगेगा। फिर हम लोगों ने 1 घंटा और वेट किया, वैसे वेट करते करते 6 घंटे हो गए। तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है, फौजी और शायद जो वहां पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ। हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए, हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की। उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई, मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 6 घंटे हो गए हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं जा पा रहे हैं, आपके वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है। लेकिन उस चीज को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर, मैं कभी सोशल मीडिया पर भी नहीं रहती।
1: जी जी बिल्कुल मैडम, लेकिन लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो जो जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है, ये आपके शब्द हैं, हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम, ये लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज जोन है, उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन जी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा, यू नो माई सैलरीज पे योर टैक्सेस, और एंड इन दिस वीडियो वी कैन क्लियरली सी कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये 1 महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि कोई किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए, वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है।
0: जी हाँ, मैंने ये सब चीजें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज्यादा गलत था, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा मेरा भी फोन ओपन है। बट जब वो चीजें सारी खत्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि गलती हमारी है, अगर वीआईपी मूवमेंट था हमें नहीं पता था, प्रेस स्टेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया, मैंने उन सर से वहां सॉरी भी बोला था जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है, वहां की पुलिस को भी सॉरी बोला था। अब मैं दोबारा आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, जे एंड के की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को, और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को, उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुंची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वजह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर या कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ कि मैं पॉपुलर होने के लिए किसी के साथ ऐसी चीजें करूंगी, मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, 25 साल की लड़की हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तहे दिल से सबसे माफी मांगती हूँ, कृपा करके आपके माध्यम से मुझे माफी दिलवाई जाए, और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ 100 बार 1000 बार, कृपा करके इस चीज को बंद किया जाए।
1: मैडम बिल्कुल, और आप एनडीटीवी पर बोल रहे हैं, ये इंडिया का सबसे बड़ा टीवी नेटवर्क है, तो
0: जी हाँ।
1: जिन जिन ऑडियंस ने आपको देखा है, ये जो वायरल वीडियो देखा है, आपकी ये जो माफी है, आपकी ये जो रिग्रेट है, सब देखेंगे मैडम। मैं इसलिए आपको इस नेटवर्क पे नहीं बुलाया हूँ कि आपको आप पर शाउट करूँ या आपको स्कोल्ड करूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी एक सिटीजन है मैडम, आपने जो फ्रस्ट्रेशन में किया है वो ऑलरेडी वायरल जा चुका है, इसलिए ये आपके लिए एक मौका है कि एक्सप्लेन करने के लिए क्या हुआ था, क्योंकि और मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैडम, क्योंकि
0: जी सर,
1: सबको ये फ्रस्ट्रेशन होता है मैडम, किसको नहीं होता है, वीआईपी मूवमेंट या मिलिट्री मूवमेंट को लेकर किसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है ना,
0: तो जी हाँ।
1: लेकिन कुछ शब्द जब हम बोलते हैं वो वायरल हो जाते हैं और इसी माहौल में बहुत बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं, ये 3 शब्द जो आपने बोला, वी आर जेन जी,

0: क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे, रिस्पेक्टफुली मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, आपने ये शब्द क्यों चूज किए, वी आर जेन जी, ये माहौल जो चल रहा है जेन जी प्रोटेस्ट को लेकर, इसलिए आपने चुना वो शब्द?
1: सर मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से वो वर्ड अचानक से आ गया, क्योंकि पीछे से बहुत लोग प्रोवोक कर रहे थे मेरे को कि हमारे साथ ये सब चीज बहुत होती है, आप लोग टूरिस्ट हैं, आपके साथ पहली बार हुई, आपको फेस करनी पड़ रही है, हम लोग रोज ये सब चीजें फेस करते हैं, ये सब चीजें उन्होंने मेरे को बताई। तो उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि अगर मैं ये सब चीजें बोलूंगी तो ये सब प्रॉब्लम हो जाएगी, बट ये चीज अचानक से हो गई। तो मैं अब क्या बोली इस चीज को, मेरा कोई अटेंशन नहीं था कि जेन जी का नाम लेके मैं कोई चीज ऐसा करती, ये बस गलती से चीज हो गई है सर।
0: देखिए मैडम, जब हम इमोशनल और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो बात निकल जाती है, मैं समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, और इसलिए मैं आपको ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि आपने ये सब क्यों बोला। क्योंकि देखिए मैडम, हम भी ऑनलाइन होते हैं, हम भी गाली खाते हैं ऑनलाइन, और आपने इस 24 घंटे में बहुत कुछ देखा होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, क्या क्या लोग yes, बोल रहे हैं आपके खिलाफ।
1: yes.
0: मेरे शो कल मेरे शो पे भी कुछ वेटरन्स थे जो आपके लिए कुछ मैसेज दिए थे, आपने वो भी देखा होगा। लेकिन जब आप बोलते हैं कि कश्मीर में ये हुआ और अब ये यहाँ पे हो रहा है, ये भी आपका गुस्सा था, आप एक पॉइंट, यू वांटेड टू मेक अ पॉइंट, इसलिए आपके गुस्से में ये बोला?
1: सर वहाँ पीछे से लोग बोल रहे थे कि आप लोग टूरिस्ट हो, आपको ये सब फेस पहली बार करना पड़ रहा है तो आपको इतना बुरा लग रहा है, हम लोग रोज ये चीज फेस करते हैं उस वीडियो में, लेकिन वो चीज किसी ने दिखाई नहीं है जो पीछे से वहां जनता बोल रही थी, स्पेशली मेरे को टारगेट करके, मेरे को ही एज अ गर्ल मेरे को इतना बदनाम किया गया है, विक्टिम बनाया गया है, कि मैं उसके खिलाफ अब मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं सिर्फ माफी मांग सकती हूँ, क्योंकि मेरे को ये सब चीजें नहीं आती कि मैं वायरल होने के लिए ये करूँ वो करूँ, मेरा कोई पब्लिक फिगर ही नहीं है तो मैं क्या वायरल होंगी सर, आप बताइए, मैं माफीनामा के लिए भी आपके आपके चैनल के थ्रू ये चीज भेज रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं अपना माफीनामा भी कहीं से अपलोड कर सकूँ, इसलिए आपके माध्यम से मैं देश की जनता से जिनको बुरा लगा है उनसे भी सॉरी मांग रही हूँ, अपने इंडियन आर्मी से भी मांग रही हूँ जिनकी वजह से हम लोग इतना फ्रीडमली जीते हैं, अगर वो लोग नहीं होते तो हम लोग तो घर से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो सर मैं इसलिए आपके माध्यम से आगे अपनी माफी पहुंचाना चाहती हूँ बस, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ सर।
0: क्या आप जेन जी जो जनरेशन है मैडम, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है अभी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे इतना जो वायरल हुआ है, बहुत ऐसे जेन जी लोग हैं जो बोलते हैं कि ये जेन जी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम इसका खंडन करते हैं, हम इसको इसके खिलाफ हैं ऐसे बिहेवियर का, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जेन जी को बदनाम करने के लिए प्लांट हुआ है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियोरीज है मैडम आपके बारे में, ये सब बोला जा रहा है, तो इसका रिप्लाई क्या देंगे आप?
1: सर मैं नहीं जानती कि इसका मैं क्या रिप्लाई दूं आपको, लेकिन जेन जी का जो मैंने वहाँ नाम लिया था वो मैंने किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया था या किसी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लिया था, वो फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया कि हम लोग जेन जी है, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं दिनों आपको पता है एक महीने पहले जंतर मंतर पे जो चीज़ें चल रही थी वो दिमाग में मेरे घर कर चुकी थी, जिसकी वजह से मेरे दिमाग ने पता नहीं क्या उस टाइम क्या मुझे नहीं समझ आ रहा क्या प्रॉब्लम हुआ कि मैंने उस टाइम वो मेरे मुंह से निकल गया वो वर्ड, जबकि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मेरे को क्या मतलब बनता है कि मैं वहां पे उस सिक्योरिटी जो वो थे वहां पे लोकल पुलिस में उनसे जेन जी बोलूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, इसलिए मेरे कोई पर्टिकुलर किसी को पॉइंट नहीं था कि मैंने जेन जी को पॉइंट किया या किसी और को पॉइंट किया, मेरे बारे में लोग इतना गंदा गंदा कॉमेंट कर रहे हैं, बहुत उल्टे सीधे कॉमेंट कर रहे हैं, जिससे मेरी फैमिली मेरा सारा पूरा फ्यूचर खराब हो रहा है उस चीज की वजह से, इसलिए मैं आपके चैनल पे आई हूँ, जबकि मैं मेडिकली और फिजिकली अभी फिट नहीं हूँ कि मैं किसी से बात कर सकूँ, बट उसके बाद भी मैंने सोचा कि नहीं बोलना जरूरी है वरना लोगों को लगेगा कि मैं गलत हूँ।
0: पहले तो मैं आपसे आपको ये बोलना चाहता हूँ मैडम कि आप प्लीज रोइए मत, आप इमोशनल मत होइए, ये सब होता रहता है मैडम, ये इस सोशल मीडिया के ज़माने में एक चीज़ जो वायरल होता है एक दो दिन के लिए होता है, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ
1: मेरे साथ पहली बार हुई तो इसलिए थोड़ा मैं मेंटली बहुत हैरस हो गई। और इवन मैं कल 19 तारीख को मैं साइबर क्राइम भी गई थी, मैंने वहां भी कंप्लेन दी कि सर मेरे साथ ये सब चीजें हो रही है। वहां मेरे को पैनिक अटैक आ गया, उन लोगों ने एम्बुलेंस भी बुलाई थी, मैं गई थी उनके पास, उन्होंने मेरे को रिसीविंग कंप्लेन भी दी कि जिसने भी आपका वीडियो इस तरीके से डाला है विदाउट परमिशन के, या आपने जो भी वहां चिल्लाया, लेकिन आपका वीडियो इस तरीके से नहीं डालना चाहिए था क्योंकि गर्ल्स की प्राइवेसी, मेरा फेस हाइड नहीं किया था, जिसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन और मेंटली इतना हैरेस हो गई कि उन्होंने मेरे लिए एम्बुलेंस बुला ली थी, मेरी तबीयत इतनी खराब हुई थी।
0: मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ आपको मैडम कि जो वायरल हुआ है वो हट नहीं सकता है। अब आप भी जानते हैं, आप बोल रहे हैं कि आप पब्लिक फिगर नहीं हो, ये ठीक है, लेकिन जब इंटरनेट पे कुछ डलता है मैडम, आपको भी पता है कि वो वहीं पे रहता है, वायरल हो जाता है, लोग बात करेंगे उस पर, गुस्सा करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, आप सब आपको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं अभी। लेकिन मैं आपको आपको दिल से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक इंडियन सिटीजन है मैडम, ठीक है, आप कोई विलन नहीं हो। जो कुछ भी हुआ है, आप इमोशनल हो सकते हो, आप डिप्रेस्ड हो सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि 2-3 दिन बाद ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्योंकि आपने आपने क्लैरिफाई किया है, आपने अपने आपके शब्द के लिए रिग्रेट व्यक्त किया है, आपने आपने माफ़ी मांगी है इंडियन आर्मी से। और देखिए, जब हम शो करते हैं NDTV पर, इंडियन आर्मी ने आपसे माफ़ी नहीं मांगा है, वो समझते हैं आपके फ्रस्ट्रेशन। कल हमारे शो में इंडियन आर्मी के वेटरन्स थे मैडम, उनका बोलना था कि हम समझते हैं नागरिकों का फ्रस्ट्रेशन, हम समझते हैं, तो इसलिए सेंसिटाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप आर्मी को क्या बोलेंगे मैडम, क्योंकि क्योंकि एक एक तस्वीर, एक पिक्चर, एक इमेज, एक वीडियो का बहुत महत्व होता है, वो वायरल होता है, लोगों के मेमोरी में रहता है मैडम, तो आप आर्मी को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आर्मी एक इमोशनल चीज़ है मैडम।
1: मैं आर्मी को पहले तो जय हिंद, अपने जवान भाइयों को, जो मेरे भाई बाप सब कुछ हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपने घर में सेफली सो पाते हैं, सुबह उठ पाते हैं, आप लोग बॉर्डर पे रह के हम लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हम जैसे बदतमीज लोग फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी बोल देते हैं, जबकि आप लोग हमें कभी कुछ नहीं बोलते, हम ही लोग फ्रस्ट्रेशन में आपको हमेशा पॉइंट आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने जवान भाइयों से, तमाम इंडियन आर्मी से और J&K की आर्मी से भी दिल से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे छोटी बहन समझ के मेरी बातों को आप प्लीज़ इग्नोर करें और मुझे माफ़ कर दें सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने ये सब चीज़ बोली, मुझे ये चीज़ बहुत रियलाइज़ पहले भी हुई थी, तभी मैंने वो वीडियो कभी भी नहीं चढ़ाया, क्योंकि मुझे पता था मैंने वहाँ पे चिल्ला के गलत किया है, लेकिन आप लोगों ने कुछ भी मुझे नहीं बोला, मैं ये चीज़ मानती हूँ, प्लीज़ मेरे देश के जवान भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी वहाँ पर गलती की है प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए।
0: और मैं आपको ये रीअश्योरेंस देना चाहता हूँ मैडम कि आर्मी में कोई गुस्सा नहीं है आपके ख़िलाफ़, कोई भी गुस्सा नहीं है, वो पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता है मैडम रोड क्लोज करने में, डिले करने में, ये फॉरवर्ड एरियाज़ में ये सब करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है। VIP मूवमेंट्स या सिक्योरिटी मूवमेंट्स, ये एक इनकन्वीनियंस है सबके लिए, और अल्टीमेटली आर्मी किसके लिए काम कर रही है मैडम, देश के लिए,
1: पब्लिक के लिए सर, हमारे लिए,
0: लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन, मैं भी एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं, हम सब इनकन्वीनियंस फेस करते हैं, आर्मी ये समझती है मैडम, ये बिल्कुल समझती है। मैं आखिरी सवाल आपको मैडम, आपकी फैमिली, आपकी परिवार, आपके पेरेंट्स, वो ठीक हैं इस ये सब वायरल होने के बाद, उनका क्या मेंटल स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं आपको?
1: सर वो सब लोग, उन्होंने फोन करके मुझे इतना सुनाया कि कहने लग गए कि तू तो कभी भी ऐसे ऑनलाइन कभी कोई चीज नहीं करती, तू तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उस दिन क्या हो गया तुझे, तू तो कभी इतने तेज बात भी नहीं करती, किसी से लड़ती भी नहीं है, मतलब मैं ऑलवेज ज्यादा सपोर्टिंग रहती हूँ, जो कैट्स और डॉग्स होते हैं जिनको लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं, मैं उनकी हेल्पिंग करती हूँ ऑलवेज। तो उन्होंने बोला तेरा हेल्पिंग नेचर है तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली, मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया कि ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, मुझे भी पीछे से बोला गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते, उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने इतना सब कुछ बोल दिया, तो उसके लिए मैं इसलिए बहुत सॉरी हूँ, मेरी फैमिली बहुत मेंटली बहुत इस टाइम डिस्टर्ब है क्योंकि वो हैरस हो चुकी है। सारे रिश्तेदार, जितने आस पड़ोस, सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस वजह पे, क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है और मुझे इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, मुझे लोग बहुत बहुत चीज़ें बोल रहे हैं जबकि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, उनको व्यूज के लिए या किसी चीज के लिए वो मुझे यूज कर रहे हैं, कोई नहीं। मुझे सिर्फ अपने देश की जनता और अपने जवान भाइयों से माफी मांगनी थी आपके माध्यम से, वो मैंने मांग ली, तो मेरे को अब थोड़ा बहुत दिल को सुकून है कि मैंने ये चीज करी।
0: मैडम, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक दो दिन की बात है, ये लोगों को गुस्सा आता है जब लोग ऐसे तस्वीर देखते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, आपको भी पता है। तो इसलिए जो आपने दिल से माफ़ी मांगी है, क्लैरिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, उसके लिए मैं आपको एडमायर करता हूँ और NDTV पर आपकी बात रखी जाएगी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम।
1: थैंक यू सर। थैंक यू।
2: All right, so that young woman, very tearful, very apologetic, and hopefully it can all be put behind now. Well, some breaking news now coming in, and the BJP plans to organize events across the country to mark 25 years of Prime Minister Narendra Modi's life in public service. In fact, Nitin Naveen will be holding a meeting this Saturday where he's going to review the preparations and what has been planned, as these events will be taking place across the country to mark the Prime Minister's 25 years in public service. Let's go across to Akhilesh for more on this story. And Akhilesh, tell us more about what the BJP is planning. It's going to be a big outreach campaign, and as always, the BJP, whenever they do events, they do it in a very big way. Tell us what's planned.
3: Well, on Saturday, BJP President Nitin Naveen will be reviewing the preparations for the celebrations on 7th of October. PM Narendra Modi is going to complete 25 years in public office. Remember, on 7th October 2001, he took oath as the Chief Minister of Gujarat for the first time. And since then, he has been in the public office, first 13 years as Chief Minister of Gujarat, and last 12 years as Prime Minister of the country. So on this special occasion, the BJP and the NDA will be celebrating in the entire country. And BJP President Nitin Naveen has called a special meeting to review the preparations. All the BJP state presidents and general secretary organizations have been invited for this meeting. All the in-charge and the co-in-charge also will be part of the meeting. And what we've been told by the sources that for around 15 days, the BJP will be organizing programs. It will begin on the 17th September when Prime Minister Modi turns 76 this year. And this will go on till 7th of October. And different programs will be organized, including blood donation camps, Swachhata Abhiyan campaign, and all these programs will be organized in the entire country.
2: All right, Akhilesh, thanks so much for joining us with those details. So big program they're planned by the BJP, and this will be centered around the Prime Minister's birthday as well. With that, we'll slip into a short break. More news and updates on the other side. Stay with us.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आग प्योर मसाला।
8: आई मीन अहमदाबाद्स gift city today. From the lens of the regulator, how close do you think you are at this moment to achieving the dream of being Singapore, Hong Kong, New York or London when it comes to being an international center of finance?
9: What are global investors looking at? Policy stability, there's legal certainty, and there's also a tax certainty. In the last 5 years, the government of India has pretty much put in place all these things. Our regulations are now benchmarked to the best in the world.
8: Let's take the passporting of KYC, know your customer norms. Even that doesn't seem to be as easy as a lot of international bankers expect.
9: We are also doing a pilot for unassisted Aadhaar face authentication for NRIs.
8: You've seen this model operate internationally. How far has India been able to evolve with GIFT City till this moment in time?
10: Started as a place for corporates, now wealth managers, individuals, private banking, a lot is happening.
8: Which are the instruments that you think that have now come up around GIFT City in a way that people really need to know it, and if they don't, they're missing out?
10: Let's say you're going to travel. Why do you want to pay a markup on your money you spend out? Right? You should be able to spend directly from your bank account, and the bank account should be ideally able to recognize the currency.
8: चलिए हमारे तो कुलचे आ गए, आप और मैं तो ये खा लेंगे, बट ऑल दीज इंटरनेशनल फैंसी पैंट HSBC टाइप बैंकर्स, आई डाउट दे विल बी ओके विद दिस कुलचास।
10: आई एग्री विद यू दैट सोशल इंफ्रा बनते बनते बनेगा, स्पीड काफी है बनने में, पहले तो कुलचे भी नहीं थे, अभी कुलचे तो बढ़िया आ गए हैं।
6: A world of questions. Ideas that challenge the ordinary. Conversations that connect countries and cultures. Where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha. Ideas across borders. The Nepal Dialogue. 27th August. Kathmandu, Nepal.
11: While tracking more updates coming in at this hour, a video of a tourist confronting security personnel at a checkpoint in Kargil has now gone viral. The woman was left waiting near the Mini Marg checkpost in Dras after local police stopped the travel on Mini Marg Zojila Sonmarg Road. The holdup was due to travel restrictions in place on that stretch. And in that video, she can be heard arguing with the army personnel, saying, and I quote, that we are Gen Z, we will not tolerate this. Telling them your salary comes from our taxes. The video has now received massive backlash online. Take a look.
12: हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, अपना नाम भी नहीं बताया और वहाँ चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है, यहाँ पर यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। आपको
13: आपने उसाया था
12: मेरे को, हाँ मैं ठीक
14: है,
12: हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसीलिए टैक्स भरते हैं, ये लोग हमसे ऊपर हो गए। अब आपका जो भी हुआ था मैंने उसकी वीडियो बनाई, अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना मेरा नाम बदल देना।
11: Well, that was the video, and NDTV's managing editor Shiv Varur has now spoken to Captain Yashika H. Tyagi, the former army officer and Kargil war veteran, to get more perspective on this very video. Listen into what she had to say.
15: What goes through your mind when you see this video? I'm sure you've already seen it. I have detailed the reasons why it displays a complete sense of entitlement and ignorance. But as someone who has literally defended the country in areas like this, what goes through your mind when you see someone say, we are Gen Z, and shout at security personnel because her car has been made to wait?
16: Jai Hind Shiv, you have asked me my true thoughts when I heard the sentence, tumhari tankha hamare taxpayer ke paise se aati hai. So let me tell everybody that koi tankha itni zyada nahi hoti hai, koi bhi tankha. सिपाही अपनी जान दे दे, दिस इज प्योरली दैट सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म फॉर द नेशन एंड नाम नमक निशान दैट पीपल गो थ्रू ऑल एक्सट्रीम्स, नॉट तनख्वाह, नॉट टैक्स पेयर का पैसा. एंड देयर इज अ डेंजरस कल्चरल टेंडेंसी दीज डेज टुवर्ड्स यूनिफॉर्म पीपल, प्रोबेबली बिकॉज दे आर द सिंबल ऑफ द अथॉरिटी दीज डेज. एंड जस्ट if it needs to be challenged, the person who's standing behind the barricade is not making the decisions.
15: Yeah.
16: The person behind the barricade is simply working in operational capacity. You do not know the security threat. It was the same area where Battle of Kargil was fought. You have just mentioned Pulwama when a car breached the convoy. Imagine if something like this would happen. And of course, in this time,
17: a new look that reflects new India.
18: Looking sharper, looking fresher.
13: and truly contemporary.
14: NDTV has a rich legacy.
18: Generations have grown up watching NDTV.
19: We have been a fan of NDTV.
20: Hero Shubkamnaye.
21: All the very, very best NDTV.
22: Congratulations, NDTV.
23: Dher sari badhai, dher sari Shubkamnaye.
24: My best wishes to NDTV.
25: I wish all the best.
26: All the best.
27: All the best.
28: All the very best.
29: Badhai dena chahta hu, Shubkamnaye deta hu.
30: Bahut bahut badhai deta hu.
31: Meri bahut Shubkamnaye.
32: Bahut bahut Shubkamnaye deta hu.
33: Good luck, NDTV.
34: The entire NDTV.
35: NDTV.
36: NDTV.
37: NDTV.
38: NDTV.
39: NDTV.
40: NDTV.
41: NDTV.
42: NDTV team, all the very best.

0: Sources tell NDTV Rahul Gandhi at the Congress Working Committee meeting targeted the Prime Minister, stating that Modi is finished and Congress must stay aggressive. NCERT reshuffles its political science textbook panel with reports pointing to multiple RSS-linked members joining the team. Opposition attacks, NCERT says, education institutes hijacked by RSS. Tarun Tejpal moves to the Supreme Court. Tejpal challenges the High Court's verdict. This is, of course, the former Telka editor-in-chief Tarun Tejpal, who has moved to the Supreme Court. And this is regarding the 2013 sexual assault case in which he is imprisoned. Harry and Meghan are reportedly heading back to Britain this month, 6 years after stepping away from royal duties and swapping palace life for California. A top focus on Prime 5 today, a video of a tourist confronting security personnel at a checkpoint in Kargil has now gone viral. The woman was left waiting near the Minimarg checkpost in Dras after local police stopped travel on the Minimarg Zojila Sonmarg road. The holdup was due to travel restrictions in place on that stretch. But in this video, she can be heard arguing with the army personnel, saying, "We are Gen Z. We will not tolerate this nonsense," telling them, "Your salary comes from our taxes." The video has received massive backlash online.
1: हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, फिर अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है, यहाँ पर हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए। अब आपका जो भी हुआ था मैंने उसकी वीडियो बनाई, अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना मेरा नाम बदल देना।
0: The lady in this video has now spoken to NDTV's managing editor Shiv Arur. Take a look.
2: What happened? Because this video is viral. You are seen on camera, you know, shouting at security personnel, saying things like, "We are Gen Z. You know, how dare you do this? My taxes pay your salaries." There is a lot of anger that has come out, madam, over that video. I want your side of the story. What happened? Tell us.
3: Hello. उस दिन जो चीजें हुई थी उसका जो वीडियो लोगों ने डाला हुआ है वो करेक्ट वीडियो नहीं है। उसमें मैं हूँ और मैं वहां पे चिल्ला भी रही हूँ, शाउट भी कर रही हूँ, इवन मैं फ्रस्ट्रेट होके बहुत चीजें बोल भी चुकी हूँ उस वीडियो में, जो कि मैं जानती हूँ। और पहली बात ये कि ये वीडियो एक मंथ पुरानी है जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीजें बोली। उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे, हमें नहीं पता था कि उस दिन वीआईपी मूवमेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है। हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे तो हमें 3-4 घंटे वहाँ सुबह से वहाँ पे वेट करते हुए हो गए। फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर और कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला कि मैम 1 घंटा और लगेगा। फिर हम लोगों ने 1 घंटा और वेट किया, वैसे वेट करते करते 6 घंटे हो गए। तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है, फौजी और शायद जो वहां पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ। हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए, हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की। उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई, मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 6 घंटे हो गए हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे, कुछ नहीं जा पा रहे, आपके VIP मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है। लेकिन उस चीज को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर, मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं रहा।
2: जी जी बिल्कुल मैडम, लेकिन लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो जो जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है, ये आपके शब्द हैं, हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम, ये लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज जोन है, उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन जी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा, यू नो माय सैलरीज पे योर टैक्सेस, और एंड इन दिस वीडियो वी कैन क्लियरली सी कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये 1 महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि कोई किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए, वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है।
3: जी हाँ, मैंने ये सब चीजें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज्यादा गलत था, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा मेरा भी फोन ओपन है, बट जब वो चीजें सारी खत्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी क्योंकि गलती हमारी है, अगर VIP मूवमेंट था हमें नहीं पता था, प्रेस स्टेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया, मैंने उन सर से वहां सॉरी भी बोला था जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है, वहां की पुलिस को भी सॉरी बोला था, अब मैं दोबारा आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, J&K की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को, और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को, उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुंची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वजह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर या कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ कि मैं पॉपुलर होने के लिए किसी के साथ ऐसी चीजें करूंगी, मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, 25 साल की लड़की हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तहे दिल से सबसे माफी मांगती हूँ, कृपा करके आपके माध्यम से मुझे माफी दिलवाई जाए और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ 100 बार 1000 बार, कृपा करके इस चीज को बंद किया जाए।
2: और मैं आपको ये रीअश्योरेंस देना चाहता हूँ मैडम कि आर्मी में कोई गुस्सा नहीं है आपके खिलाफ, कोई भी गुस्सा नहीं है, वो पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता है मैडम रोड क्लोज करने में, डिले करने में, ये फॉरवर्ड एरियाज़ में ये सब करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है, VIP मूवमेंट्स या सिक्योरिटी मूवमेंट्स, ये एक इनकन्वीनियंस है सबके लिए, और अल्टीमेटली आर्मी किसके लिए काम कर रही है मैडम, देश के लिए,
3: पब्लिक के लिए सर, हमारे लिए,
2: लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन, मैं भी एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं, हम सब इनकन्वीनियंस फेस करते हैं, आर्मी ये समझती है मैडम, ये बिल्कुल समझती है। मैं आखिरी सवाल आपको मैडम, आपकी फैमिली, आपके परिवार, आपके पेरेंट्स वो ठीक हैं इस ये सब वायरल होने के बाद, उनका क्या मेंटल स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं आपको?
3: सर वो सब लोग, उन्होंने फोन करके मुझे इतना सुनाया कि कहने लग गए कि तू तो कभी भी ऐसे ऑनलाइन कभी कोई चीज नहीं करती, तू तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उस दिन क्या हो गया तुझे, तू तो कभी इतने तेज बात भी नहीं करती, किसी से लड़ती भी नहीं है, मतलब मैं ऑलवेज ज्यादा सपोर्टिंग रहती हूँ, जो कैट्स और डॉग्स होते हैं जिनको लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं मैं उनकी हेल्पिंग करती हूँ ऑलवेज, तो उन्होंने बोला तेरा हेल्पिंग नेचर है तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली, मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया कि ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, मुझे भी पीछे से बोला गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते, उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने इतना सब कुछ बोल दिया, तो उसके लिए मैं इसलिए बहुत सॉरी हूँ, मेरी फैमिली बहुत मेंटली बहुत इस टाइम डिस्टर्ब है क्योंकि वो हैरस हो चुकी है, सारे रिश्तेदार जितने आस पड़ोस सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस वजह पे, क्योंकि लोगों ने इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया है और मुझे इतनी गालियां पड़ रही हैं, मुझे लोग बहुत बहुत चीजें बोल रहे हैं जबकि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, उनको व्यूज के लिए या किसी चीज के लिए वो मुझे यूज कर रहे हैं कोई नहीं, मुझे सिर्फ अपने देश की जनता और अपने जवान भाइयों से माफी मांगनी थी आपके माध्यम से, वो मैंने मांग ली, तो मेरे को अब थोड़ा बहुत दिल को सुकून है कि मैंने ये चीज करी।
2: मैडम, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि

0: Facebook and X. And also apart from that, there was a ranking which was in comparison to the other opposition leaders like Rahul Gandhi, Arvind Kejriwal, and Vijay. All those top leaders who are in the opposition, their social media performance was also mentioned. So the idea was to that minister should know where do they stand as far as the reach on the social media is concerned. And apart from that, the government has also decided to launch a program called One University, One Day, which will actually cover all the ministers, and they will be going to different universities and also to the schools to listen to the students and their grievances and also their issues so that they can be addressed in the real time.
1: Right. Akhilesh, stay with me. I'll come back to you shortly. Let's also tell our viewers about how the Gen Z lingo has also taken over the parliament and the parliament debate, especially during the monsoon session, which just wrapped up a few days ago. Let's start with all the lingos that the ministers have used so far. BJP MP Bansuri Swaraj, the slang used, she used the slang clock it. Why? She used the slang to recognize something. She said that Prime Minister Modi has done a great initiative, and then she used the word clock it. Apart from that, Shrikant Lata Eknath Shinde, Shiv Sena MP, he used the word delulu, which means delusional, which means that you are being overly optimistic. Moving on, MIA is also a word which Shrikant used, which is missing in action. And also FOMO, which is fear of missing out. These are the slew of Gen Z lingo that Shrikant Lata Eknath Shinde used during the monsoon session. Apart from that, Dr. Jitendra Singh, the MOS, PMO, he used the word missing in action. This was to target Rahul Gandhi during the protest. During the protest in New Delhi, he also used the word FOMO, fear of missing out, and even MIA. So these are all the lingos, the Gen Z slangs that the parliamentarians have been using so far. Moving on, Vishnu Soam spoke to the new BJP IT cell chief, Deepak Maske. Take a look.
2: I'm just curious to know, how important is it for the BJP, with elections coming up, to spread the message, not only of the government, but of the party? How is social media essential for communications more than ever before?
3: देखिए दो बातों का जवाब मैंने दूंगा कि एक आपने कहा कि I am replacing Amit Malvi. हमारी पार्टी में हम किसी को replace नहीं करते हैं, हमको अलग-अलग दायित्व मिलता है.
2: जी.
3: उन्होंने बहुत अच्छे से अभी तक संभाला था और पार्टी ने अब मुझे दायित्व दिया है. और एक तो ये विषय था, दूसरा सोशल मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, करता रहा है और आने वाले समय में और भी करेगा. हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जो अच्छा कंटेंट है, जो ट्रू कंटेंट है, उसको अलग अलग मीडियम से लोगों तक पहुंचाना. अलग अलग राज्यों की तासीर अलग अलग होती है, तो आइडियाज़ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एम ये रहेगा कि सरकार की उपलब्धियाँ, और अगर विदेशी पार्टियां अगर कुछ भ्रम फैला रही है, झूठ फैला रही है, तो उसको ट्रू कंटेंट के साथ लोगों तक पहुंचाना.
2: दीपक जी, हमने कुछ दिन पहले देखा कि प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पे नहीं किया है, पर एक जेन जी, एक नया इंडिया, वो लोग शायद ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करते हैं. आप ये मानते हैं कि आप लोगों का फोकस ज़्यादा इंस्टाग्राम में होना चाहिए? ट्विटर पे तो आप लोग माहिर हो, but do you think you need to do much more on Instagram and other social media forums?
3: बिल्कुल, हम लोग सभी जितने भी मीडियम्स हैं सोशल मीडिया में, उसमें हम लोग और एक्टिविटी बढ़ाएंगे. अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए रहते हैं, लेकिन हमारे लिए सारे ग्रुप्स इम्पोर्टेंट, सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं.
2: और तो मतलब आपका फोकस, आप इंस्टाग्राम के बारे में कुछ बताइए. आई मीन, हाउ इज इट गोइंग टू बी अ रियल प्रायोरिटी फॉर द बीजेपी गोइंग फॉरवर्ड?
3: देखिए, इंस्टाग्राम तो हमारी प्रायोरिटी रहेगा ही, यूथ सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम में है, तो हर प्लेटफॉर्म्स के जो कंटेंट हैं, जो उसके ऑडियंस हैं, उसके हिसाब से हम लोग आगे आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर प्लान करेंगे. अभी भी अच्छा प्लानिंग हो रहा है, उसको बेटर आइडियाज के साथ और फ्लोट करेंगे, ताकि हमारे जो स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम में ज्यादातर यूथ जुड़ता है, तो उनके स्पेसिफिक कंटेंट हम उसमें डालने का प्रयास करेंगे. फेसबुक के ऑडियंस थोड़े से अलग हैं, ट्विटर के ऑडियंस अलग हैं, तो वो सिलेक्टिव चीज़ें रहेंगी, और वैसे हम लोग कंटेंट बनाएंगे और उनको भेजने का है, ताकि जो सोशल मीडिया में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, उन तक बीजेपी की बातें पहुँच सके.
1: In other news, India and Japan sealed a pact to strengthen their maritime security.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way. थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way. थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा प्योर मसाला।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
9: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
2: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
3: A new Nepal, new possibilities.

0: हर्षवर्धन त्रिपाठी।
1: पद्मजा जी, सबसे पहले तो ये कि शौर्य ने सीधा जवाब दे दिया, और इस डिबेट में बार बार जो कहा जा रहा है कि हमें क्यों कह दिया, हमें क्यों कह दिया, तो भाई चोर की दाढ़ी में तिनका, ये एक हिंदी में कहावत होती है, तो भाई जिसके दिक्कत है वो है। लेकिन मुझे जरीवाला जी के लिए थोड़ा सा एक कहें कि दुख हो रहा है, ये अपने आप को दिमागी नक्सल कहने लगी। नक्सल के साथ दिमागी का मतलब क्या हुआ? यहाँ देश में आतंकवादी आते हैं, ब्लास्ट करते हैं, लोगों को मार देते हैं, दिमागी नक्सल हमारे लिए कौन है? शहबाज शरीफ है, आसिम मुनीर है, तो नक्सली के लिए दिमागी नक्सल है? इनको सोचना चाहिए जरा। आतंकवादियों के पीछे जो दिमाग है वो दिमागी आतंकवादी है। हमारे लिए वो शहबाज शरीफ है, आसिम मुनीर है, वो मसूद अजहर है, वो सब है। और जब इस देश का पूर्व गृह मंत्री ये कहता है, जिसने सबसे पहले कहा था कि नक्सल सपोर्टर्स जो उनको इंटेलेक्चुअल सपोर्ट है वो ज्यादा बड़ा खतरा है, और उसके बाद भी वो कह रहा है दिमागी नक्सल, मोदी विरोध में आप कहां तक चले जाएंगे?
0: और नक्सलिज्म
1: 1960s में शुरू हुआ तो किस कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों को आधार बनाकर उन्होंने ये काम शुरू किया, ये भी लोगों को पता होना चाहिए। और अभी जब नक्सलिज्म खत्म हुआ, वामपंथी आतंकवाद, माओइस्ट जो टेररिज्म है वो खत्म हुआ, तो सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों को, जो नागरिक थे उनको लाभ हुआ। उसके बावजूद भी अगर जरीवाला, मैं उम्मीद करता हूं कि डिबेट खत्म होते हुए कहेंगी कि आई एम नॉट दिमागी नक्सल।
0: बट सिंस यू मेंशन पी चिदंबरम, आई वांट टू क्विकली टेल आवर व्यूअर्स व्हाट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट इज, एंड दैट रियली अंडरस्कोर्स फॉर यू द डिफरेंस ऑफ व्हेन यू हैव द रिस्पांसिबिलिटी एंड व्हेन यू आर ओनली एंगेजिंग इन पॉलिटिक्स। बिकॉज व्हेन मिस्टर चिदंबरम वाज द होम मिनिस्टर, व्हाट डिड ही थिंक ऑफ दीज दिमागी नक्सल्स? लेट्स टेल यू अबाउट दैट। वे बैक टुडे ही इज सेइंग, बाय द वे ही ट्वीटेड टू से मैं भी दिमागी नक्सल, बट एट दैट टाइम way back in 2010 he said intellectual support stands in the way of tackling Maoists. That is him in 2010. Cut to 16 years later, he's saying I'm proud to be a dimagi naksal. Ye kaise hriday parivartan ho gaya Hooda ji? Khud jo wo keh rahe the 2010, he was literally talking about the dimagi naksals. 2026 he has branded himself a dimagi naksal. Why?
2: Right, so perhaps possibly the only minister or a leader in the BJP that questions the BJP, that questions the ruthlessness of the government, that actually puts genuine question. Not that I'm a supporter, in no way I'm a supporter of him, but he's somebody who genuinely believes in
0: Chidambaram. Mr. Chidambaram. This is P. Chidambaram. बताइए भाई, P. Chidambaram वो खुद दिमागी नक्सल को पहले गाली दे रहे थे।
2: ठीक है, सो ये वाला जो दिमागी नक्सल का कॉनोटेशन यूज बाय प्रधानमंत्री मोदी जी इज टू आइडेंटिफाई द पीपल दैट क्वेश्चन हिम, इंसल्ट देम, एंड दिस पॉलिटिकल रेटोरिक इज जस्ट टू ब्रांड पीपल।
0: अरे बट लीव असाइड क्वेश्चंस ऑफ मोदी, मिस्टर चिदंबरम वाज सेइंग दैट ही डिड नॉट यूज द टर्म दिमागी नक्सल, बट ही सेड इंटेलेक्चुअल सपोर्ट इज अ रियल प्रॉब्लम।
2: नक्सलिज्म इन 2010, नक्सलिज्म इन 2026, huge massive difference, right? Probably Nakxalism, Maoism, a lot of these elements that were actually causing
0: huge
2: real threat.
0: Because now
2: real
0: they had been beaten
2: society.
0: Into submission. At that time, they were being given a free run. They were being treated as some intellectual giants. They were attending seminars. They were attending conclaves.
2: Right.
0: Today, they are being told, lay down arms or we are going to kill you. Period. That's the difference, Hooda Zariwala.
2: Agreed.
0: And that is why people who continue to give them that oxygen, that intellectual oxygen, are also being called up. Yes, this gentleman here wants to ask a question. Go on.
1: 2010 में जब चिदंबरम ने बहुत कड़ाई के साथ नक्सलिज्म से निपटने की बात कही, तो CWC में कांग्रेस के कई लोगों ने विरोध किया। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने उस वक्त आर्टिकल लिखे, ओपन लिखे, और इसीलिए जरीवाला ने जो समझा बहुत गलत नहीं समझा। 2010 में जो चिदंबरम कर रहे थे वो आज के हिसाब से बीजेपी वाले थे। इनके पास एक लॉजिक नहीं है। मुझे लगता है डिबेट खत्म होते होते ये कहेंगे कि गलती हो गई, मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गई थी, इसलिए मैं विड्रॉ करती हूँ।
0: We are all trying our very best, especially Harshvardhan ji, trying to convert Hooda Zariwala by the time people Sansad ends. Yes, what's your question? Go on.
3: Good afternoon, everyone. My name is Talha Imroz Khan. I'm doing journalism from Jamia. First of all, I'm very big fan of yours.
0: Thank you so much, Talha.
3: Abhijit, I want to ask you from that, don't you think that using such a cheap term from a position of prime minister is a something, there should be some decency. Don't you think that?
4: No, not at all. I think there's nothing cheap about it because mental naxalism, what does it translate into?
3: Yeah.
4: Technically, I mean, if you want to go for a pure English translation, it would be mental Maoism. Okay.
0: You know, it's funny you say that because a lot of people are saying Dimagi Naxal translates as intellectual Naxals.
3: Yeah.
0: Not mental. They are saying basically you're scared of us because all the Sanghis are so ill-educated, so poorly educated that they are scared of intellectual people.
4: See, this is the thing why my friend Huda is wrong. It was wiped out by Siddhartha Shankar Ray in Bengal in the 70s using the nastiest means. They won't even allow intellectual Naxalism, as it's called, to survive. Those intellectuals who hadn't even lifted arms would be taken to that infamous holding cell in... One second, let me finish.
3: Yeah, sure.
4: And they would be crushed. They would be tortured to death. I think you all know how Charu Majumdar himself died and things like that, right? Now, this is a thing that keeps... वो डेमियन का वो ओमन सीरीज देखा है वो आत्मा वीराना पिक्चर देखा है वो आत्मा एक बॉडी से दूसरे बॉडी से तीसरे बॉडी पे आता है भूत प्रेत का आत्मा दैट इज हाउ दिस थिंग वर्क्स इट इज नॉट अ चीप टर्म एट ऑल इट इज एक्चुअली ही हैज हिट द नेल ऑन द हेड द प्रॉब्लम विद द लेफ्ट इज दे कॉइंड 99% ऑफ ऑल द लैंग्वेज एंड जार्गन ऑफ the humanities it's high time the right coin it again
0: why do you think it's cheap
3: Abhijit see I'm a very quiet nationalist guy very nationalist guy you know like western media needs threat just a threat to roll up things around us they are calling our prime minister that

0: of opposition can bash the Prime Minister. The Prime Minister can give any other remark over the opposition party. Hmm. But what is the cure of this?
1: Very good question. Harshvardhan ji, kaise rokenge aap?
2: Nahin, mujhe lagta hai, sabse, jo is debate ka sabse important point hai, yahan aaye hum. Kya is desh mein kisi ko bhi chunav ladne se rok hai? छत्तीसगढ़ जो सबसे ज़्यादा माओविस्ट लेफ्टिस्ट टेररिज्म से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जहाँ है, वहाँ आप सोचिए कि इन लोगों ने सड़कें उड़ा दी, इन लोगों ने बच्चों के स्कूल उड़ा दिए, इन लोगों ने बच्चों के अस्पताल उड़ा दिए. हम बात कर रहे हैं जहाँ स्कूल है वहाँ क्या प्रॉब्लम है, उनको तो स्कूल ही मिलना बंद हो गया, तो हमें क्या करना होगा?
0: द यूथ इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन. अगर हम ही इलेक्शन में बैठ गए तो आप लोगों की क्या जरूरत रहेगी फिर?
2: बिल्कुल यूथ को पार्टिसिपेट करना चाहिए. कैसी बात कर रहे हैं?
1: मतलब आप वोट दे के पार्टिसिपेट?
2: नहीं नहीं, आपको वोट दे के भी पार्टिसिपेट करना है, आपको रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी आना. और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बंदूक की नली से क्रांति नहीं निकलेगी. जिसके दिमाग से बंदूक की नली से क्रांति निकल रही, वो दिमागी नक्सल.
1: हर्षवर्धन जी, ये दिमागी नक्सल आप बंदूक की नली से नहीं बनते ना, आप अपने मोबाइल फोन से भी बन सकते हैं. और जितना ज्यादा उनका गुस्सा, द मोर डिसअपॉइंटमेंट, द मोर डिसअफेक्शन क्रीप्स इन, वोंट यू देन बी ब्रीडिंग दिमागी नक्सल्स और पीपल हु देन क्वालिफाई?
2: हर डेकेड के बाद जो भी गवर्नमेंट इन पावर होगी उसको सोचना पड़ेगा कम्युनिकेशन का तरीका, इंप्लीमेंटेशन का तरीका, एग्जीक्यूशन का तरीका. इस सरकार के लिए भी हाई टाइम. इस सरकार के लिए
3: जो हर्षवर्धन जी ने कहा कि स्कूल उड़ा रही नक्सलों में, 90,000 स्कूल बंद हो गए सरकार के नीचे. 90,000 स्कूल वो नक्सलवाद नहीं है. और जिस स्कूल में आप जाओगे, आई हैव अ 3.5-year-old son. At 3.5, he's learning AI. Abhijit and I spoke about this. At 3.5, गरीब का बच्चा नहीं सीख रहा है, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है. मेरा बच्चा इसलिए आगे जाएगा क्योंकि वो मेरा बच्चा है. ये अनफेयर है. हम इसलिए आज़ाद नहीं हुए. 15 अगस्त को हमें आज़ादी क्यों मिली? हमें आज़ादी इसलिए नहीं मिली कि कोई बहुत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने. इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेज ही बना रहे थे. हमें आज़ादी मिली कि हम सब इक्वल मुल्क के इक्वल हिस्सेदार बने. इस संविधान के पहले चार शब्द हैं, पहले चार शब्द नहीं है, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का विपक्ष का नेता. हम भारत के लोग हैं. हम भारत के लोग सम्मानित होना चाहिए. किसी को कॉकरोच कह दो, किसी को नक्सली कह दो, प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर कह दो, बंद करो ये सब छिछोरापना, बंद करो. हम सबको एक होना होगा और हमारी इज्जत ही सबसे जरूरी है. हम इज्जत के लिए.
2: तहसीन भाई बड़ी अच्छी बातें करते हैं. पर्सनल कमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए. आपने बिल्कुल ठीक कहा, मौत का सौदागर हो, या कोई भी पर्सनल कमेंट नहीं होना चाहिए. जो पप्पू कहा जाता है या कुछ भी कहा जाता है गलत, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मसला है. दिमागी नक्सल जब आप कह रहे हैं, अभी आपने नक्सलिज्म को खत्म किया है. अगर दिमागी नक्सल रहेंगे तो कल को फिर से नक्सलिज्म होगा और वी द पीपल ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा सफल करेगा.
4: See this, I don't agree with this so-called labels, okay? It is scientifically, isko hum categorization bolte hain. The ancient Greeks, there are 5 kinds of love. Agape, Storge, Philos, Eros, and one more, I forget what the 5th one is. Okay, even in Sanskrit, you have this kind of categorization. There is the love you feel for a brother, there is a love you feel for a wife, there is a love you feel for another man's wife, etc., etc. So this kind of, let me finish that. This categorization is a very normal thing, so I reject this whole notion. I think labeling is a very good thing. It should be done because it encapsulates something. But to answer your question, you forget Naxals, bro. When I was in my teens and 20s, I was a hardcore Leninist, Stalinist, Pol Potist. I wanted to take all rich people, put them out in the fields and do forced labor. Do you know when I lived in the USSR as a kid, how often I used to go to KGB headquarters in the hope that they would recruit me to fight against global capitalism? No, dead serious. I used to do that. So what you have to do with this is, first, you know, my parents never tried to wean me off of it. They're like, bachcha hai, aaram se samajh jayega. But the point is, at home, there was always a very vibrant culture of debate. The thing is, you always have to debate these ideas. And that is when the kids grow up and away from it. The problem here is, I don't see any intellectual pushback from the right. They are not able to define what dimaghi naxalism is clearly. They're able to give labels, very effective labels, but they're not able to define, they're not able to categorize, and they're not able to
1: And which
4: counter.
1: Is where I want to make a distinction between what you said, Tehseen, and what seems to be suggested by this term dimaghi naxal. You spoke of, you know, schools are being shut down. Sure, that is one side of the debate. And the other is when you're talking of people who are encouraging armed insurgency. Plenty of us have also, you know, in the good old college days, heard these romantic notions of liberated zones, overthrow the state. We had an entire movement to defund the police in the United States. That is a dangerous idea. You have a dangerous idea, and I don't mean to drag in that girl again, but what we saw very recently happening in Leh, where a girl is saying, I don't want to be stopped by the army because I am Gen Z. Now, that is a very dangerous idea when you think you are above the idea of law and state, and perhaps that, if I'm not mistaken, loosely is the definition of dimaghi naxal.
4: But just to add one thing, you also have to understand at your age, these ideas, they're very, seductive, because they offer a very clear if-then answer. Har cheez ka seedha. Agar ye hota hai, and they call it scientific principles. Human beings are not scientific. You know, economics, how many of you are economic students? You know that the basic rules of all economic theory is ceteris paribus and man is rational. Man is the most irrational creature. Right, that is why economic theory never works.
3: No.
1: Okay.
3: I don't agree that man is not rational because the progress of humanity as compared to other species has happened on the evolution of rationalism. We've all been very rational to the extent, and this is something you've said, Abhijit, we are in one of the most non-violent phases of human history because of rationality, though it may seem that we were. And that's not the debate right now. The issue out here is, what is a dimaghi naxal? That's the broad definition. A dimaghi naxal versus somebody who doesn't have a dimag. Please understand the difference. There's a paper leak. The whole protest started with a paper leak. The solution of the Education Minister of India, his brilliant solution was to shut Telegram, because your paper leak karte ho, WhatsApp se paper nahi bhej sakte ho, Telegram se bhejenge.
1: No, I think that is an unfair comparison.
3: Why? I'll tell you why. There's a pushback from there. Please allow me. I'll tell you why there's a pushback. There's a pushback because nobody out here believes in communism or socialism. None of them. The pushback is, it's not an equal society for them. They don't have the same opportunities that Netas, kids,
1: but
3: and other people.
1: That doesn't have anything to do with the naxalism. The solution to unequality is that in an unequal society, you have to resort to violence.
3: Who's saying resort to violence?
1: That naxalism is the only answer to an unequal society.
3: Again, there is the. Why do you all assume, or why does the government assume that dissatisfaction will lead to violence?
1: Because that is what naxalism advocates for.
3: It's a term the Prime Minister used without any
1: basis. That is a very lived reality of our country. It's not a term that the Prime Minister invented.
3: Allow me to.
1: Naxalism existed in our country until this year, March.
3: Correct. And until this year, now in August 2026, as of today, left-wing extremism is on the right, is on the rise in the Northeast, particularly in Manipur. That is not the point. I completely agree with you. Please allow me to finish. That is a failure of the government. The question is, when you brand your failure, their failure, to their aspirations, and then put motives on their aspirations, that because they're unhappy, you accept that they're unhappy, it's not an equal society, they will resort to violence. Why will they resort to violence?
1: Okay.
3: They will resort to system being changed.
1: Just a second. I want to take more questions. Ask your question.
3: That I agree was a failure of the opposition. I agree with you.
1: Apna naam aur sawal.
5: Hello, sir. My name is Lakshay Baba, and I am from Uttar Pradesh. सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि अगर देश के इतने बड़े पद से किसी वर्ड को बोला जा रहा है तो उसको स्पष्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उस शब्द को स्पष्ट नहीं कर रहे हो तो देश में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए अगर कुछ युवा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आप उनको दिमागी नक्सल कह रहे हो, तो झारखंड में जो युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या वो दिमागी नक्सल नहीं है? वो स्टूडेंट हैं और जंतर मंतर का युवा दिमागी नक्सल है, बताइए।
2: नहीं, मुझे लगता है इसमें तो बहुत क्लैरिटी है। आपने इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आपने सुनी खुद? एक लाइन में उन्होंने बोला, हथियारी नक्सल समाप्त हो गए, दिमागी नक्सलों से हमें लड़ना पड़ेगा। बहुत क्लैरिटी।
5: लेकिन अभी सर ने अभी बोला,
2: इसके बावजूद
5: सर ने अभी बोला कि,
2: और दूसरा
5: सर ने अभी बोला कि 1908 तक वो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, 20 को वो लोग दिमागी नक्सल बने। तो इस बात पे मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ।
2: वो अलग
3: पहले देशद्रोही था, लेकिन सोनम वांछुक 6 महीने पहले भाजपा के प्रवक्ता आते थे, सोनम वांछुक देशद्रोही, 6 महीने पहले सोनम वांछुक सत्ते पर।
2: तहसीन की मुश्किल दूसरी है, आप तहसीन के ट्रैप में मत फंसिए। ये एलीट लोग हैं, एलिटिस्ट मेंटेलिटी के लोग हैं, एलीट क्लास के लोग हैं। इन्होंने कहा कि वो दिमागी नक्सल वर्सेज जो पढ़े लिखे नहीं है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं
5: सर, मैं
2: इसका मतलब ये हुआ
5: इनके
2: हिसाब से जो नहीं रहेगा वो पढ़ा लिखा नहीं, वो अनपढ़ हो गया।
5: लेकिन
2: और यही वो खतरनाक तरीका है जिससे नक्सली कहते हैं, जो वेजिंग वॉर अगेंस्ट नेशन है वो यही है, वो यही तरीका कहते हैं कि देखो हमारी बात नहीं
5: करती। यहाँ पर स्पष्ट हो गया सर ने 20 तारीख को ये स्पष्ट कर दिया कि वो दिमागी नक्सल थे, तो बस सर आप बताइए
4: उन 20 जुलाई को क्या हुआ,
3: क्या हुआ?
4: There were violent riots?
5: अगर सर
4: No. Answer the question. Were there violent riots on the 20th of July?
6: By the Delhi police.
5: That is not violent.
4: No, that is violent. That is violent.
6: By the Delhi police.
4: There was a direct attack.
5: Violent, तो वो violent हो सकता है.
4: First of all,
5: violent नहीं था.
4: No, I'm sorry. You announced that you wanted to violate section 144. The whole reason section 144 was imposed. Let me finish. Section 144 was imposed in Delhi when Parliament is in session because of the 2001 Parliament attacks. They announced they were going to violate it. They gathered in numbers. They marched towards Parliament. It was violent. At that point, the moment you cross the threshold into violence, you become a Naxal. Full stop.
5: अगर आप इस देश के युवाओं की बात पहले ही मान लेते तो ये सब देखने नहीं पड़ता।
4: I haven't finished. The Jharkhand students, did they resort to violence?
7: No.
4: No.
7: Never.
4: Then how are they?
6: Okay, I'd like to comment.
4: So पहले आप थोड़ा स्पष्टीकरण कर लीजिए ना, आपके खुद के principles का
1: सवाल। पूरा सरीवाला then this young
6: man. Okay, right to protest, right to dissent. The students were doing their protest constitutionally. कुछ नहीं हुआ था. It was all the violence by the Delhi police, sanctioned by Amit Shah, which is why the entire Delhi police. Allow me to speak. You know, I mean, we saw how those panned out. I mean, girls, women, उनके ऊपर you know, private parts में लाठियां चलाई गई हैं, किलो वाली लाठियां चलाई गई, what are you even talking about? That violence, I was there. I saw it happen right in front of me, tear gas, आंसू गैस के गोले and all of that. Come on. I mean, no police, no government has the right to sanction all of that violence against the students. So now if you're going to talk about dimagi naksals, Prime Minister, ya to bata de ki wo kiski taraf mukhatib hai, kiski taraf wo dimagi naksal ka ishara kar rahe hain, ya phir hum apne aap ko dimagi naksal kahenge to aapko koi masle masail nahi hona chahiye.
1: Chaliye, bahut jaldi apna sawal puchiye.
8: Ma'am, aapko nahi lagta ki jaise aapne bataya hai ki Delhi police ne jo bhi violent
6: riot
8: ki thi, jo bhi kiya tha, agar aapko pata ho to CJP ka jo leader hai Abhijit Dibkey, usi ki एक लाइव वीडियो थी जिसमें वो दिखा रहा था कि जो प्रोटेस्ट थे असल में 8 से 10 बच्चे, वी डोंट नो वेदर दे वर स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल, आई बिलीव कि वे इंटरनेशनल्स थे और इंटरनेशनल्स को मौका ही चाहिए होता है ऐसे किसी प्रोटेस्ट में आने का। उन्होंने एक पुलिसमैन को पहले घेरा और उसके बाद वॉयलेशंस हुए, और वैसे भी जो भी जंतर मंतर है उधर अलाउ कर रखा है गवर्नमेंट कि तुम्हें प्रोटेस्ट करने तुम भाग करो, बट अगर जब वो प्रोटेस्ट जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक जाएगा तो उसको हमें पहले से ही बचाना पड़ेगा, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा लास्ट ईयर नेपाल में
6: उसकी वीडियो दिल्ली पुलिस को भेजी थी, सारी सिक्योरिटी निकाल दी गई थी, दिल्ली सिविल ड्रेस में पुलिस के नाम पे गुंडागर्दी हो रही थी।
8: लास्ट ईयर हम सबने देखा नेपाल में क्या हुआ, जेंजी प्रोटेस्ट, अगर उसके वजह से नेपाल की पूरी गवर्नमेंट ओवरथ्रो होगी, हमें भी पता है कि इंडिया जैसे एक इतने ज़्यादा डाइवर्स नेशन को हम इतनी ईजिली अगर गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करेंगे तो वो एक डिस्ट्रक्शन की तरफ ही लेके जाएगा। और जब गवर्नमेंट ने जंतर मंतर को एक ऐसी जगह बना रखा है कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट करो, तो आप उसे क्यों पार्लियामेंट तक लेके जा रहे हो?
1: तो जो लॉ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लॉ के खिलाफ एक्शन है, ओके, मोर पीपल,
6: जिस बर्बरता से दिल्ली पुलिस ने मारा बच्चों को,
3: कोई बर्बरता नहीं था, इट वाज लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, नो बर्बरता,
6: वेरी गुड, नॉट दैट आई एम सपोर्टिंग बांग्लादेश इन एनी वे पॉसिबल, बट बांग्लादेश पुलिस को जब शेख हसीना ने कहा था स्टूडेंट्स पे लाठी मारे डंडा मारे, पुलिस बैक्ड आउट, आर्मी बैक्ड आउट, कि हम अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाएंगे, आई एम इन नो वे सपोर्टिंग बांग्लादेश,
1: व्हाट, नोबडी बैक्ड आउट, दे ओवरथ्रो द गवर्नमेंट,
6: आवर दिल्ली पुलिस, हमारी महान दिल्ली पुलिस बच्चों को मार रहे थे, लिटरली
3: दे वर वायलेंट क्रिमिनल्स, दे वर 3000 मर्डरर्स इन देयर, नॉट कॉपीट रेड,
1: जस्ट फॉर क्लैरिटी लेट मी रिमाइंड एवरीवन वाचिंग राइट नाउ, हुडा जी, यू आर सेइंग दैट बांग्लादेश पुलिस बैक्ड ऑफ, In fact, the people
6: police
1: who may just fit the definition of dimagi naksal or naksal marched into her
6: just
1: house.
6: Just the police action to comparison. Yeah, just the police.
1: They carried out the rampage. But anyway, there was
6: Bangladesh
1: no overthrow.
6: Police, उन्होंने बच्चों पे लाठी नहीं मारी
1: थी. Okay, I think there's a student here who wants to speak. Yes.
6: And in no way I support Bangladesh whatsoever. Okay, for the record.
1: Ask your question.
9: Hello, sir. Hello, madam. Me,
7: मेरा नाम प्रदीप कुमार है, सेकेंड ईयर मोतीलाल नेहरू कॉलेज। मेरा आपसे ये सवाल है कि उधर नक्सलवाद दिमागी नक्सली नहीं कहा गया था, कोचिंग माफियाज पे भी सवाल करा गया था, और वहाँ पे जो सुनने वाले थे वहाँ पे बस और लोग भी नहीं, स्टूडेंट एनसीसी यूनिट और एनएसएस यूनिट बैठी थी, उसमें से मैं भी एक था जो सुनने आया था कि मोदी जी एजुकेशन पे क्या कहेंगे, जो नीट पे ये बवाल हुआ है उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सुनने आए थे, ना कि उनका पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने आए थे। उन्हें पॉलिटिकल एजेंडा पे बात करने का कोई हक ही नहीं है, हक की बात नहीं है उन्हें।
1: तो अगर कह रहे हैं ये दिमागी नक्सल पॉलिटिकल एजेंडा है,
7: तो पॉलिटिकल एजेंडा है, उन्हें ये सब अगर टारगेट करना था तो पॉलिटिकल रैली में करते, ना कि लाल किला से,
1: क्योंकि
7: स्टूडेंट सुनने आए थे।
1: अभिजीत आंसर दिस, this seems more like a political agenda, says this young man, than something that that's should have been said on Independence Day. That's what Tehsin also said.
9: Can you zoom in on this? This is political rally in Kolkata. Indira Gandhi saying foreign hand. She said this in
4: Political rally in Kolkata, Indira Gandhi saying foreign hand. She went on, this is during peak emergency.
1: No, but he is saying ki aap political rally mein kahiye, red fort se mat kahiye, independence day ki speech mein mat kahiye.
4: Independence day is a political rally, boss. It has always been a political rally.
1: Why are you not saying
10: answer? Pradeep, ek आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पहली बात तो ये कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल है?
7: पॉलिटिकल है,
10: नेशनल सिक्योरिटी पॉलिटिकल है, तो तब तो फिर रेड फोर्ट से पॉलिटिकल जिक्र होना चाहिए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा इशू क्या हो सकता है इंडिपेंडेंस डे पे? नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा इशू क्या हो सकता
7: है? पहले आप सुनिए, पहले जो एनसीसी यूनिट एनएसए यूनिट आई थी वो कॉलेज के थे,
10: आप वो भी नेशनल सिक्योरिटी जानते हैं ना, जैसे आप नेशनल सिक्योरिटी जानते हैं वैसे भी नेशनल सिक्योरिटी जानते हैं। देश के 180 जिले पूरी तरह से माओइस्ट टेररिज्म से इफेक्टेड थे, और आपको लग रहा है कि वो पॉलिटिकल इशू है? जो बच्चों को स्कूल नहीं जाने देता, जो महिलाओं को पढ़ने नहीं जाने देता, जो अस्पताल नहीं जाने देता, जो आपको मोबाइल टावर नहीं लाने देना, जो आपको टीवी नहीं देखने देता, जो आपको सड़क नहीं लाने देता, वो आपको पॉलिटिकल लग रहा है? और अगर ये पॉलिटिकल है तो ये पॉलिटिकल हर प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए, हर प्राइम मिनिस्टर।
1: यू नो, एंड आई आल्सो, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, वांट टू गिव इट सम कॉन्टेक्स्ट। वन लेडी फ्रॉम कांकेर एक्चुअली स्पोक अबाउट दिस एंटायर डिबेट रेजिंग अराउंड दिमागी नक्सल, एंड शी इज समबडी हु हैज लॉस्ट हर हस्बैंड। हर हस्बैंड वाज किल्ड बाय माओइस्ट, एंड दिस इज समथिंग दैट वी डोंट टॉक ऑफन अबाउट। दीज आर पीपल हु ब्लू अप रोड्स in Chhattisgarh, in Jharkhand, what used to be known as the Red Corridor. They used to pick up men, brand them informers, and slaughter them. After a so-called Jan Adalat, they used to pick up little girls and sexually exploit them, massacre them, leave them pregnant many, very often. Let's listen to this lady from Kanker about what this
11: she has. We want to say that the P. Chidambaram is saying that in social media, I am giving the Naxali Dimaki to Samarthan. We are coming to this situation. अपने पति को है बस्तर में, तो ऐसे कई बहने हैं जो अपने पति को है।
1: So there are women there who have lost their husbands in Bastar, in Kanker.
12: Nobody from here, I'm taking the liberty to speak for them, wants violence or wants people to be killed. What are they asking for? Let's be clear and let's not mix up the two issues. What happened with this woman is terrible. Naxalism, violence is bad. At this moment, left-wing extremism, which is Naxalism, is happening in Manipur, where there are Jan Adalats, where people are being killed. At this moment, right now, between two communities, and the situation's quite messed up. And right now, Padmaja, you had interviewed, you've still not got the Nagaland Accord, which, by the way, is also left-wing extremism. Let's come to what they are asking for. What these people are asking for, what he went in hope for, was that the Honorable Prime Minister, after Dharmendra Pradhan went, said that there will be certain amount of solutions that will be given. None of those solutions are specific and they are left wanting for more. For example, I'll be very brief. This idea that if there's a paper leak, you'll suddenly have special courts and in 3 months people will be sentenced. Now, all of you all must ask, and I send this to all the opposition people, the opposition also in our country is so dumb that they didn't ask this question in Parliament, they didn't allow Parliament to function. You know, there in special courts, there are 3 lakh cases pending. Ask the government, where are you getting the judges from? Where are you getting the judges? Are they special judges? Or the judges who rape ka case dekh rahe, acid ka, unko wahan bithaoge? So both are fooling you, the government and the opposition. And that's where these people are left wanting. Now, when they're left wanting and they are asking for their rights, one calls them Gen Z, aap aage lado, dusra kehta hai aap dimagi naksal ho. Bhai, inko unka hak chahiye, aur kuch nahi chahiye. Stop calling them names, just give them what is right to them, their dignity.
1: counter to that, Tehsin. You are right in saying that people went there looking for solutions. But आपको याद होगा कि वहाँ पर प्रधानमंत्री ने 1 crore लोगों को AI skilling की भी बात की थी. He also said that we are going to provide

स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर एट नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी. माई क्वेश्चन इज सिंपल कि अगर प्रोटेस्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द पार्लियामेंट एंड दे आर पीसफुल, तो वट शुड बी द मेजर्स दैट शुड बी टेकन टू स्टॉप देम? आई डोंट थिंक दे शुड बी लेट

0: बिग लेक्चर्स.
1: दिमागी नक्सल. अभी तक तो हम कह रहे थे टिल नाउ वी वर सेइंग दैट दिस इज एनीवन हु आस्क्स फॉर एन आर्म्ड.
2: यू अंडरस्टैंड दिस इज द प्रॉब्लम विद द राइट विंग. दे डोंट रीड इनफ. व्हेन दे डू दे रीड ऑल द रॉन्ग बुक्स. दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ कंफ्यूजन, सिवियर आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन. दिस इज अ स्टूपिड वीडियो. इट्स अ कैची वीडियो बट इट्स अ स्टूपिड ब्रेन डेड वीडियो.
3: फॉर वंस आई एग्री विद यू.
1: ये तो आपने पॉलिटिकल कर दिया ना इसको. अभी तक आप कह रहे थे दैट we are against those who are against the country. Now you've put all of their political opposition in this video and said Arvind Kejriwal, Rahul Gandhi and Abhijit Dibke. All this while you said we don't care for Abhijit Dibke. Now why have you put him over there?
4: Padma ji, isme Chidambaram ka dalna chahiye tha, जरीवाला जी का डालना चाहिए था, केजरीवाल का डालना चाहिए. जिसने खुद कहा कि आया मैं दिमागी नक्सल,
3: एक ही लाइन
4: में हकाल दे. जिसने नहीं कहा मैं दिमागी नक्सल हूं उसका वीडियो नहीं डालना चाहिए. दूसरा, एक बहुत शानदार रैप सॉन्ग दिमागी नक्सल पर ही है, जो आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, जो रात को 12 बजे कोर्ट खुलवा लेते हैं, जो नक्सलियों के साथ खड़े हो जाते हैं, जो इस देश में हर चीज में जाति धर्म की अराजकता कराते हैं. आपको कोई तरीका क्रिएटिव खोजना चाहिए. लेकिन मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूं कि आप सीधे सीधे देश के विपक्षी नेताओं को कहें कि दिमागी.
3: मेरा सवाल इज विद द प्राइम मिनिस्टर, फॉर द प्राइम मिनिस्टर, व्हाई वुड ही ब्रांड एनीबॉडी एज अ नक्सल टू बिगिन विद, नंबर वन. नंबर टू, फिर वो नक्सल कह किसको रहे, प्लीज इसको भी स्पष्ट कर दे, बता दें कि
1: तो किसकी तरफ मुखातिब
4: खुद बता रहे
1: हैं.
3: और तीसरी बात, अगर आप सारे नेताओं को, तमाम ऑपोजिशन को अगर आप एक ही वीडियो में डाल के सारे लोगों को एक ही लाठी से आप हकाल रहे हैं, तो दैट क्लियरली शोज, विच प्रूव्स माय पॉइंट इन द बिगनिंग, जो मैं कह रही थी कि आई एम अ प्राउड दिमागी नक्सल बिकॉज आई रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन, विच एवर पार्ट दैट मे बी. अ प्राउड ऑपोजिशन, अ प्राउड दिमागी नक्सल एंड अ प्राउड Muslim who says that I'm a dimagi naksal.
2: Because Huda here has said that she's a dimagi naksal. Can I just run a quick defense of P. Chidambaram? See, even within dimagi naksals, there is two strains. Huda, who believes she's a dimagi naksal, and Chidambaram. One second, let me finish. Chidambaram, who is nowhere near a naksal. If you know him in private, he's an arch capitalist. He will say he's a naxal. Do you know why? Because in order to backstab somebody, you first need to get behind them. So he will claim he's a naxal and then he will do what? He will destroy them from within.
1: And you said that you are going to vote him for prime minister.
2: I will totally vote. I am team Chidambaram. He is not a naxal. He is the biggest hawk on nuclear bombs. He says the exact opposite so that people believe he's a peacenik. So when he does it, nobody can question it.
1: Hamza Chidambaram. Yes, go on. Very quickly, 30 seconds. You have time for a question. 30 seconds.
5: Panelists, my name is Ashwin Krishna. I am 5th year law student. So my question is pertains to generally all the panelists. So don't you think it's high time that we start respecting the youth of our country?
3: Thank you.
5: The CJI comes and says these are the cockroaches of the country. No. Prime Minister sometimes says, referring to uncleared version of Dimagi Naxals, and they haven't done much for the educations. Yesterday I was reading a parliamentary panel's report. It said that 73% of the students appearing after the primary education, they drop out of the secondary education. And these shows that they don't respect our youth, they don't do anything for the education, and clearly they don't brilliant. Justify what Dimagi Naksal about is.
3: Thank
1: you. That's
2: there's a very specific answer to that. You see, first of

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: electricity bill paid.
1: Really?
0: Your mobile recharge is done.
1: How?
0: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
1: It's the Mahi way.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आके और मसाला।
5: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
6: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
8: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन ना बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब ना बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
9: I'm in Ahmedabad's gift city today. This is Prime Minister Narendra Modi's dream of building an international financial center. Now think we're reaching a point where the international financial operators are the ones chasing gift city.
10: Began, there were just about 100 registrations. Today it's close to 1,250.
9: Always be that tension between your aspiration for GIFT City and the reality of Gujarat being a dry state.
10: Within the regulatory framework, everything what would be available outside the state is available.
9: I've been seeing that Edelweiss has been doing a lot of work in and around the GIFT City.
11: I think it's like making an investment in the MF business of 20 years ago.
9: Okay.
11: And hopefully 20 years later, we can say GIFT is what mutual fund is today.
9: How has customer adoption been, and how are these products which you're operating out of GIFT faring versus what you do outside?
11: We want this to be a destination for NRIs coming into India via multi-manager. We are also enabling something else, Indians investing abroad.
12: राजस्थानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा।
13: RP संजीव गोयनका ग्रुप, ग्रोइंग लेगेसीज ओवर 200 इयर्स।

0: privilege. We question the tone, the confrontation, and the optics of taking on men in uniform who are stationed in one of the most unforgiving terrains on earth to keep this country safe. Many agreed with us. Many pushed back. Today, that same young woman is on our show. She spoke only to me, giving her version of what really unfolded on the ground. Television news cannot simply be about picking a side, delivering a lecture, and shutting the door on the other perspective. And on NDTV, we always return to the story when it really matters. Our security forces deserve unyielding respect that is non-negotiable. But citizens, especially young people in sensitive regions, have voices, frustrations, and context that raw social media videos often leave out. We didn't soften our questions today. She didn't hold back her answers. Here she is, live with me.
1: We are not tolerating this nonsense. We are not tolerating this nonsense. आप लोग मुझे बताओ आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो
2: चलो
1: कैसे रुकेंगे? पांच घंटे हो गए निकलो सब लोग गाड़ियों चलो.
3: वो कश्मीर एयरपोर्ट नहीं उतरे
1: हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं. देखा इन्होंने किसी ताला लगा दिया फिर अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए. ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर.
0: And speaking out for the first time and joining me live here on NDTV for the first time since her video from Ladakh went completely viral is the woman who was on camera having that big angry meltdown after there was a road closure for a few hours in that forward area. Madam, at your request, we are not taking your name out of respect for your request. But I would like to start by asking you what happened, because this video is viral. You are seen on camera, you know, shouting at security personnel, saying things like, "We are Gen Z. You know, how dare you do this? My taxes pay your salaries." There is a lot of anger that has come out, madam, over that video. I want your side of the story. What happened? Tell us.
4: Hello. उस दिन जो चीजें हुई थी उसका जो वीडियो लोगों ने डाला हुआ है वो करेक्ट वीडियो नहीं है. उसमें मैं हूँ और मैं वहां पे चिल्ला भी रही हूँ, शाउट भी कर रही हूँ, इवन मैं फ्रस्ट्रेट होके बहुत चीजें बोल भी चुकी हूँ उस वीडियो में जो कि मैं जानती हूँ. और पहली बात ये कि ये वीडियो एक मंथ पुरानी है जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ. मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीजें बोली. उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे. हमें नहीं पता था कि उस दिन VIP मूवमेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है. हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे तो हमें 3-4 घंटे वहाँ सुबह से वहाँ पे वेट करते हुए हो गए. फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर और कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला कि मैम 1 घंटा और लगेगा. फिर हम लोगों ने 1 घंटा और वेट किया, वैसे वेट करते करते 6 घंटे हो गए. तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है, फौजी और शायद जो वहां पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ. हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए, हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की. उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई, मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 6 घंटे हो गए हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे, कुछ नहीं जा पा रहे, आपके VIP मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है? लेकिन उस चीज को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर, मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं रहा.
0: जी जी बिल्कुल मैडम, लेकिन लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो जो जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है, ये आपके शब्द हैं. हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम, लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज्ड जोन है, उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन जी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा,
2: you know, my salaries, pay your taxes. Or, and in this video, we can clearly see ki aap ek army officer ke saath aise baat kar rahe hain.

0: तो इसलिए इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं मानता हूं आपकी बात कि ये एक महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि कोई किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए, वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है।
1: जी हाँ, मैंने ये सब चीजें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज्यादा गलत था, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा मेरा भी फोन ओपन है। बट जब वो चीजें सारी खत्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि गलती हमारी है। अगर VIP मोमेंट था, हमें नहीं पता था, प्रेस स्टेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया। मैंने उन सर से वहाँ सॉरी भी बोला था, जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है, वहाँ की पुलिस को भी सॉरी बोला था। अब मैं दोबारा आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, J&K की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को, और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को, उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुंची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वजह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर या कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ कि मैं पॉपुलर होने के लिए किसी के साथ ऐसी चीजें करूंगी। मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, 25 साल की लड़की हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तहे दिल से सबसे माफी मांगती हूँ। कृपा करके आपके माध्यम से मुझे माफी दिलवाई जाए और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ 100 बार 1000 बार, कृपा करके इस चीज को बंद किया जाए।
0: मैडम बिल्कुल, और आप NDTV पर बोल रहे हैं, ये इंडिया का सबसे बड़ा TV नेटवर्क है, तो जिन ऑडियंस ने आपको देखा है, ये जो वायरल वीडियो देखा है, आपकी ये जो माफ़ी है, आपकी ये जो रिग्रेट है, सब देखेंगे मैडम। मैं इसलिए आपको इस नेटवर्क पे नहीं बुलाया हूँ कि आपको आप पर शाउट करूँ या आपको स्कोल्ड करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी एक सिटीज़न है मैडम, आपने जो फ्रस्ट्रेशन में किया है वो ऑलरेडी वायरल जा चुका है, इसलिए ये आपके लिए एक मौका है कि एक्सप्लेन करने के लिए क्या हुआ था। क्योंकि और मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैडम, क्योंकि
1: जी सर,
0: सबको ये फ्रस्ट्रेशन होता है मैडम, किसको नहीं होता है, VIP मूवमेंट या मिलिट्री मूवमेंट को लेकर किसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है ना,
1: तो जी हाँ।
0: लेकिन कुछ शब्द जब हम बोलते हैं वो वायरल हो जाते हैं और इसी माहौल में बहुत बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं। ये तीन शब्द जो आपने बोला, VR Gen Z, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे, रिस्पेक्टफुली मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, आपने ये शब्द क्यों चूज किए, VR Gen Z, ये माहौल जो चल रहा है जेंजी प्रोटेस्ट को लेकर, इसलिए आपने चुना वो शब्द?
1: सर मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से वो वर्ड अचानक से आ गया, क्योंकि पीछे से बहुत लोग प्रोवोक कर रहे थे मेरे को कि हमारे साथ ये सब चीज बहुत होती है, आप लोग टूरिस्ट हैं, आपके साथ पहली बार हुई, आपको फेस करनी पड़ रही है, हम लोग रोज ये सब चीजें फेस करते हैं, ये सब चीजें उन्होंने मेरे को बताई। तो उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि अगर मैं ये सब चीजें बोलूंगी तो ये सब प्रॉब्लम हो जाएगी, बट ये चीज अचानक से हो गई, तो मैं अब क्या बोलूं, इस चीज को मेरा कोई अटेंशन नहीं था कि जेन जी का नाम लेके मैं कोई चीज ऐसा करती, ये बस गलती से चीज हो गई है सर।
0: देखिए मैडम, जब हम इमोशनल और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो बात निकल जाती है, मैं समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, और इसलिए मैं आपको ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि आपने ये सब क्यों बोला। क्योंकि देखिए मैडम, हम भी ऑनलाइन होते हैं, हम भी गाली खाते हैं ऑनलाइन, और आपने इस 24 घंटे में बहुत कुछ देखा होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, क्या क्या लोग बोल रहे हैं आपके खिलाफ। मेरे शो कल मेरे शो पे भी कुछ वेटरन्स थे आपके लिए कुछ मैसेज दिए थे, आपने वो भी देखा होगा। लेकिन जब आप बोलते हैं कि कश्मीर में ये हुआ और अब ये यहाँ पे हो रहा है, ये भी आपका गुस्सा था, आप एक पॉइंट, यू वांटेड टू मेक अ पॉइंट, इसलिए आपके गुस्से में ये बोला।
1: सर वहाँ पीछे से लोग बोल रहे थे कि आप लोग टूरिस्ट हो, आपको ये सब फेस पहली बार करना पड़ रहा है तो आपको इतना बुरा लग रहा है, हम लोग रोज ये चीज फेस करते हैं उस वीडियो में, लेकिन वो चीज किसी ने दिखाई नहीं है जो पीछे से वहां जनता बोल रही थी, स्पेशली मेरे को टारगेट करके, मेरे को ही एज अ गर्ल मेरे को इतना बदनाम किया गया है, विक्टिम बनाया गया है कि मैं उसके खिलाफ अब मैं क्या बोल सकती हूँ। मैं सिर्फ माफी मांग सकती हूँ क्योंकि मेरे को ये सब चीजें नहीं आती कि मैं वायरल होने के लिए ये करूँ वो करूँ। मेरा कोई पब्लिक फिगर ही नहीं है तो मैं क्या वायरल होंगी सर, आप बताइए। मैं माफीनामा के लिए भी आपके आपके चैनल के थ्रू ये चीज भेज रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं अपना माफीनामा भी कहीं से अपलोड कर सकूँ। इसलिए आपके माध्यम से मैं देश की जनता से जिनको बुरा लगा है उनसे भी सॉरी मांग रही हूँ, अपने इंडियन आर्मी से भी मांग रही हूँ जिनकी वजह से हम लोग इतना फ्रीडमली जीते हैं। अगर वो लोग नहीं होते तो हम लोग तो घर से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सर मैं इसलिए आपके माध्यम से आगे अपनी माफी पहुंचाना चाहती हूँ बस, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ सर।
0: क्या आप जेंजी जो जनरेशन है मैडम उनसे कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है अभी सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पे इतना जो वायरल हुआ है, बहुत ऐसे जेंजी लोग हैं जो बोलते हैं कि ये जेंजी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम इसका खंडन करते हैं, हम इसको इसके खिलाफ हैं ऐसे बिहेवियर का। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जेंजी को बदनाम करने के लिए प्लांट हुआ है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियोरीज है मैडम आपके बारे में ये सब बोला जा रहा है, तो इसके इसका रिप्लाई क्या देंगे आप?
1: सर मैं नहीं जानती कि इसका मैं क्या रिप्लाई दूं आपको, लेकिन जेंजी का जो मैंने वहाँ नाम लिया था वो मैंने किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया था या किसी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लिया था। वो फ्लो फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया कि हम लोग जेंजी है, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं दिनों आपको पता है एक महीने पहले जंतर मंतर पे जो चीज़ें चल रही थी वो दिमाग में मेरे घर कर चुकी थी, जिसकी वजह से मेरे दिमाग ने पता नहीं क्या उस टाइम क्या मुझे नहीं समझ आ रहा क्या प्रॉब्लम हुआ कि मैंने उस टाइम वो मेरे मुंह से निकल गया वो वर्ड, जबकि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि मेरे को क्या मतलब बनता है कि मैं वहां पे उस सिक्योरिटी जो वो थे वहां पे लोकल पुलिस में उनसे जेंजी जेंजी बोलूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए मेरे कोई पर्टिकुलर किसी को पॉइंट नहीं था कि मैंने जेंजी को पॉइंट किया या किसी और को पॉइंट किया। मेरे बारे में लोग इतना गंदा गंदा कॉमेंट कर रहे हैं, बहुत उल्टे सीधे कॉमेंट कर रहे हैं, जिससे मेरी फैमिली मेरा सारा पूरा फ्यूचर खराब हो रहा है उस चीज की वजह से। इसलिए मैं आपके चैनल पे आई हूँ, जबकि मैं मेडिकली और फिजिकली अभी फिट नहीं हूँ कि मैं किसी से बात कर सकूँ, बट उसके बाद भी मैंने सोचा कि नहीं बोलना जरूरी है वरना लोगों को लगेगा कि मैं गलत हूँ।
0: पहले तो मैं आपसे आपको ये बोलना चाहता हूँ मैडम कि आप प्लीज़ रोइए मत, आप इमोशनल मत होइए, ये सब होता रहता है मैडम। ये इस सोशल मीडिया के ज़माने में एक चीज़ जो वायरल होता है एक दो दिन के लिए होता है, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो मैं आपको बोलना
1: सर,
0: चाहता हूं
1: मेरे साथ अगर पहली बार हुई तो इसलिए थोड़ा मैं मेंटली बहुत हैरस हो गई। इवन मैं कल 19 तारीख को मैं साइबर क्राइम भी गई थी, मैंने वहां भी कंप्लेन दी कि सर मेरे साथ ये सब चीजें हो रही है। वहां मेरे को पैनिक अटैक आ गया, उन लोगों ने एम्बुलेंस भी बुलाई थी, मैं गई थी उनके पास, उन्होंने मेरे को रिसीविंग कंप्लेन भी दी कि जिसने भी आपका वीडियो इस तरीके से डाला है विदाउट परमिशन के या आपने जो भी वहां चिल्लाया, लेकिन आपका वीडियो इस तरीके से नहीं डालना चाहिए था क्योंकि गर्ल्स की प्राइवेसी, मेरा फेस हाइड नहीं किया था, जिसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन मेंटली इतना हैरेस हो गई कि उन्होंने मेरे लिए एम्बुलेंस बुला ली।

0: यूट्यूब पे आप सब आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं अभी, लेकिन मैं आपको आपको दिल से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक इंडियन सिटीजन है मैडम, ठीक है, आप कोई विलन नहीं हो। जो कुछ भी हुआ है, आप इमोशनल हो सकते हो, आप डिप्रेस्ड हो सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि 2-3 दिन बाद ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्योंकि आपने आपने क्लैरिफाई किया है, आपनी आपने अपने आपके शब्द के लिए रिग्रेट व्यक्त किया है, आपने आपने माफ़ी मांगी है इंडियन आर्मी से। और देखिए, जब हम शो करते हैं NDTV पर, इंडियन आर्मी ने आपसे माफ़ी नहीं मांगा है, वो समझते हैं आपके फ्रस्ट्रेशन। कल हमारे शो में इंडियन आर्मी के वेटरन्स थे मैडम, उनका बोलना था कि हम समझते हैं नागरिकों का फ्रस्ट्रेशन, हम समझते हैं, तो इसलिए सेंसिटाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप आर्मी को क्या बोलेंगे मैडम, क्योंकि क्योंकि एक एक तस्वीर, एक पिक्चर, एक इमेज, एक वीडियो का बहुत महत्व होता है, वो वायरल होता है, लोगों के मेमोरी में रहता है मैडम, तो आप आर्मी को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आर्मी एक इमोशनल चीज़ है मैडम।
1: मैं आर्मी को पहले तो जय हिंद, अपने जवान भाइयों को जो मेरे भाई बाप सब कुछ हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपने घर में सेफली सो पाते हैं, सुबह उठ पाते हैं, आप लोग बॉर्डर पे रह के हम लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हम जैसे बदतमीज लोग फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी बोल देते हैं, जबकि आप लोग हमें कभी कुछ नहीं बोलते, हम ही लोग फ्रस्ट्रेशन में आपको हमेशा पॉइंट आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने जवान भाइयों से, तमाम इंडियन आर्मी से और J&K की आर्मी से भी दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे छोटी बहन समझ के मेरी बातों को आप प्लीज इग्नोर करें और मुझे माफ कर दें सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने ये सब चीज बोली। मुझे ये चीज बहुत रियलाइज पहले भी हुई थी, तभी मैंने वो वीडियो कभी भी नहीं चढ़ाया, क्योंकि मुझे पता था मैंने वहां पे चिल्ला के गलत किया है, लेकिन आप लोगों ने कुछ भी मुझे नहीं बोला, मैं ये चीज मानती हूँ। प्लीज मेरे देश के जवान भाई मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी वहां पे गलती की है प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए।
0: और मैं आपको ये रीअश्योरेंस देना चाहता हूँ मैडम कि आर्मी में कोई गुस्सा नहीं है आपके खिलाफ, कोई भी गुस्सा नहीं है, वो पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता है मैडम रोड क्लोज करने में, डिले करने में, ये फॉरवर्ड एरियाज़ में ये सब करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है। VIP मूवमेंट्स या सिक्योरिटी मूवमेंट्स, ये एक इनकन्वीनियंस है सबके लिए, और अल्टीमेटली आर्मी किसके लिए काम कर रही है मैडम, देश के लिए,
1: पब्लिक के लिए सर, हमारे लिए,
0: लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन, मैं भी एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं, हम सब इनकन्वीनियंस फेस करते हैं, आर्मी ये समझती है मैडम, ये बिल्कुल समझती है। मैं आखिरी सवाल आपको मैडम, आपकी फैमिली, आपकी परिवार, आपके पेरेंट्स, वो ठीक हैं इस ये सब वायरल होने के बाद, उनका क्या मेंटल स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं आपको?
1: सर वो सब लोग, उन्होंने फोन करके मुझे इतना सुनाया कि कहने लग गए कि तू तो कभी भी ऐसे ऑनलाइन कभी कोई चीज नहीं करती, तू तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उस दिन क्या हो गया तुझे, तू तो कभी इतने तेज बात भी नहीं करती, किसी से लड़ती भी नहीं है, मतलब मैं ऑलवेज ज्यादा सपोर्टिंग रहती हूँ, जो कैट्स और डॉग्स होते हैं जिनको लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं, मैं उनकी हेल्पिंग करती हूँ ऑलवेज। तो उन्होंने बोला तेरा हेल्पिंग नेचर है, तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली। मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया कि ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, मुझे भी पीछे से बोला गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते, उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने इतना सब कुछ बोल दिया, तो उसके लिए मैं इसलिए बहुत सॉरी हूँ। मेरी फैमिली बहुत मेंटली बहुत इस टाइम डिस्टर्ब है, क्योंकि वो हैरस हो चुकी है, सारे रिश्तेदार जितने आस पड़ोस सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस वजह पे, क्योंकि लोगों ने इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया है और मुझे इतनी गालियां पड़ रही हैं, मुझे लोग बहुत बहुत चीजें बोल रहे हैं, जबकि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, उनको व्यूज के लिए या किसी चीज के लिए वो मुझे यूज कर रहे हैं कोई नहीं, मुझे सिर्फ अपने देश की जनता और अपने जवान भाइयों से माफी मांगनी थी आपके माध्यम से, वो मैंने मांग ली, तो मेरे को अब थोड़ा बहुत दिल को सुकून है कि मैंने ये चीज करी।
0: मैडम हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, मैं सिर्फ फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक दो दिन की बात है, ये लोगों को गुस्सा आता है जब जब लोग ऐसे तस्वीर देखते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, आपको भी पता है, तो इसलिए जो आपने दिल से माफ़ी मांगी है, क्लैरिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, उसके लिए मैं आपको एडमायर करता हूँ, और NDTV पर आपकी बात रखी जाएगी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू मैडम,
1: थैंक यू सर, थैंक यू।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: A world of questions, ideas that challenge the ordinary, conversations that connect countries and cultures, where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal.
6: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect,

0: Sometimes it takes the innocence of a child to hold up the ugliest mirror to our society. A video of this young girl, Tinkle, from Arunachal Pradesh has gone amazingly viral for having to do something no four-year-old child in this country should ever have to do, defend her Indianness. Look at what she said. Hum log Indian hai, aap humko Chinese bolne se hum bahut gussa hote hain. She shouldn't have to explain her identity. She shouldn't have to tell you she's Indian. If anyone needs a lesson in who belongs to this country, it's not this little girl, Tinkle. It's the ignorance that questioned her in the first place.
1: Hello guys, हमको एक आदमी ना हम कैसे बोले एक आप चाइनीज से कैसे बोले मेरा अब इंडिया है हम भी इंडिया है आप लोग कैसे मत बोलो हम लोग इंडिया है आप हम लोग को चाइनीज बोलने से हम बहुत गुस्सा होते हैं बहुत दुखी होते हैं प्लीज हमको ऐसे मत बोलो हम बहुत दुखी होगा तो हमको इंडिया बोलो इंडिया हमको चाइनीज मत बोलो हम बहुत दुखी लगते चाइनीज बोलने से हम इंडिया का है हम इतने नगर में बैठते तो आप लोग ऐसे मत बोलो प्लीज बाय बाय
0: An adorable little Tinkle and her mother Ayum joined me from Itanagar, Arunachal Pradesh, just a short while ago. A four-year-old Tinkle from Arunachal Pradesh has gone super viral. She's got the entire country in tears, cooing with affection over her video, where she, with a very, very serious face, says, "Don't call me Chinese, I am Indian." She has won hearts everywhere in the country. And I am so honored, so happy to be joined today by little Tinkle, or Tinkle ki ma, Ayum, is also with us. Ayum ji, pranam. Tinkle ka video itna viral ho gaya hai, to mera pehla sawal Tinkle se hi hai. Tinkle, आपने देखा आपका वीडियो इतना वायरल हो गया है इंडिया में आपने देखा वो उस वीडियो में आप क्या बोल रहे हैं टिंकल
2: क्या बोला था बोल दो क्यों मैं क्या बोला था
1: भैया हमको एक भैया हमको चाइनीज बोले
0: कौन बोल रहा है आपको चाइनीज आप तो इंडियन है कौन बोल रहा है आपको चाइनीज
1: ए भैया
0: नहीं नहीं आप तो बिल्कुल इंडियन हो टिंकल आप तो हमारे जैसे हैं इंडियन
1: हम इंडिया
0: है आयुम जी ये आइडिया कहां से आया टिंकल ने ये वीडियो कैसे बनाया क्यों बनाया उनकी उसके मन में क्यों था ये
2: वो हमको भी इतना आइडिया नहीं था तो टिंकल का एक वीडियो था आइसक्रीम खाने वाला वीडियो जो तो वो आइसक्रीम वीडियो में टिंकल जो हिंदी बोला था तो एक आदमी जो टिंकल को कमेंट किया है ये चाइनीज बच्चा क्यों हिंदी बोल रहा है बोल के तो टिंकल को दुखी हो गया तो टिंकल ने वीडियो बना लिया
0: टिंकल आपको बुरा लगा ये कॉमेंट पढ़कर इंस्टाग्राम में आपको बुरा लगा नहीं मुझे भी बुरा लगता अगर ऐसे कोई कमेंट करता तो और टिंकल हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं उसमें आप नेशनल एंथम गाते हैं आप सल्यूट करते हैं आप तिरंगा को सल्यूट करते हैं तो आप काफी देश प्रेमी हैं इंडिया को बहुत प्यार करते हैं आप टिंकल और टिंकल आपके पापा पुलिस में हैं है ना
1: मेरा अबू पुलिस बनते
0: तो आपके पापा यूनिफॉर्म में होते हैं हमने देखा है आपके फोटोज इंस्टाग्राम पर यूनिफॉर्म पहनते हुए और आपका भी एक यूनिफॉर्म में एक वीडियो है तिरंगा को सल्यूट करते हुए एक बार हमारे लिए देश के लिए नेशनल एंथम गाओ टिंकल अगर आप कर सकते हो तो नेशनल एंथम हम सुनना चाहेंगे आपसे
2: करा करा करके रहा चल चल
0: यस स्टैंडिंग

0: सल्यूट टू यू ट्विंकल, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमको, सबने सुना आपको एनडीटीवी पर और देश में, और हम बहुत सारे शुभकामनाएं देते हैं आपको। नमस्ते ट्विंकल, नमस्ते आयुम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू, जय हिंद,
1: थैंक यू, थैंक यू,
2: बाय बाय।

0: Our top focus on NDTV right now. Now for a very disturbing story that we're starting from, and this is from Vishakhapatnam. It's the death of a six-year-old UKG student. His name, Pranay. It has shocked India. The toddler's family alleges that he was beaten by his teacher for not completing his homework. The family says the boy was healthy when he left home and that he later collapsed inside the classroom after allegedly being hit with a stick. They claim CCTV footage from the school shows the teacher hitting and frightening the child before he collapsed. The family also alleges that other children had been subjected to physical punishment as well. Police have now registered a case and launched an investigation, while the exact cause of death will be established through postmortem. Meanwhile, a video of a tourist confronting security personnel at a checkpoint in Kargil has gone viral. The woman was left waiting near the Minimarg checkpost in Dras after local police stopped travel on the Minimarg Zojila Sonmarg road. The holdup was due to travel restrictions in place on that stretch, and in the video, she can be heard arguing with army personnel, saying that we are Gen Z and that we will not tolerate this nonsense, telling them your salary comes from our taxes. The video has now received massive backlash online.
1: हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया है, अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है। यहाँ पर कोई नहीं हिलेगा।
2: आपने उकसाया
1: था, ठीक है। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसीलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए। अब आपका जो भी हुआ था मैंने उसकी वीडियो बनाई है, अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना मेरा नाम बदल देना।
0: Well, this lady in this video has now spoken to NDTV's managing editor Shiv Arur. Take a look.
3: What happened? Because this video is viral. You are seen on camera, you know, shouting at security personnel, saying things like, we are Gen Z, you know, how dare you do this? My taxes pay your salaries. There is a lot of anger that has come out, madam, over that video. I want your side of the story. What happened? Tell us.
4: Hello. उस दिन जो चीजें हुई थी उसका जो वीडियो लोगों ने डाला हुआ है वो करेक्ट वीडियो नहीं है। उसमें मैं हूँ और मैं वहां पे चिल्ला भी रही हूँ, शाउट भी कर रही हूँ, इवन मैं फ्रस्ट्रेट होके बहुत चीजें बोल भी चुकी हूँ उस वीडियो में, जो कि मैं जानती हूँ। और पहली बात ये कि ये वीडियो एक मंथ पुरानी है जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीजें बोली। उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे, हमें नहीं पता था कि उस दिन वीआईपी मूवमेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है। हम लोग वहां पे बैठे हुए थे तो हमें 3-4 घंटे वहां सुबह से वहां पे वेट करते हुए हो गए। फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर और कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला कि मैम 1 घंटा और लगेगा। फिर हम लोगों ने 1 घंटा और वेट किया, वैसे वेट करते करते 6 घंटे हो गए। तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है, फौजी और शायद जो वहां पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ। हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए, हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की। उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई, मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 6 घंटे हो गए हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे, कुछ नहीं जा पा रहे, आपके वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है? लेकिन उस चीज को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर, मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं रहा।
3: जी जी बिल्कुल मैडम, लेकिन लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो जो जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है, ये आपके शब्द हैं, हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम, ये लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज जोन है, उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन जी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा, यू नो माई सैलरीज पे योर टैक्सेस, और एंड इन दिस वीडियो वी कैन क्लियरली सी कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये 1 महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि कोई किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए, वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है।
4: जी हाँ, मैंने ये सब चीज़ें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा मेरा भी फ़ोन ओपन है, बट जब वो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि गलती हमारी है, अगर वीआईपी मूवमेंट था हमें नहीं पता था, प्रेस्टेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया, मैंने उन सर से वहाँ सॉरी भी बोला था जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है, वहाँ की पुलिस को भी सॉरी बोला था। अब मैं दोबारा आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, J&K की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को, और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को, उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुंची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वजह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर या कोई पब्लिक फिगर नहीं हूं कि मैं पॉपुलर होने के लिए किसी के साथ ऐसी चीजें करूंगी, मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, 25 साल की लड़की हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तहे दिल से सबसे माफी मांगती हूँ, कृपा करके आपके माध्यम से मुझे माफी दिलवाई जाए और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ 100 बार 1000 बार, कृपा करके इस चीज को बंद किया जाए।
3: और मैं आपको ये रीअश्योरेंस देना चाहता हूँ मैडम कि आर्मी में कोई गुस्सा नहीं है आपके खिलाफ, कोई भी गुस्सा नहीं है, वो पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता है मैडम रोड क्लोज करने में, डिले करने में, ये फॉरवर्ड एरियाज में ये सब करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है, वीआईपी मूवमेंट्स या सिक्योरिटी मूवमेंट्स, ये एक इनकन्वीनियंस है सबके लिए, और अल्टीमेटली आर्मी किसके लिए काम कर रही है मैडम, देश के लिए,
4: पब्लिक के लिए सर, हमारे लिए,
3: लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन, मैं भी एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं, हम सब इनकन्वीनियंस फेस करते हैं, आर्मी ये समझती है मैडम, ये बिल्कुल समझती है। मैं आखिरी सवाल आपको मैडम, आपकी फैमिली, आपकी परिवार, आपके पेरेंट्स, वो ठीक हैं इस ये सब वायरल होने के बाद, उनका क्या मेंटल स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं आपको?
4: सर वो सब लोग, उन्होंने फोन करके मुझे इतना सुनाया कि कहने लग गए कि तू तो कभी भी ऐसे ऑनलाइन कभी कोई चीज नहीं करती, तू तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उस दिन क्या हो गया तुझे, तू तो कभी इतने तेज बात भी नहीं करती, किसी से लड़ती भी नहीं है, मतलब मैं ऑलवेज ज्यादा सपोर्टिंग रहती हूँ, जो कैट्स और डॉग्स होते हैं जिनको लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं, मैं उनकी हेल्पिंग करती हूँ ऑलवेज, तो उन्होंने बोला तेरा हेल्पिंग नेचर है तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली, मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया कि ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, मुझे भी पीछे से बोला गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते, उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने इतना सब कुछ बोल दिया, तो उसके लिए मैं इसलिए बहुत सॉरी हूँ, मेरी फैमिली बहुत मेंटली बहुत इस टाइम डिस्टर्ब है क्योंकि वो हैरस हो चुकी है, सारे रिश्तेदार जितने आस पड़ोस सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस वजह पे, क्योंकि लोगों ने इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया है और मुझे इतनी गालियां पड़ रही हैं, मुझे लोग बहुत बहुत चीजें बोल रहे हैं जबकि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, उनको व्यूज के लिए या किसी चीज के लिए वो मुझे यूज कर रहे हैं कोई नहीं, मुझे सिर्फ अपने देश की जनता और अपने जवान भाइयों से माफी मांगनी थी आपके माध्यम से, वो मैंने मांग ली, तो मेरे को अब थोड़ा बहुत दिल को सुकून है कि मैंने ये चीज करी।
3: मैडम हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, मैं सिर्फ फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक दो दिन की बात है ये, लोगों को गुस्सा आता है जब जब लोग ऐसे तस्वीर देखते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, आपको भी पता है। तो इसलिए जो आपने दिल से माफ़ी मांगी है, क्लैरिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, उसके लिए मैं आपको एडमायर करता हूँ और NDTV पर आपकी बात रखी जाएगी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस।
0: Moving on, shifting our focus to other news now, Maharashtra has now started a statewide drive to check whether auto rickshaw and taxi drivers have a working knowledge of Marathi. RTO flying squads are carrying out checks, asking drivers basic questions in Marathi to assess their language skills. The drive follows the new motor vehicle rules requiring public transport drivers to have a working knowledge of Marathi. Drivers who fail the oral Marathi check are now being issued notices and given 1 month to learn the language.
2: ऐसा हमारा सिलेबस फिक्स है मराठी एग्जाम का वर्किंग नॉलेज चेक करने के लिए। इसके अंदर एक पैसेंजर और एक ड्राइवर, इनका कॉन्वर्सेशन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें हमें उनको पूछता हूँ कि मेरा या ठिकाने जायचा है, तर उन्होंने ऐसा बोलना चाहिए कि या बसा, मराठी में मैं जेव्हा बोलतो आहे, मीटर लावू का, हा मीटर चालू केले आहे, रिक्षा स्टँड कुठे आहे, तर जवळ आहे, समोर आहे। तर असे दोन, हे जो 15 क्वेश्चन का सिलेबस आहे, उनके अंदर हम उनको पूछते हैं, उनको उन्होंने उसमें सैटिस्फैक्टरी आंसर दिया तो हम उनको पास करते हैं।
0: In other news, US ambassador to India Sergio Gore is in Jammu and Kashmir making a high profile visit that has drawn attention in New Delhi and Islamabad as well. Gore described Jammu and Kashmir as an important part of India, praised the government's steps in the region and indicated the US may reevaluate its travel advisory. Well, Congress has now welcomed Gore's remarks, saying that Jammu and Kashmir is an integral part of India and that nobody needs to remind the country of this. Pakistan has reacted sharply, summoning the top US diplomat and lodging a formal demarche over Gore's comments. This is the first visit by top US diplomat to Jammu and Kashmir. That's after Operation Sindoor and the abrogation of Article 370.
5: Everybody here knows I'm the US ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. Last thing I'll share with you is the United States puts out travel warnings, and every so often we reevaluate those travel warnings. I cannot make any big announcements here today, but it is something we're going to look at. New Delhi, the Chief Minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer.
6: We know that it's very good that he's saying it, but this is something we've been insisting for a long time.
7: Kashmir is an integral part of India, and they must revalidate their, you know, travel advisory. It's part of India, so US should realize.
8: देखो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है, एक अंग है हिंदुस्तान, तो उसको हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, किसी और को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हम लोग मानते हैं कि हमारा अटूट हिस्सा है।
9: Well, I mean, the visit is significant because this is the first time that we've had a U.S. ambassador travel there since Operation Sindoor. There have been previous U.S. ambassadors that have visited the region, but it has been some time. And I think particularly in light of the fact that the Trump administration has taken a bit of an unconventional approach to the issue in terms of President Trump repeatedly claiming that he mediated the ceasefire between India and Pakistan last year, and also given President Trump's comment last year that he would like to help the two sides, find a solution to Kashmir. You know, these are things that are very unusual for U.S. policy. So against that backdrop of an unconventional administration, I think it was it's notable that we have the U.S. ambassador traveling to Kashmir against that backdrop.
0: Meanwhile, the political row over Vande Mataram has intensified, with the Congress asserting its stand on the national song. Union Home Minister Amit Shah has now launched a scathing attack on Congress and said that Congress opposed Mataram in 1937 for appeasement politics, and now they're doing it again. He also urged people to unite against Congress's move. And this, of course, comes after, at the CWC meeting, sources say a resolution was passed on this very issue, with a consensus to sing the first two stanzas of Vande Mataram. The party is also likely to issue a fresh statement referring to the 1937 CWC resolution. Congress said that the party would abide by the decision taken by its leadership in 1937 and that there was no confusion over its position as well.
10: कल कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक

0: पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम एपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगतो देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है।
1: सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात को दोहराया गया कि जो 1937 का वंदे मातरम पर जो रेजोल्यूशन था पहले दो अंतरे गाने का, वो उसी का पालन करेगी कांग्रेस। अब बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं मुस्लिम लीग है।
2: क्या देश के नायक कौन है? बीजेपी है इस देश का नायक। इस देश के नायक सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब है। इनके खिलाफ जाएंगे हम, जाएं जिनको जाना है उनके खिलाफ। ये तब भी इनकी खिलाफत करते थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी कर रहे हैं। ये हैं असली देश के दुश्मन। हमें इनसे लड़ना आता है, पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे।
1: आप अपनी परंपरा का पालन करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि
2: नहीं, परंपरा नहीं है, इस देश की संस्कृति है। इस देश की संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की है।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि नई मुस्लिम लीग हो गई है।
2: अरे छोड़िए, ये संघी लोग, देश के दुश्मन, गद्दार लोग, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे? इनको इस देश से निकालना जरूरी हो गया। अब
3: slipping into a very short break, come right back, lots more lined up.
4: I'm in Ahmedabad's gift city today. From the lens of the regulator, how close do you think you are at this moment to achieving the dream of being Singapore, Hong Kong, New York or London when it comes to being an international center of finance?
5: What are global investors looking at? Policy stability, there's legal certainty, and there's also a tax certainty. In the last 5 years, the government of India has pretty much put in place all these things. Our regulations are now benchmarked to the best in the world.
4: Let's take the passporting of KYC, Know Your Customer norms. Even that doesn't seem to be as easy as a lot of international bankers expect.
5: We are also doing a pilot for unassisted Aadhaar face authentication or NRIs.
4: You've seen this model operate internationally. How far has India been able to evolve with GIFT City till this moment in time?
6: Started as a place for corporates, now wealth managers, individuals, private banking, a lot is happening.
4: Which are the instruments that you think that have now come up around GIFT City in a way that people really need to know it, and if they don't, they're missing out?
6: Let's say you're going to travel. Why do you want to pay a markup on your money you spend out, right? You should be able to spend directly from your bank account, and the bank account should be ideally able to recognize the currency.
4: हमारे तो कुलचे आ गए, आप और मैं तो ये खा लेंगे, बट ऑल दीज इंटरनेशनल फैंसी पैंट,

0: Welcome back, and shifting our focus to a viral story of a young girl from Itanagar in Arunachal Pradesh, which has now gone viral after she spoke out against being called Chinese because of her appearance. Her emotional response, firmly asserting that she is Indian, has once again highlighted the racial stereotypes faced by people from the Northeast. Take a listen.
1: 4-year-old Tinkle from Arunachal Pradesh has gone super viral. She's got the entire country in tears, cooing with affection over her video where she, with a very, very serious face, says, "Don't call me Chinese, I am Indian." She has won hearts everywhere in the country, and I am so honored, so happy to be joined today by little Tinkle. Or Tinkle ki ma Ayum is also with us. Ayum ji, pranam. Tinkle ka video itna viral ho gaya hai, to mera pehla sawal Tinkle se hi hai. Tinkle, aapne dekha aapka video itna viral ho gaya hai India mein? Aapne dekha wo? Us video mein aap kya bol rahe hain, Tinkle?
2: Kya bola tha,
1: bol do. Kya main kya
2: bola tha?
3: भैया हमको एक भैया हमको चाइनीज बोल रहे हैं।
1: कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज? आप तो इंडियन हैं, कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज?
3: एक भैया।
1: नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल इंडियन हो टिंकल, आप तो हमारे जैसे हैं इंडियन।
3: हम इंडियन हैं।
1: आयुम जी, ये आइडिया कहाँ से आया? टिंकल ने ये वीडियो कैसे बनाया, क्यों बनाया, उनकी उसके मन में क्यों था ये?
2: वो हमको भी इतना आइडिया नहीं था, तो टिंकल का एक वीडियो था, आइसक्रीम खाने वाला वीडियो जो, तो वो आइसक्रीम वीडियो में टिंकल जो हिंदी बोला था, तो एक आदमी जो है टिंकल को कमेंट किया है, ये चाइनीज बच्चा क्यों हिंदी बोल रहा है बोल के, तो टिंकल को दुखी हो गया, तो टिंकल ने वीडियो बना लिया।
1: टिंकल, आपको बुरा लगा ये कमेंट पढ़कर इंस्टाग्राम में? आपको बुरा लगा?
2: आपको आदमी शैलिश बोले तो बच्चा लगे ना, बुरा लगा?
3: बुरा नहीं,
1: नहीं, मुझे भी बुरा लगता अगर ऐसे कोई कमेंट करता तो। और टिंकल, हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें आप नेशनल एंथम गाते हैं, आप सल्यूट करते हैं, आप तिरंगा को सल्यूट करते हैं, तो आप काफी देश प्रेमी हैं। इंडिया को बहुत प्यार करते हैं आप टिंकल? और टिंकल, आपके पापा पुलिस में हैं, है ना?
3: मेरा
1: तो आपके पापा यूनिफॉर्म में होते हैं, हमने देखा है आपके फोटोज इंस्टाग्राम पर यूनिफॉर्म पहनते हुए, और आपका भी एक यूनिफॉर्म में एक वीडियो है तिरंगा को सल्यूट करते हुए। एक बार हमारे लिए, देश के लिए नेशनल एंथम गाओ टिंकल, अगर आप कर सकते हो तो नेशनल एंथम हम सुनना चाहेंगे आपसे। यस, स्टैंडिंग।
2: Yeah,
3: na na man. Yeah.

0: सल्यूट टू यू ट्विंकल, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमको, सबने सुना आपको एनडीटीवी पर और देश में, और हम बहुत सारे शुभकामनाएं देते हैं आपको। नमस्ते ट्विंकल, नमस्ते आयुम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू, जय हिंद,
1: थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।
2: On that note, we slip into a very short break. Come right back, lots more lined up for you here on NDTV.

0: Our top focus on NDTV right now. Now for a very disturbing story that we're starting from, and this is from Vishakhapatnam. It's the death of a six-year-old UKG student. His name, Pranay. It has shocked India. The toddler's family alleges that he was beaten by his teacher for not completing his homework. The family says the boy was healthy when he left home and that he later collapsed inside the classroom after allegedly being hit with a stick. They claim CCTV footage from the school shows the teacher hitting and frightening the child before he collapsed. The family also alleges that other children had been subjected to physical punishment as well. Police have now registered a case and launched an investigation, while the exact cause of death will be established through postmortem. Meanwhile, a video of a tourist confronting security personnel at a checkpoint in Kargil has gone viral. The woman was left waiting near the Minimarg checkpost in Dras after local police stopped travel on the Minimarg Zojila Sonmarg road. The holdup was due to travel restrictions in place on that stretch. And in the video, she can be heard arguing with army personnel, saying that we are Gen Z and that we will not tolerate this nonsense, telling them your salary comes from our taxes. The video has now received massive backlash online.
1: हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया पे, अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है। यहाँ पर हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए। अब आपका जो भी हुआ था, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना।
0: Well, this lady in this video has now spoken to NDTV's managing editor Shiv Arur. Take a look.
2: What happened? Because this video is viral. You are seen on camera, you know, shouting at security personnel, saying things like, we are Gen Z, you know, how dare you do this? My taxes pay your salaries. There is a lot of anger that has come out, madam, over that video. I want your side of the story. What happened? Tell us.
3: Hello. उस दिन जो चीजें हुई थी, उसका जो वीडियो लोगों ने डाला हुआ है, वो करेक्ट वीडियो नहीं है। उसमें मैं हूँ और मैं वहां पे चिल्ला भी रही हूँ, शाउट भी कर रही हूँ, इवन मैं फ्रस्ट्रेट होके बहुत चीजें बोल भी चुकी हूँ उस वीडियो में, जो कि मैं जानती हूँ। और पहली बात ये कि ये वीडियो एक मंथ पुरानी है, जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीजें बोली। उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे। हमें नहीं पता था कि उस दिन VIP मूवमेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है। हम लोग वहां पे बैठे हुए थे तो हमें 3-4 घंटे वहां सुबह से वहां पे वेट करते हुए हो गए। फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर और कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला कि मैम 1 घंटा और लगेगा। फिर हम लोगों ने 1 घंटा और वेट किया, वैसे वेट करते करते 6 घंटे हो गए। तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है, फौजी और शायद जो वहां पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ। हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए, हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की। उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई, मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 6 घंटे हो गए हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं जा पा रहे हैं, आपके वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है? लेकिन उस चीज को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर, मैं कभी सोशल मीडिया पर भी नहीं रहा।
2: जी जी बिल्कुल मैडम, लेकिन लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो जो जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है, ये आपके शब्द हैं, हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम, ये लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज जोन है, उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन जी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा, यू नो माई सैलरीज पे योर टैक्सेस, और एंड इन दिस वीडियो वी कैन क्लियरली सी कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, तो इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये एक महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि कोई किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए, वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है।
3: जी हाँ, मैंने ये सब चीज़ें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा मेरा भी फ़ोन ओपन है। बट जब वो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि गलती हमारी है, अगर वीआईपी मूवमेंट था हमें नहीं पता था, प्रेस्टेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया, मैंने उन सर से वहाँ सॉरी भी बोला था जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है, वहाँ की पुलिस को भी सॉरी बोला था। अब मैं दोबारा आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, J&K की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को, और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को, उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुंची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वजह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर या कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ कि मैं पॉपुलर होने के लिए किसी के साथ ऐसी चीजें करूंगी। मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, 25 साल की लड़की हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तहे दिल से सबसे माफी मांगती हूँ, कृपा करके आपके माध्यम से मुझे माफी दिलवाई जाए, और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ 100 बार 1000 बार, कृपा करके इस चीज को बंद किया जाए।
2: और मैं आपको ये रीअश्योरेंस देना चाहता हूँ मैडम कि आर्मी में कोई गुस्सा नहीं है आपके खिलाफ, कोई भी गुस्सा नहीं है, वो पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता है मैडम रोड क्लोज करने में, डिले करने में, ये फॉरवर्ड एरियाज में ये सब करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है, वीआईपी मूवमेंट्स या सिक्योरिटी मूवमेंट्स, ये एक इनकन्वीनियंस है सबके लिए, और अल्टीमेटली आर्मी किसके लिए काम कर रही है मैडम, देश के लिए,
3: पब्लिक के लिए सर, हमारे लिए,
2: लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन, मैं भी एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं, हम सब इनकन्वीनियंस फेस करते हैं, आर्मी ये समझती है मैडम, ये बिल्कुल समझती है। मैं आखिरी सवाल आपको मैडम, आपकी फैमिली, आपकी परिवार, आपके पेरेंट्स, वो ठीक हैं इस ये सब वायरल होने के बाद, उनका क्या मेंटल स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं आपको?
3: सर वो सब लोग, उन्होंने फोन करके मुझे इतना सुनाया कि कहने लग गए कि तू तो कभी भी ऐसे ऑनलाइन कभी कोई चीज नहीं करती, तू तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उस दिन क्या हो गया तुझे, तू तो कभी इतने तेज बात भी नहीं करती, किसी से लड़ती भी नहीं है, मतलब मैं ऑलवेज ज्यादा सपोर्टिंग रहती हूँ, जो कैट्स और डॉग्स होते हैं जिनको लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं, मैं उनकी हेल्पिंग करती हूँ ऑलवेज, तो उन्होंने बोला तेरा हेल्पिंग नेचर है तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली। मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया कि ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, मुझे भी पीछे से बोला गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते, उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने इतना सब कुछ बोल दिया, तो उसके लिए मैं इसलिए बहुत सॉरी हूँ। मेरी फैमिली बहुत मेंटली बहुत इस टाइम डिस्टर्ब है, क्योंकि वो हैरस हो चुकी है, सारे रिश्तेदार जितने आस पड़ोस सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस वजह पे, क्योंकि लोगों ने इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया है और मुझे इतनी गालियां पड़ रही हैं, मुझे लोग बहुत बहुत चीजें बोल रहे हैं जबकि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, उनको व्यूज के लिए या किसी चीज के लिए वो मुझे यूज कर रहे हैं कोई नहीं, मुझे सिर्फ अपने देश की जनता और अपने जवान भाइयों से माफी मांगनी थी आपके माध्यम से, वो मैंने मांग ली, तो मेरे को अब थोड़ा बहुत दिल को सुकून है कि मैंने ये चीज करी।
2: मैडम हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, मैं सिर्फ फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक दो दिन की बात है ये, लोगों को गुस्सा आता है जब जब लोग ऐसे तस्वीर देखते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, आपको भी पता है, तो इस

0: politics, and now they're doing it again. He also urged people to unite against Congress's move. And this, of course, comes after, at the CWC meeting, sources say a resolution was passed on this very issue, with a consensus to sing the first two stanzas of Vande Mataram. The party is also likely to issue a fresh statement referring to the 1937 CWC resolution. Congress said that the party would abide by the decision taken by its leadership in 1937 and that there was no confusion over its position as well.
1: कल कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है. उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के दो ही छंद गाने का फैसला किया है. मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम एपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था. आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है. इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है. कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है. वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे. आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है. मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है.
2: सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात को दोहराया गया कि जो 1937 का वंदे मातरम पर जो रेजोल्यूशन था पहले दो अंतरे गाने का, वो उसी का पालन करेगी कांग्रेस. अब बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं मुस्लिम लीग है.
3: क्या देश के नायक कौन है? बीजेपी है इस देश का नायक. इस देश के नायक सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब हैं. इनके खिलाफ जाएंगे हम? जाएं जिनको जाना है उनके खिलाफ. ये तब भी इनकी खिलाफत करते थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी कर रहे हैं. ये हैं असली देश के दुश्मन. हमें इनसे लड़ना आता है, पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे.
2: आप अपनी परंपरा का पालन करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि
3: नहीं, परंपरा नहीं है, इस देश की संस्कृति है. इस देश की संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की है.
2: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि नई मुस्लिम लीग हो गई है.
3: अरे छोड़िए, ये संघी लोग, देश के दुश्मन, गद्दार लोग, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे? इनको इस देश से निकालना जरूरी हो गया. अब
0: slipping into a very short break, I'm right back. Lots more lined up.
4: I'm in Ahmedabad's Gift City today. From the lens of the regulator, how close do you think you are at this moment

0: And shifting our focus to a viral story of a young girl from Itanagar in Arunachal Pradesh, which has now gone viral after she spoke out against being called Chinese because of her appearance. Her emotional response, firmly asserting that she is Indian, has once again highlighted the racial stereotypes faced by people from the Northeast. Take a listen.
1: 4-year-old Tinkle from Arunachal Pradesh has gone super viral. She's got the entire country in tears, cooing with affection over her video where she, with a very, very serious face, says, "Don't call me Chinese, I am Indian." She has won hearts everywhere in the country, and I am so honored, so happy to be joined today by little Tinkle. Or Tinkle ki ma Ayum is also with us. Ayum ji, pranam. Tinkle ka video itna viral ho gaya hai, to mera pehla sawal Tinkle se hi hai. Tinkle, aapne dekha aapka video itna viral ho gaya hai India mein? Aapne dekha wo? Us video mein aap kya bol rahe hain, Tinkle?
2: Kya bola tha,
1: bol do. Kya main
2: kya bola tha?
3: भैया हमको पर एक भैया हमको चाइनीज बोल रहे
1: हैं। कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज? आप तो इंडियन हैं। कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज?
3: एक भैया।
1: नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल इंडियन हो टिंकल, आप तो हमारे जैसे हैं इंडियन।
3: हम इंडिया है।
1: आयुम जी, ये आइडिया कहाँ से आया? टिंकल ने ये वीडियो कैसे बनाया, क्यों बनाया, उनकी उसके मन में क्यों था ये?
2: हमको भी इतना आइडिया नहीं था, तो टिंकल का एक वीडियो था, आइसक्रीम खाने वाला वीडियो, जो तो वो आइसक्रीम वीडियो में टिंकल जो हिंदी बोला था, तो एक आदमी जो है टिंकल को कमेंट किया है, ये चाइनीज बच्चा क्यों हिंदी बोल रहा है बोल के, तो टिंकल को दुखी हो गया, तो टिंकल ने वीडियो बना लिया।
1: टिंकल, आपको बुरा लगा ये कमेंट पढ़कर इंस्टाग्राम में? आपको बुरा लगा?
2: आपको आदमी शैलिश बोले तो बच्चा लगे ना, बुरा लगा?
3: बुरा नहीं,
1: नहीं, मुझे भी बुरा लगता अगर ऐसे कोई कमेंट करता तो। और टिंकल, हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें आप नेशनल एंथम गाते हैं, आप सल्यूट करते हैं, आप तिरंगा को सल्यूट करते हैं, तो आप काफी देश प्रेमी हैं। इंडिया को बहुत प्यार करते हैं आप टिंकल? और टिंकल, आपके पापा पुलिस में हैं, है ना?
3: मेरा
1: तो आपके पापा यूनिफॉर्म में होते हैं, हमने देखा है आपके फोटोज इंस्टाग्राम पर यूनिफॉर्म पहनते हुए, और आपका भी एक यूनिफॉर्म में एक वीडियो है तिरंगा को सल्यूट करते हुए। एक बार हमारे लिए, देश के लिए नेशनल एंथम गाओ टिंकल, अगर आप कर सकते हो तो नेशनल एंथम हम सुनना चाहेंगे आपसे। यस, स्टैंडिंग
2: जय
3: जन गण मन जन गण।

0: सल्यूट टू यू ट्विंकल, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमको, सबने सुना आपको एनडीटीवी पर और देश में, और हम बहुत सारे शुभकामनाएं देते हैं आपको। नमस्ते ट्विंकल, नमस्ते आयुम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू, जय हिंद।
1: थैंक यू,
2: बाय बाय।
3: On that note, we slip into a very short break. Come right back, lots more lined up for you here on NDTV.

0: Ahmedabad's gift city today. This is Prime Minister Narendra Modi's dream of building an international financial center. Now I think we're reaching a point where the international financial operators are the ones chasing gift city.
1: Began, there were just about 100 registrations. Today it's close to 1,250.
0: Always be that tension between your aspiration for GIFT City and the reality of Gujarat being a dry state.
1: Within the regulatory framework, everything what would be available outside the state is available.
0: I've been seeing that Edelweiss has been doing a lot of work in and around the GIFT City.
2: I think it's like making an investment in the MF business of 20 years ago.
0: Okay.
2: And hopefully 20 years later, we can say GIFT is what mutual fund is today.
0: How has customer adoption been and how are these products which you're operating out of GIFT faring versus what you do outside?
2: We want this to be a destination for NRIs coming into India via multi-manager. We are also enabling something else, Indians investing abroad.
3: While tracking more updates coming in at this hour, a video of a tourist confronting security personnel at a checkpoint in Kargil has now gone viral. The woman was left waiting near the Minimark checkpost in Dras after local police stopped the travel on Minimark Zojila Sonmark Road. The holdup was due to travel restrictions in place on that stretch. And in that video, she can be heard arguing with the army personnel, saying, and I quote, that we are Gen Z, we will not tolerate this, telling them your salary comes from our taxes. The video has now received massive backlash online. Take a look.
4: हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है, यहाँ पर कोई नहीं हिलेगा।
5: आपको
4: हमारे टैक्स से सबको सैलरी।
6: Good evening and welcome. You're on India Matters this Thursday night with me, Shiv Arur. As always, it's amazing to have you. We've got a big follow-up tonight on a story that everyone is talking about, whether you're triggered or whether you want to see what happened to the girl in that video. She has joined me today and spoken only to me today. That's what NDTV stands for, when it really matters. Let's get you straight to the top stories at 9. Like I said, the lady in that viral Ladakh tourist video has spoken to me, and you're going to see her entire interview right here on India Matters. She apologizes, says she has been depressed since then, watching the viral fallout of her obnoxious rant against the Indian Army and the forces. Supreme Court forms panel to examine use of force by the police in Delhi's July 20th protest. Five-member committee headed by former Supreme Court Judge R. Subhash Reddy to conduct an independent inquiry. Home Minister Amit Shah slams the Congress's Vande Mataram two-stanza stand, calls Congress anti-national, says insulting the national song and the nation is the Congress's only agenda. Tamil Nadu Chief Minister Vijay raises the NEET issue as well as questions delimitation during Home Minister Amit Shah's South huddle. D.K. Shivakumar raises the Mekedatu dam issue. Former Tehelka Editor-in-Chief Tarun Tejpal has moved Supreme Court, challenging the Bombay High Court's verdict that upheld his conviction and sentenced him to 10-year rigorous imprisonment in the 2013 rape case. He is supposed to surrender by the 3rd of September. Coming up on the show tonight, you're about to watch the only response and only interview of the woman who was caught on camera in a viral rant in Ladakh. You'll hear her apologize You'll hear her side of the story. No matter where you stand, it's the story that's gone the most viral this week. And you will see it only here on India Matters in just a moment. Also coming up, the war over Vande Mataram between the Congress and the BJP. It has exploded now with Amit Shah himself stepping into the ring. I ask, are there no bigger battles to fight? Why has this occupied so much mind space? The big face-off comes up and I have a surprise for you right at the end of tonight's India Matters. Thanks as always for being with me. Let's get you straight to our top story. I know you don't need reminding, viewer, because you watch India Matters every night. But yesterday on this broadcast, we asked some tough questions while putting the spotlight on a story that went beyond just the virality of what people saw in it. We critiqued this viral video of a young woman confronting security personnel in Ladakh, screaming, "We are Gen Z," as if it gave her the license to expect entitled privilege. We questioned the tone, the confrontation, and the optics of taking on men in uniform who are stationed in one of the most unforgiving terrains on earth to keep this country safe. Many agreed with us, many pushed back. Today, that same young woman is on our show. She spoke only to me, giving her version of what really unfolded on the ground. Television news cannot simply be about picking a side, delivering a lecture, and shutting the door on the other perspective. And on NDTV, we always return to the story when it really matters. Our security forces deserve unyielding respect that is non-negotiable. But citizens, especially young people in sensitive regions, have voices, frustrations, and context that raw social media videos often leave out. We didn't soften our questions today. She didn't hold back her answers. Here she is, live with me.
4: हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर।
6: And speaking out for the first time and joining me live here on NDTV for the first time since her video from Ladakh went completely viral is the woman who was on camera having that big angry meltdown after there was a road closure for a few hours in that forward area. Madam, at your request, we are not taking your name out of respect for your request. But I would like to start by asking you what happened, because this video is viral. You are seen on camera, you know, shouting at security personnel, saying things like, "We are Gen Z. You know, how dare you do this? My taxes pay your salaries." There is a lot of anger that has come out, madam, over that video. I want your side of the story. What happened? Tell us.
5: Hello. उस दिन जो चीजें हुई थी, उसका जो वीडियो लोगों ने डाला हुआ है, वो करेक्ट वीडियो नहीं है. उसमें मैं हूँ और मैं वहाँ पे चिल्ला भी रही हूँ, शाउट भी कर रही हूँ. इवन मैं फ्रस्ट्रेट होके बहुत चीजें बोल भी चुकी हूँ उस वीडियो में, जो कि मैं जानती हूँ. और पहली बात ये कि ये वीडियो एक मंथ पुरानी है, जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है. जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीजें बोली. उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे. हमें नहीं पता था कि उस दिन VIP मूवमेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है. हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे तो हमें 3-4 घंटे वहाँ सुबह से वहाँ पे वेट करते हुए हो गए. फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर और कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला कि मैम 1 घंटा और लगेगा. फिर हम लोगों ने 1 घंटा और वेट किया, वैसे वेट करते करते 6 घंटे हो गए. तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है, फौजी और शायद जो वहाँ पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ. हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए, हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की। उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई, मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 6 घंटे हो गए हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं जा पा रहे हैं, आपके VIP मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है। लेकिन उस चीज को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर, मैं कभी सोशल मीडिया पर भी नहीं रहा।
7: जी जी बिल्कुल मैडम, लेकिन लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो जो जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है, ये आपके शब्द हैं, हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम, ये लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज जोन है, उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन जी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा, यू नो माई सैलरीज पे योर टैक्सेस, और एंड इन दिस वीडियो वी कैन क्लियरली सी कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, तो इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये 1 महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि कोई किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए, वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है।
5: जी हाँ, मैंने ये सब चीज़ें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा मेरा भी फ़ोन ओपन है, बट जब वो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि गलती हमारी है, अगर VIP मूवमेंट था हमें नहीं पता था, प्रेस्टेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया, मैंने उन सर से वहाँ सॉरी भी बोला था जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है, वहाँ की पुलिस को भी सॉरी बोला था। अब मैं दोबारा आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, J&K की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को, और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को, उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुंची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वजह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर या कोई पब्लिक फिगर नहीं हूं कि मैं पॉपुलर होने के लिए किसी के साथ ऐसी चीजें करूंगी, मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, 25 साल की लड़की हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तहे दिल से सबसे माफी मांगती हूँ, कृपा करके आपके माध्यम से मुझे माफी दिलवाई जाए, और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ 100 बार 1000 बार, कृपा करके इस चीज को बंद किया जाए।
7: मैडम बिल्कुल, और आप NDTV पर बोल रहे हैं, ये इंडिया का सबसे बड़ा TV नेटवर्क है, तो
5: जी हाँ।
7: जिन ऑडियंस ने आपको देखा है, ये जो वायरल वीडियो देखा है, आपकी ये जो माफी है, आपकी ये जो रिग्रेट है, सब देखेंगे मैडम। मैं इसलिए आपको इस नेटवर्क पे नहीं बुलाया हूँ कि आपको आप पर शाउट करूं या आपको स्कोल्ड करूं, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी एक सिटीजन है मैडम, आपने जो फ्रस्ट्रेशन में किया है वो ऑलरेडी वायरल जा चुका है, इसलिए ये आपके लिए एक मौका है कि एक्सप्लेन करने के लिए क्या हुआ था, क्योंकि और मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैडम, क्योंकि
5: जी सर,
7: सबको ये फ्रस्ट्रेशन होता है मैडम, किसको yes. नहीं होता है, VIP मूवमेंट या मिलिट्री मूवमेंट को लेकर किसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है ना,
5: तो जी हाँ।
7: लेकिन कुछ शब्द जब हम बोलते हैं वो वायरल हो जाते हैं और इसी माहौल में बहुत बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं, ये 3 शब्द जो आपने बोला, VR Gen Z, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे, रिस्पेक्टफुली मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, आपने ये शब्द क्यों चूज़ किए, VR Gen Z, ये माहौल जो चल रहा है Gen Z प्रोटेस्ट को लेकर, इसलिए आपने चुना वो शब्द?
5: सर मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से वो वर्ड अचानक से आ गया, क्योंकि पीछे से बहुत लोग प्रोवोक कर रहे थे मेरे को कि हमारे साथ ये सब चीज़ बहुत होती है, आप लोग टूरिस्ट हैं, आपके साथ पहली बार हुई, आपको फेस करनी पड़ रही है, हम लोग रोज़ ये सब चीज़ें फेस करते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने मेरे को बताई, तो उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि अगर मैं ये सब चीज़ें बोलूँगी तो ये सब प्रॉब्लम हो जाएगी, बट ये चीज़ अचानक से हो गई, तो मैं अब क्या बोली इस चीज़ को, मेरा कोई अटेंशन नहीं था कि जैन जी का नाम लेके मैं कोई चीज़ ऐसा करती, ये बस गलती से चीज़ हो गई है सर।
7: देखिए मैडम, जब हम इमोशनल और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो बात निकल जाती है, मैं समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, और इसलिए मैं आपको ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि आपने ये सब क्यों बोला, क्योंकि देखिए मैडम हम भी ऑनलाइन होते हैं, हम भी गाली खाते हैं ऑनलाइन, और आपने इस 24 घंटे में बहुत कुछ देखा होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर क्या क्या लोग बोल रहे हैं आपके खिलाफ। मेरे शो कल मेरे शो पे भी कुछ वेटरन्स थे आपके लिए कुछ मैसेज दिए थे, आपने वो भी देखा होगा। लेकिन जब आप बोलते हैं कि कश्मीर में ये हुआ और अब ये यहाँ पे हो रहा है, ये भी आपका गुस्सा था, आप एक पॉइंट यू वांटेड टू मेक अ पॉइंट इसलिए आपके गुस्से में ये बोला।
5: सर वहाँ पीछे से लोग बोल रहे थे कि आप लोग टूरिस्ट हो, आपको ये सब फेस पहली बार करना पड़ रहा है तो आपको इतना बुरा लग रहा है। हम लोग रोज ये चीज फेस करते हैं उस वीडियो में, लेकिन वो चीज किसी ने दिखाई नहीं है जो पीछे से वहां जनता बोल रही थी। स्पेशली मेरे को टारगेट करके, मेरे को ही एज अ गर्ल मेरे को इतना बदनाम किया गया है, विक्टिम बनाया गया है कि मैं उसके खिलाफ अब मैं क्या बोल सकती हूँ। मैं सिर्फ माफी मांग सकती हूँ, क्योंकि मेरे को ये सब चीजें नहीं आती कि मैं वायरल होने के लिए ये करूँ वो करूँ। मेरा कोई पब्लिक फिगर ही नहीं है तो मैं क्या वायरल होंगी सर, आप बताइए। मैं माफीनामा के लिए भी आपके चैनल के थ्रू ये चीज भेज रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं अपना माफीनामा भी कहीं से अपलोड कर सकूँ। इसलिए आपके माध्यम से मैं देश की जनता से जिनको बुरा लगा है उनसे भी सॉरी मांग रही हूँ, अपने इंडियन आर्मी से भी मांग रही हूँ, जिनकी वजह से हम लोग इतना फ्रीडमली जीते हैं। अगर वो लोग नहीं होते तो हम लोग तो घर से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सर मैं इसलिए आपके माध्यम से आगे अपनी माफी पहुंचाना चाहती हूँ बस, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ सर।
7: क्या आप जेन ज़ी जो जनरेशन है मैडम उनसे कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है अभी सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पे इतना जो वायरल हुआ है, बहुत ऐसे जेन ज़ी लोग हैं जो बोलते हैं कि ये जेन ज़ी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम इसका खंडन करते हैं, हम इसको इसके खिलाफ हैं ऐसे बिहेवियर का। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जेन ज़ी को बदनाम करने के लिए प्लांट हुआ है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियोरीज है मैडम आपके बारे में, ये सब बोला जा रहा है, तो इसका रिप्लाई क्या देंगे आप?
5: सर मैं नहीं जानती कि इसका मैं क्या रिप्लाई दूं आपको, लेकिन जेन ज़ी का जो मैंने वहाँ नाम लिया था वो मैंने किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया था या किसी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लिया था। वो फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया कि हम लोग जेन ज़ी है, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं दिनों आपको पता है एक महीने पहले जंतर मंतर पे जो चीजें चल रही थी वो दिमाग में मेरे घर कर चुकी थी, जिसकी वजह से मेरे दिमाग ने पता नहीं क्या उस टाइम क्या मुझे नहीं समझ आ रहा क्या प्रॉब्लम हुआ कि मैंने उस टाइम वो

0: अब मेरा सारा पूरा फ्यूचर खराब हो रहा है उस चीज की वजह से, इसलिए मैं आपके चैनल पे आई हूँ, जबकि मैं मेडिकली और फिजिकली अभी फिट नहीं हूँ कि मैं किसी से बात कर सकूँ। बट उसके बाद भी मैंने सोचा कि नहीं, बोलना जरूरी है, वरना लोगों को लगेगा कि मैं गलत हूँ।
1: पहले तो मैं आपसे आपको ये बोलना चाहता हूँ मैडम कि आप प्लीज़ रोइए मत, आप इमोशनल मत होइए, ये सब होता रहता है मैडम। ये इस सोशल मीडिया के ज़माने में एक चीज़ जो वायरल होता है एक दो दिन के लिए होता है, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ,
0: मेरे साथ पहली बार हुई तो इसलिए थोड़ा मैं मेंटली बहुत हैरस हो गई। इवन मैं कल 19 तारीख को मैं साइबर क्राइम भी गई थी, मैंने वहां भी कंप्लेन दी कि सर मेरे साथ ये सब चीजें हो रही है। वहां मेरे को पैनिक अटैक आ गया, उन लोगों ने एम्बुलेंस भी बुलाई थी, मैं गई थी उनके पास, उन्होंने मेरे को रिसीविंग कंप्लेन भी दी कि जिसने भी आपका वीडियो इस तरीके से डाला है विदाउट परमिशन के, या आपने जो भी वहां चिल्लाया, लेकिन आपका वीडियो इस तरीके से नहीं डालना चाहिए था क्योंकि गर्ल्स की प्राइवेसी, मेरा फेस हाइड नहीं किया था, जिसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन और मेंटली इतना हैरेस हो गई कि उन्होंने मेरे लिए एम्बुलेंस बुला ली थी, मेरी तबीयत इतनी खराब हुई थी।
1: मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ आपको मैडम कि जो वायरल हुआ है वो हट नहीं सकता है। अब आप भी जानते हैं, आप बोल रहे हैं कि आप पब्लिक फिगर नहीं हो, ये ठीक है, लेकिन जब इंटरनेट पे कुछ डलता है मैडम, आपको भी पता है कि वो वहीं पे रहता है, वायरल हो जाता है, लोग बात करेंगे उस पर, गुस्सा करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, आप सब आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं अभी। लेकिन मैं आपको दिल से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक इंडियन सिटीजन है मैडम, ठीक है, आप कोई विलन नहीं हो। जो कुछ भी हुआ है, आप इमोशनल हो सकते हो, आप डिप्रेस्ड हो सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि दो तीन दिन बाद ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्योंकि आपने आपने क्लैरिफाई किया है, आपने अपने आपके शब्द के लिए रिग्रेट व्यक्त किया है, आपने माफ़ी मांगी है इंडियन आर्मी से। और देखिए, जब हम शो करते हैं NDTV पर, इंडियन आर्मी ने आपसे माफ़ी नहीं मांगा है, वो समझते हैं आपके फ्रस्ट्रेशन। कल हमारे शो में इंडियन आर्मी के वेटरन्स थे मैडम, उनका बोलना था कि हम समझते हैं नागरिकों का फ्रस्ट्रेशन, हम समझते हैं, तो इसलिए सेंसिटाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप आर्मी को क्या बोलेंगे मैडम, क्योंकि क्योंकि एक एक तस्वीर, एक पिक्चर, एक इमेज, एक वीडियो का बहुत महत्व होता है, वो वायरल होता है, लोगों के मेमोरी में रहता है मैडम, तो आप आर्मी को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आर्मी एक इमोशनल चीज़ है मैडम।
0: मैं आर्मी को पहले तो जय हिंद, अपने जवान भाइयों को, जो मेरे भाई बाप सब कुछ हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपने घर में सेफली सो पाते हैं, सुबह उठ पाते हैं, आप लोग बॉर्डर पे रह के हम लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हम जैसे बदतमीज लोग फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी बोल देते हैं, जबकि आप लोग हमें कभी कुछ नहीं बोलते, हम ही लोग फ्रस्ट्रेशन में आपको हमेशा पॉइंट आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने जवान भाइयों से, तमाम इंडियन आर्मी से और J&K की आर्मी से भी दिल से माफी मांगती हूँ, मुझे छोटी बहन समझ के मेरी बातों को आप प्लीज इग्नोर करें और मुझे माफ कर दें सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने ये सब चीज बोली, मुझे ये चीज बहुत रियलाइज पहले भी हुई थी, तभी मैंने वो वीडियो कभी भी नहीं चढ़ाया क्योंकि मुझे पता था मैंने वहां पे चिल्ला के गलत किया है, लेकिन आप लोगों ने कुछ भी मुझे नहीं बोला, मैं ये चीज मानती हूँ, प्लीज मेरे देश के जवान भाई मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी वहां पे गलती की है प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए।
1: और मैं आपको ये रीअश्योरेंस देना चाहता हूँ मैडम कि आर्मी में कोई गुस्सा नहीं है आपके खिलाफ, कोई भी गुस्सा नहीं है, वो पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता है मैडम रोड क्लोज करने में, डिले करने में, ये फॉरवर्ड एरियाज में ये सब करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है। VIP मूवमेंट्स या सिक्योरिटी मूवमेंट्स, ये एक इनकन्वीनियंस है सबके लिए, और अल्टीमेटली आर्मी किसके लिए काम कर रही है मैडम, देश के लिए,
0: पब्लिक के लिए सर, हमारे लिए,
1: लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन, मैं भी एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं, हम सब इनकन्वीनियंस फेस करते हैं, आर्मी ये समझती है मैडम, ये बिल्कुल समझती है। मैं आखिरी सवाल आपको मैडम, आपकी फैमिली, आपकी परिवार, आपके पेरेंट्स वो ठीक हैं इस ये सब वायरल होने के बाद, उनका क्या मेंटल स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं आपको?
0: सर वो सब लोग, उन्होंने फोन करके मुझे इतना सुनाया कि कहने लग गए कि तू तो कभी भी ऐसे ऑनलाइन कभी कोई चीज नहीं करती, तू तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उस दिन क्या हो गया तुझे, तू तो कभी...

0: भी इतने तेज बात भी नहीं करती, किसी से लड़ती भी नहीं है। मतलब मैं ऑलवेज ज्यादा सपोर्टिंग रहती हूँ। जो कैट्स और डॉग्स होते हैं जिनको लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं, मैं उनकी हेल्पिंग करती हूँ ऑलवेज। तो उन्होंने बोला तेरा हेल्पिंग नेचर है, तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली। मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया कि ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, मुझे भी पीछे से बोला गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते। उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने इतना सब कुछ बोल दिया। तो उसके लिए मैं इसलिए बहुत सॉरी हूँ। मेरी फैमिली बहुत मेंटली बहुत इस टाइम डिस्टर्ब है, क्योंकि वो हैरस हो चुकी है। सारे रिश्तेदार, जितने आस पड़ोस, सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस वजह पे, क्योंकि लोगों ने इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया है और मुझे इतनी गालियां पड़ रही हैं। मुझे लोग बहुत बहुत चीजें बोल रहे हैं, जबकि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। उनको व्यूज के लिए या किसी चीज के लिए वो मुझे यूज कर रहे हैं, कोई नहीं। मुझे सिर्फ अपने देश की जनता और अपने जवान भाइयों से माफी मांगनी थी आपके माध्यम से, वो मैंने मांग ली। तो मेरे को अब थोड़ा बहुत दिल को सुकून है कि मैंने ये चीज करी।
1: मैडम, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक एक दो दिन की बात है। ये लोगों को गुस्सा आता है जब जब लोग ऐसे तस्वीर देखते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, आपको भी पता है। तो इसलिए जो आपने आपने दिल से माफ़ी मांगी है, क्लैरिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, उसके लिए मैं आपको एडमायर करता हूँ और NDTV पर आपकी बात रखी जाएगी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम।
0: थैंक यू सर। थैंक यू।

0: हम इतना घर में बैठते हैं तो आप कैसे मत बोलो प्लीज। बाय।
1: An adorable little tinkle and her mother Ayum joined me from Itanagar, Arunachal Pradesh, just a short while ago. A four-year-old tinkle from Arunachal Pradesh has gone super viral. She's got the entire country in tears, cooing with affection over her video, where she with a very, very serious face says, "Don't call me Chinese, I am Indian." She has won hearts everywhere in the country. And I am so honored, so happy to be joined today by little Tinkle, or Tinkle ki ma, Ayum is also with us. Ayum ji, pranam. Tinkle ka video itna viral ho gaya hai, to mera pehla sawal Tinkle se hi hai. Tinkle, आपने देखा आपका वीडियो इतना वायरल हो गया है इंडिया में, आपने देखा वो? उस वीडियो में आप क्या बोल रहे हैं टिंकल?
2: क्या बोला था बोल दो, क्यों मैं क्या बोला था?
0: भैया हमको एक भैया हमको
1: कौन बोल रहा है आपको चाइनीज? आप तो इंडियन है, कौन बोल रहा है आपको चाइनीज?
0: ए भैया।
1: नहीं नहीं आप तो बिल्कुल इंडियन हो टिंकल, आप तो हमारे जैसे हैं इंडियन।
0: हम
1: आयुम जी, ये आइडिया कहां से आया? टिंकल ने ये वीडियो कैसे बनाया, क्यों बनाया, उनकी उसके मन में क्यों था ये?
2: वो हमको भी इतना आइडिया नहीं था, तो टिंकल का एक वीडियो था आइसक्रीम खाने वाला वीडियो जो, तो वो आइसक्रीम वीडियो में टिंकल जो हिंदी बोला था, तो एक आदमी जो है टिंकल को कमेंट किया है ये चाइनीज बच्चा क्यों हिंदी बोल रहा है बोल के, तो टिंकल को दुखी हो गया, तो टिंकल ने वीडियो बना लिया।
1: टिंकल आपको बुरा लगा ये कॉमेंट पढ़कर इंस्टाग्राम में, आपको बुरा लगा? नहीं मुझे भी बुरा लगता अगर ऐसे कोई कमेंट करता तो। और टिंकल हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें आप नेशनल एंथम गाते हैं, आप सल्यूट करते हैं, आप तिरंगा को सल्यूट करते हैं, तो आप काफी देश प्रेमी हैं। इंडिया को बहुत प्यार करते हैं आप टिंकल, और टिंकल आपके पापा पुलिस में हैं, है ना?
0: मेरा आपो पुलिस बनते हैं।
1: तो आपके पापा यूनिफॉर्म में होते हैं, हमने देखा है आपके फोटोज इंस्टाग्राम पर यूनिफॉर्म पहनते हुए, और आपका भी एक यूनिफॉर्म में एक वीडियो है तिरंगा को सल्यूट करते हुए। एक बार हमारे लिए देश के लिए नेशनल एंथम गाओ टिंकल, अगर आप कर सकते हो तो नेशनल एंथम हम सुनना चाहेंगे आपसे। Yes, standing.
2: Yeah,
0: na na na man.

0: सल्यूट टू यू ट्विंकल, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमको, सबने सुना आपको एनडीटीवी पर और देश में, और हम बहुत सारे शुभकामनाएं देते हैं आपको। नमस्ते ट्विंकल, नमस्ते आयुम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, जय हिंद।
1: थैंक यू, थैंक यू।

0: Our top focus on NDTV right now. Now for a very disturbing story that we're starting from, and this is from Vishakhapatnam. It's the death of a six-year-old UKG student. His name, Pranay. It has shocked India. The toddler's family alleges that he was beaten by his teacher for not completing his homework. The family says the boy was healthy when he left home and that he later collapsed inside the classroom after allegedly being hit with a stick. They claim CCTV footage from the school shows the teacher hitting and frightening the child before he collapsed. The family also alleges that other children had been subjected to physical punishment as well. Police have now registered a case and launched an investigation, while the exact cause of death will be established through postmortem. Meanwhile, a video of a tourist confronting security personnel at a checkpoint in Kargil has gone viral. The woman was left waiting near the Minimarg checkpost in Dras after local police stopped travel on the Minimarg Zojila Sonmarg road. The holdup was due to travel restrictions in place on that stretch. And in the video, she can be heard arguing with army personnel, saying that we are Gen Z and that we will not tolerate this nonsense, telling them your salary comes from our taxes. The video has now received massive backlash online.
1: हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है। यहाँ पर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए। अब आपका जो भी वादा था मैंने उसकी वीडियो बनाई, अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना मेरा नाम बदल देना।
0: Well, this lady in this video has now spoken to NDTV's managing editor Shiv Arur. Take a look.
2: What happened? Because this video is viral. You are seen on camera, you know, shouting at security personnel, saying things like, we are Gen Z. You know, how dare you do this? My taxes pay your salaries. There is a lot of anger that has come out, madam, over that video. I want your side of the story. What happened? Tell us.
3: Hello. उस दिन जो चीजें हुई थी उसका जो वीडियो लोगों ने डाला हुआ है वो करेक्ट वीडियो नहीं है। उसमें मैं हूँ और मैं वहां पे चिल्ला भी रही हूँ, शाउट भी कर रही हूँ, इवन मैं फ्रस्ट्रेट होके बहुत चीजें बोल भी चुकी हूँ उस वीडियो में, जो कि मैं जानती हूँ। और पहली बात ये कि ये वीडियो एक मंथ पुरानी है जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीजें बोली। उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे, हमें नहीं पता था कि उस दिन वीआईपी मूवमेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है। हम लोग वहां पे बैठे हुए थे तो हमें 3-4 घंटे वहां सुबह से वहां पे वेट करते हुए हो गए। फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर और कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला कि मैम 1 घंटा और लगेगा। फिर हम लोगों ने 1 घंटा और वेट किया, वैसे वेट करते करते 6 घंटे हो गए। तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है, फौजी और शायद जो वहां पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ। हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए, हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की। उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई, मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, छह घंटे हो गए हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे, कुछ नहीं जा पा रहे, आपके वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है? लेकिन उस चीज को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर, मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं रहती।
2: जी जी बिल्कुल मैडम, लेकिन लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो जो जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है, ये आपके शब्द हैं, हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम, ये लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज जोन है, उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन जी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा, यू नो माय सैलरीज पे योर टैक्सेस, और एंड इन दिस वीडियो वी कैन क्लियरली सी कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये एक महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि कोई किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए, वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है।
3: जी हाँ, मैंने ये सब चीजें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज्यादा गलत था, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा मेरा भी फोन ओपन है। बट जब वो चीजें सारी खत्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी क्योंकि गलती हमारी है, अगर वीआईपी मूवमेंट था हमें नहीं पता था, प्रेस स्टेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया, मैंने उन सर से वहां सॉरी भी बोला था जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है, वहां की पुलिस को भी सॉरी बोला था। अब मैं दोबारा आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, जे एंड के की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को, और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को, उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुंची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वजह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर या कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ कि मैं पॉपुलर होने के लिए किसी के साथ ऐसी चीजें करूंगी, मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, 25 साल की लड़की हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तहे दिल से सबसे माफी मांगती हूँ, कृपा करके आपके माध्यम से मुझे माफी दिलवाई जाए और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ 100 बार 1000 बार, कृपा करके इस चीज को बंद किया जाए।
2: और मैं आपको ये रीअश्योरेंस देना चाहता हूँ मैडम कि आर्मी में कोई गुस्सा नहीं है आपके खिलाफ, कोई भी गुस्सा नहीं है, वो पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता है मैडम रोड क्लोज करने में, डिले करने में, ये फॉरवर्ड एरियाज़ में ये सब करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है, वीआईपी मूवमेंट्स या सिक्योरिटी मूवमेंट्स, ये एक इनकन्वीनियंस है सबके लिए, और अल्टीमेटली आर्मी किसके लिए काम कर रही है मैडम, देश के लिए,
3: पब्लिक के लिए सर, हमारे लिए,
2: लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन, मैं भी एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं, हम सब इनकन्वीनियंस फेस करते हैं, आर्मी ये समझती है मैडम, ये बिल्कुल समझती है। मैं आखिरी सवाल आपको मैडम, आपकी फैमिली, आपके परिवार, आपके पेरेंट्स, वो ठीक हैं इस ये सब वायरल होने के बाद, उनका क्या मेंटल स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं आपको?
3: सर वो सब लोग, उन्होंने फोन करके मुझे इतना सुनाया कि कहने लग गए कि तू तो कभी भी ऐसे ऑनलाइन कभी कोई चीज नहीं करती, तू तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उस दिन क्या हो गया तुझे, तू तो कभी इतने तेज बात भी नहीं करती, किसी से लड़ती भी नहीं है, मतलब मैं ऑलवेज ज्यादा सपोर्टिंग रहती हूँ, जो कैट्स और डॉग्स होते हैं जिनको लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं मैं उनकी हेल्पिंग करती हूँ ऑलवेज, तो उन्होंने बोला तेरा हेल्पिंग नेचर है तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली। मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया कि ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, मुझे भी पीछे से बोला गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते, उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने इतना सब कुछ बोल दिया, तो उसके लिए मैं इसलिए बहुत सॉरी हूँ, मेरी फैमिली बहुत मेंटली बहुत इस टाइम डिस्टर्ब है क्योंकि वो हैरस हो चुकी है, सारे रिश्तेदार जितने आस पड़ोस सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस वजह पे, क्योंकि लोगों ने इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया है और मुझे इतनी गालियां पड़ रही हैं, मुझे लोग बहुत बहुत चीजें बोल रहे हैं जबकि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, उनको व्यूज के लिए या किसी चीज के लिए वो मुझे यूज कर रहे हैं कोई नहीं, मुझे सिर्फ अपने देश की जनता और अपने जवान भाइयों से माफी मांगनी थी आपके माध्यम से, वो मैंने मांग ली, तो मेरे को अब थोड़ा बहुत दिल को सुकून है कि मैंने ये चीज करी।
2: मैडम हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, मैं सिर्फ फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक दो दिन की बात है ये, लोगों को गुस्सा आता है जब जब लोग ऐसे तस्वीर देखते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, आपको भी पता है। तो इसलिए जो आपने दिल से माफ़ी मांगी है, क्लैरिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, उसके लिए मैं आपको एडमायर करता हूँ और NDTV पर आपकी बात रखी जाएगी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस।
0: Moving on, shifting our focus to other news now, Maharashtra has now started a statewide drive to check whether auto rickshaw and taxi drivers have a working knowledge of Marathi. RTO functions, pardon me, in Marathi to assess their language skills. The drive follows the new motor vehicle rules requiring public transport drivers to have a working knowledge of Marathi. Drivers who fail the oral Marathi check are now being issued notices and given 1 month to learn the language.
4: Aisa hamara
0: when Kashmir is an integral part of India, and that nobody needs to remind the country of this. Pakistan has reacted sharply, summoning the top US diplomat and lodging a formal demarche over Gore's comments. This is the first visit by top US diplomat to Jammu and Kashmir, that's after Operation Sindoor and the abrogation of Article 370.
5: Everybody here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. Last thing I'll share with you is the United States puts out travel warnings, and every so often we reevaluate those travel warnings. I cannot make any big announcements here today, but it is something we're going to look at. New Delhi, the chief minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer.
6: You know that that's very good that he's saying it, but this is something we have been insisting for a long time.
7: Kashmir is an integral part of India, and they must revalidate their, you know, travel advisory. It's part of India, so US should realize.
8: देखो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, एक अंग है हिंदुस्तान, तो उसको हम लोग मानते हैं कि हमारा अटूट हिस्सा है।
9: Well, I mean, the visit is significant because this is the first time that we've had a U.S. ambassador travel there since Operation Sindoor. There have been previous U.S. ambassadors that have visited the region, but it has been some time. And I think particularly in light of the fact that the Trump administration has taken a bit of an unconventional approach to the issue in terms of President Trump repeatedly claiming that he mediated the ceasefire between India and Pakistan last year, and also given President Trump's comment last year that he would like to help the two sides, find a solution to Kashmir. You know, these are things that are very unusual for U.S. policy. So against that backdrop of an unconventional administration, I think it was it's notable that we have the U.S. ambassador traveling to Kashmir against that backdrop.
0: Meanwhile, the political row over Vande Mataram has intensified, with the Congress asserting its stand on the national song. Union Home Minister Amit Shah has now launched a scathing attack on Congress and said that Congress opposed Mataram.

0: 37 CWC resolution. Congress said that the party would abide by the decision taken by its leadership in 1937 and that there was no confusion over its position as well.
1: कल कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है. उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के दो ही छंद गाने का फैसला किया है. मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम एपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था. आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है. इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है. कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है. वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे. आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है. मुझे तो बड़ा आश्चर्य है श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है.
2: सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात को दोहराया गया कि जो 1937 का वंदे मातरम पर जो रेजोल्यूशन था पहले दो अंतरे गाने का, वो उसी का पालन करेगी कांग्रेस. अब बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं मुस्लिम लीग है.
3: क्या देश के नायक कौन है? बीजेपी है इस देश का नायक. इस देश के नायक सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब हैं. इनके खिलाफ जाएंगे हम? जाएं जिनको जाना है उनके खिलाफ. ये तब भी इनकी खिलाफत करते थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी कर रहे हैं. ये हैं असली देश के दुश्मन. हमें इनसे लड़ना आता है, पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे.
2: आप अपनी परंपरा का पालन करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि
3: अपनी परंपरा नहीं है, इस देश की संस्कृति है. इस देश की संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की है.
2: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि नई मुस्लिम लीग हो गई है.
3: अरे छोड़िए, ये संघी लोग, देश के दुश्मन, गद्दार लोग, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे? इनको इस देश से निकालना जरूरी हो गया अब.
0: Slipping into a very short break, come right back, lots more lined up.

0: ambitions crossing borders, voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters. The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
2: Welcome back, and shifting our focus to a viral story of a young girl from Itanagar in Arunachal Pradesh, which has now gone viral after she spoke out against being called Chinese because of her appearance. Her emotional response, firmly asserting that she is Indian, has once again highlighted the racial stereotypes faced by people from the Northeast. Take a listen.
3: 4-year-old Tinkle from Arunachal Pradesh has gone super viral. She's got the entire country in tears, cooing with affection over her video where she, with a very, very serious face, says, "Don't call me Chinese, I am Indian." She has won hearts everywhere in the country, and I am so honored, so happy to be joined today by little Tinkle. Or Tinkle ki ma Ayum is also with us. Ayum ji, pranam. Tinkle ka video itna viral ho gaya hai, to mera pehla sawal Tinkle se hi hai. Tinkle, aapne dekha aapka video itna viral ho gaya hai India mein? Aapne dekha wo? Us video mein aap kya bol rahe hain, Tinkle?
4: Kya bola tha,
3: bol do.
4: Kya main kya bola tha?
5: भैया उनको पर एक भैया उनको चाइनीज बोल रहे
3: हैं। कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज? आप तो इंडियन हैं। कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज?
5: एक भैया।
3: नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल इंडियन हो टिंकल, आप तो हमारे जैसे हैं इंडियन।
5: हम इंडिया है।
3: आयुम जी, ये आइडिया कहाँ से आया? टिंकल ने ये वीडियो कैसे बनाया, क्यों बनाया, उनकी उसके मन में क्यों था ये?
4: वहां को भी इतना आइडिया नहीं था, तो टिंकल का एक वीडियो था, आइसक्रीम खाने वाला वीडियो जो, तो वो आइसक्रीम वीडियो में टिंकल जो हिंदी बोला था, तो एक आदमी जो टिंकल को कमेंट किया है, ये चाइनीज बच्चा क्यों हिंदी बोल रहा है बोल के, तो टिंकल को दुखी हो गया, तो टिंकल ने वीडियो बना लिया।
3: टिंकल, आपको बुरा लगा ये कमेंट पढ़कर इंस्टाग्राम में? आपको बुरा लगा?
4: आपको आदमी शैलीज बोले तो बच्चा लगे ना, बुरा लगा?
5: बुरा नहीं,
3: नहीं, मुझे भी बुरा लगता अगर ऐसे कोई कमेंट करता तो। और टिंकल, हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें आप नेशनल एंथम गाते हैं, आप सल्यूट करते हैं, आप तिरंगा को सल्यूट करते हैं, तो आप काफी देश प्रेमी हैं। इंडिया को बहुत प्यार करते हैं आप टिंकल? और टिंकल, आपके पापा पुलिस में हैं, है ना? तो आपके पापा यूनिफॉर्म में होते हैं, हमने देखा है आपके फोटोज इंस्टाग्राम पर यूनिफॉर्म पहनते हुए, और आपका भी एक यूनिफॉर्म में एक वीडियो है तिरंगा को सल्यूट करते हुए। एक बार हमारे लिए, देश के लिए नेशनल एंथम गाओ टिंकल, अगर आप कर सकते हो तो नेशनल एंथम हम सुनना चाहेंगे आपसे। यस, स्टैंडिंग।
4: Yeah,
5: na na man.

0: The whole protest started with a paper leak. The solution of the Education Minister of India, his brilliant solution was to shut Telegram. Because जो पेपर लीक करते हैं वो व्हाट्सएप से पेपर नहीं भेज सकते हो टेलीग्राम से भेजेंगे
1: नो आई थिंक आई थिंक दैट इज अनफेयर कंपैरिजन
0: व्हाई आई विल टेल यू व्हाई आई विल टेल यू व्हाई आई विल टेल यू व्हाई देयर इज अ पुशबैक फ्रॉम दैट प्लीज अलाउ मी आई विल टेल यू व्हाई देयर इज अ पुशबैक देयर इज अ पुशबैक बिकॉज़ नोबडी आउट हियर बिलीव्स इन कम्युनिज्म और सोशलिज्म नन ऑफ देम द पुशबैक इज इट्स नॉट एन इक्वल सोसाइटी फॉर देम दे डोंट हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज दैट नेतास किड्स एंड अदर पीपल
1: अलाउ मी
0: Again, there is the why do you all assume or why does the government assume that dissatisfaction will lead to violence?
1: Because that is what Naxalism advocates for.
0: It's a term the Prime Minister used without any
1: basis. That is a very lived reality of our country. It's not a term that the Prime Minister invented.
0: Allow me to.
1: Naxalism existed in our country until this year March.
0: Correct. And until this year, now in August 2026, as of today, left-wing extremism is on the right, is on the rise in the Northeast, particularly in Manipur. That is not the point. I completely agree with you. That is an please allow me to.
1: That is not left-wing, but allow
0: me to finish. Just allow me to finish. That is a failure of the government. The question is, when you brand your failure, their failure, to their aspirations, and then put motives on their aspirations that because they are unhappy, you accept that they are unhappy. It's not an equal society. They will resort to violence. Why will they resort to violence?
1: Okay.
0: They will resort to system being changed.
1: Just a second. I want to take more questions. Ask your
0: question. That I agree was a failure of the opposition. Just a second. That I agree with you.
1: Apna naam aur sawal.
2: Hello, sir. My name is Lakshay Baba and I am from Uttar Pradesh. सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि अगर देश के इतने बड़े पद से किसी वर्ड को बोला जा रहा है तो उसको स्पष्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप उस शब्द को स्पष्ट नहीं कर रहे हो तो देश में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए अगर कोई युवा कुछ युवा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं अगर आप उनको दिमागी नक्सल कह रहे हो तो झारखंड में जो युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे क्या वो दिमागी नक्सल नहीं है वो स्टूडेंट हैं और जंतर मंतर का युवा दिमागी नक्सल है बताइए
3: नहीं नहीं मुझे लगता है इसमें तो बहुत क्लैरिटी है आपने इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आपने सुनी खुद एक लाइन में उन्होंने बोला हथियारी नक्सल समाप्त हो गए दिमागी नक्सलों से हमें लड़ना पड़ेगा बहुत क्लैरिटी
2: लेकिन अभी सर ने अभी बोला
3: इसके बावजूद
2: सर ने अभी बोला कि
3: और दूसरा
2: सर ने अभी बोला कि 1908 तक वो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे 20 को वो लोग दिमागी नक्सल बने तो इस बात पे मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं
3: वो अलग
0: इशू है 6 महीने पहले देशद्रोही था लेकिन सोनम वांचुक 6 महीने पहले भाजपा के प्रवक्ता आते थे तहसील कहते सोनम वांचुक देशद्रोही 6 महीने पहले सोनम वांचुक सबसे बड़े
3: तहसीन की मुश्किल दूसरी है आप तहसीन के ट्रैप में मत फंसिए ये एलीट लोग हैं एलिटिस्ट मेंटेलिटी के लोग हैं एलीट क्लास के लोग हैं इन्होंने कहा एक मिनट तहसीन इन्होंने कहा कि वो दिमागी नक्सल वर्सेज जो पढ़े लिखे नहीं है इसका मतलब आप समझ रहे हैं
2: सर मैं
3: इसका मतलब ये हुआ
2: सर, मैं इस देश का यूथ
3: के हिसाब से जो नहीं रहेगा वो पढ़ा लिखा नहीं वो अनपढ़ हो गया
2: लेकिन
3: और यही वो खतरनाक तरीका है जिससे नक्सली कहते हैं जो वेजिंग वॉर अगेंस्ट नेशन है वो यही है वो यही
0: क्वेश्चन वेर देर वायलेंट राइट्स ऑन द 20th ऑफ जुलाई
4: By the Delhi police.
2: That is not violent.
0: No, that is violent. That is violent.
4: By the Delhi police.
0: There was a direct attack.
2: Violent, then violent no. Sakta hai.
0: First of all, violent you announced, no, I'm sorry. You announced that you wanted to violate section 144. The whole reason section 144 was imposed, let me finish. Section 144 was imposed in Delhi when parliament is in session because of the 2001 parliament attacks. They announced they were going to violate it. They gathered in numbers. They marched towards parliament. It was violent. At that point, the moment you cross the threshold into violence, you become a Naxal. Full stop.
2: Agar aap is desh ke yuvaon ki baat pehle hi maan lete, to ye sab dekhne nahi padta.
0: I haven't finished. The Jharkhand students, did they resort to violence?
5: No.
0: No.
5: Never.
0: Then how are they?
4: Okay, I'd like to comment.
0: So, पहले आप थोड़ा स्पष्टीकरण कर लीजिए ना आपके खुद के principles का
1: सवाल। Right to Zariwala, then this young man.
4: Okay, right to protest, right to dissent. The students were doing their protest constitutionally. कुछ नहीं हुआ था। It was all the violence by the Delhi police, sanctioned by Amit Shah, which is why the entire Delhi police. Allow me to speak. You know, I mean, we saw how those panned out. I mean, girls, women, उनके ऊपर you know, private parts में लाठियां चलाई गई हैं, किलो वाली लाठियां चलाई गई, what are you even talking about? That violence, I was there. I saw it happen right in front of me, tear gas. आंसू गैस के गोले एंड ऑल ऑफ दैट कम ऑन आई मीन नो पुलिस नो गवर्नमेंट हैज द राइट टू सैंक्शन ऑल ऑफ दैट वॉयलेंस अगेंस्ट द स्टूडेंट्स सो नाउ इफ यू गोइंग टू टॉक अबाउट दिमागी नक्सल्स प्राइम मिनिस्टर या तो बता दे कि वो किसकी तरफ मुखातिब है किसकी तरफ वो दिमागी नक्सल का इशारा कर रहे हैं या फिर हम अपने आप को दिमागी नक्सल कहेंगे तो आपको कोई मसले मसाइल नहीं होना चाहिए
1: चलिए बहुत जल्दी अपना सवाल पूछे
5: मैम आपको नहीं लगता कि जैसे आपने बताया कि दिल्ली पुलिस ने जो भी वॉयलेंट
4: राइट की थी
5: जो भी किया था अगर आपको पता हो तो सीजेपी का जो लीडर है अभिजीत दिपकई उसी की एक लाइव वीडियो थी जिसमें वो दिखा रहा था कि जो प्रोटेस्ट थे असल में 8 से 10 बच्चे वी डोंट नो वेदर दे वर स्टूडेंट्स और एंटी नेशनल आई बिलीव कि वे एंटी नेशनल्स थे और एंटी नेशनल्स को मौका ही चाहिए होता है ऐसे किसी प्रोटेस्ट में आने का उन्होंने एक पुलिसमैन को पहले घेरा और उसके बाद वॉयलेशन हुए और वैसे भी जो भी जंतर मंतर है उधर अलाउ कर रखा है गवर्नमेंट कि तुम्हें प्रोटेस्ट करने तुम भाग करो बट अगर जब वो प्रोटेस्ट जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक जाएगा तो उसको हमें पहले से ही बचाना पड़ेगा क्योंकि हमने रिसेंटली देखा लास्ट ईयर नेपाल में
4: उसकी वीडियो दिल्ली पुलिस को भेजी थी सारी सिक्योरिटी निकाल दी गई थी दिल्ली सिविल ड्रेस में पुलिस के नाम पे गुंडागर्दी हो रही थी लेट इट फिनिश
5: लास्ट ईयर हम सबने देखा नेपाल में क्या हुआ देयर वाज जेंजी प्रोटेस्ट अगर उसके वजह से नेपाल की पूरी गवर्नमेंट ओवरथ्रो होगी हमें भी पता है कि इंडिया जैसे एक इतने ज़्यादा डाइवर्स नेशन को हम इतनी ईजिली अगर गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करेंगे तो वो एक डिस्ट्रक्शन की तरफ ही लेके जाएगा और जब गवर्नमेंट ने जंतर मंतर को एक ऐसी जगह बना रखा है कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट करो तो आप उसे क्यों पार्लियामेंट तक लेके जा रहे हो
1: तो जो लॉ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लॉ के खिलाफ एक्शन है ओके मोर पीपल
4: जिस बर्बरता से दिल्ली पुलिस ने मारा है बच्चों को
0: कोई बर्बरता नहीं था इट वाज लॉ एंड ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर नो बर्बरता वेरी गुड
4: नॉट दैट आई एम सपोर्टिंग बांग्लादेश इन एनी वे पॉसिबल बट बांग्लादेश पुलिस को जब शेख हसीना ने कहा था स्टूडेंट्स पे लाठी मारे डंडा मारे पुलिस बैक्ड आउट आर्मी बैक्ड आउट क्या हम अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाएंगे आई एम इन नो वे सपोर्टिंग बांग्लादेश
1: व्हाट नोबडी बैक्ड आउट दे ओवरथ्रो द गवर्नमेंट
4: ऑफ दिल्ली पुलिस हमारी महान दिल्ली पुलिस बच्चों को मार रहे थे लिटरली
0: दे वर वायलेंट क्रिमिनल्स दे वर 3000 मर्डरर्स इन देयर उनको पीट रहे
1: थे जस्ट फॉर क्लैरिटी लेट मी रिमाइंड एवरीवन वाचिंग राइट नाउ हुडा जी यू आर सेइंग दैट बांग्लादेश पुलिस बैक्ड ऑफ In fact, the people who may just fit the definition of Dimagi Naksal or Naksal marched into her house.
4: Just the police action comparison.
6: मेरा नाम प्रदीप कुमार है सेकेंड ईयर मोतीलाल नेहरू कॉलेज मेरा आपसे ये सवाल है कि उधर नक्सलवाद दिमागी नक्सली नहीं कहा गया था कोचिंग माफियाज पे भी सवाल करा गया था और वहाँ पे जो सुनने वाले थे वहाँ पे बस और लोग भी नहीं स्टूडेंट एनसीसी यूनिट और एनएसएस यूनिट बैठी थी उसमें से मैं भी एक था जो सुनने आया था कि मोदी जी एजुकेशन पे क्या कहेंगे जो नीट पे ये बवाल हुआ है उसका सॉल्यूशन क्या है वो सुनने आए थे ना कि उनका पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने आए थे उन्हें पॉलिटिकल एजेंडा पे बात करने का कोई हक ही नहीं है हक की बात नहीं है
1: उन्हें तो अगर कह रहे हैं दिमागी नक्सल पॉलिटिकल एजेंडा है
6: पॉलिटिकल एजेंडा है उन्हें ये सब अगर टारगेट करना था तो पॉलिटिकल रैली में करते ना कि लाल किला से
1: क्योंकि
6: स्टूडेंट सुनने आए
1: अभिजीत आंसर दिस This seems more like a political agenda, says this young man, than something that should have been said on Independence Day. That's what Tehsin also said.
7: Can you zoom in on this? This is political rally in Kolkata. Indira Gandhi saying foreign hand. She said this in...
0: Political rally in Kolkata, Indira Gandhi saying foreign hand. She went on. This is during peak emergency.
1: No, but he is saying that you don't say political rally in Red Fort. Independence
0: Day is a political rally, boss. It has always been a political rally.
3: Why are you going to answer? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया पहली बात तो ये कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिटिकल है तो तब तो फिर रेड फोर्ट से पॉलिटिकल जिक्र होना चाहिए क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा इशू क्या हो सकता है इंडिपेंडेंस डे पे नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा इशू क्या हो सकता है
6: पहले आप सुनिए पहले जो एनसीसी यूनिट एनएसए यूनिट आई थी वो कॉलेज के थे
3: आप वो भी नेशनल सिक्योरिटी जानते हैं ना जैसे आप नेशनल सिक्योरिटी जानते हैं वैसे भी नेशनल सिक्योरिटी जानते हैं देश के 180 जिले पूरी तरह से माओइस्ट टेररिज्म से इफेक्टेड थे और आपको लग रहा है कि वो पॉलिटिकल इशू है जो बच्चों को स्कूल नहीं जाने देता जो महिलाओं को पढ़ने नहीं जाने देता जो अस्पताल नहीं जाने देता, जो आपको मोबाइल टावर नहीं लाने देना, जो आपको टीवी नहीं देखने देता, जो आपको सड़क नहीं लाने देता, वो आपको पॉलिटिकल लग रहा है। और अगर ये पॉलिटिकल है तो ये पॉलिटिकल हर प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए, हर प्राइम मिनिस्टर।
1: यू नो एंड आई आल्सो बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वांट टू गिव इट सम कॉन्टेक्स्ट। वन लेडी फ्रॉम कांकेर एक्चुअली स्पोक अबाउट दिस एंटायर डिबेट रेजिंग अराउंड दिमागी नक्सल एंड शी इज समबडी हु हैज लॉस्ट हर हस्बैंड। हर हस्बैंड वाज किल्ड बाय माओइस्ट एंड दिस इज समथिंग दैट वी डोंट टॉक ऑफन अबाउट। दीज आर पीपल हु ब्लू अप रोड्स इन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, व्हाट यूज्ड टू बी नोन एज द रेड कॉरिडोर। दे यूज्ड टू पिक अप मेन, ब्रांड देम इनफॉर्मर्स एंड स्लॉटर देम। आफ्टर अ सो कॉल्ड जन अदालत दे यूज्ड टू पिक अप लिटिल गर्ल्स एंड सेक्सुअली एक्सप्लॉइट देम, मैसेकर देम, लीव देम प्रेग्नेंट मेरी वेरी ऑफन। लेट्स लिसन टू दिस लेडी फ्रॉम कांकेर अबाउट व्हाट दिस।
8: हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि जो पी चिदंबरम बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया में मैं नक्सलियों के नक्सली दिमागी में समर्थन दे रही हूँ, इसी के विरुद्ध में आए हैं हम लोग अपने पति को हैं बस्तर में, तो ऐसे कई बहने हैं जो अपने पति को हैं।
1: So there are women there who have lost their husbands in Bastar, in Kanker.
0: Nobody from here, I'm taking the liberty to speak for them, wants violence or wants people to be killed. What are they asking for? Let's be clear and let's not mix up the two issues. What happened with this woman is terrible. Nexalism, violence is bad. At this moment, left-wing extremism, which is Nexalism, is happening in Manipur, where there are Jan Adalats, where people are being killed. At this moment, right now, between two communities, and the situation's quite messed up. And right now, Padmaja, you had interviewed, you've still not got the Nagaland Accord, which, by the way, is also left-wing extremism. Let's come to what they are asking for. What these people are asking for, what he went in hope for, was that the Honorable Prime Minister, after Dharmendra Pradhan went, said that there will be certain amount of solutions that will be given. None of those solutions are specific and they are left wanting for more. For example, I'll be very brief. This idea that if there's a paper leak, you'll suddenly have special courts and in 3 months people will be sentenced. Now, all of you all must ask, and I send this to all the opposition people, the opposition also in our country is so dumb that they didn't ask this question in Parliament, they didn't allow Parliament to function. You know, there in special courts, there are 3 lakh cases pending. Ask the government, where are you getting the judges from? Where are you getting the judges? Are they special judges? Or the judges who rape ka case dekh rahe, acid ka, unko wahan bithaoge? So both are fooling you, the government and the opposition. And that's where these people are left wanting. Now, when they're left wanting and they are asking for their rights, one calls them Gen Z, aap aage lado, dusra kehta hai aap dimagi naksal. Bhai, inko unka hak chahiye, aur kuch nahi chahiye. Stop calling them names, just give them what is right to them, their dignity.
1: Counter to that, Tehsin, you are right in saying that people went there looking for solutions. But आपको याद होगा कि वहाँ पर प्रधानमंत्री ने 1 crore लोगों को AI skilling की भी बात की थी. He also said that we are going to provide free of cost coaching, and that is where you were looking for those solutions, right? सबसे बड़ा आपका problem क्या है? That not everyone can afford coaching, but solutions were also spoken of. You are saying that he should speak only of solutions, should not bring in the politics. Very quickly, I think this gentleman here has a question.
9: Sir,
1: he has a
9: I believe the government shouldn't criminalize dissent. And the opposition shouldn't romanticize extremism. All are abided by the constitution.
0: Right. Brilliant.
9: And ma'am, Jharkhand mein bhi protest hua. There was no stone pelting. There was no. The police was not harmed. Wahan bhi sab students ko lathi padi. Delhi mein bhi lathiyan padi. And I second to that whatever you have said.
10: Punjab, their government, bahut lathiyan padi.
9: But
1: Kerala mein water cannon padi. Kerala mein bhi water cannon padi.
9: Kerala mein water cannon padi.
11: As a journalist.
1: Kerala mein SFI ko lathi padi. Haan.
9: But ma'am, either the opposition or the central government, we all are abided by the constitution. Jharkhand ke bachon ne aisa koi kaam nahi kiya ki police ko mara, aisa koi rasta liya jaise Delhi mein hua tha.
1: Okay, so
9: what's your opinion on that?
1: Same category mein nahi dala jana chahiye, aapka sawal.
3: Main bhi keh raha hu, last debate mein bhi maine yehi kaha tha.
1: Aapka sawal.
12: Good evening, ma'am. My name is Samar Gelord. I'm a student of first year at Netaji Subhash University of Technology. My question is simple, ki agar protest is moving towards the parliament and they are peaceful, so what should be the measures that should be taken to stop them? I don't think they should be let them march inside the parliament.
11: Agree.
12: So if there are
11: two things. पहली बात तो ये कि इट शुडंट रीच टू अ पॉइंट कि स्टूडेंट्स हैव टू एक्चुअली फॉर्म अ पार्लियामेंट मार्च. नाउ दैट इट हैज, द गवर्नमेंट शुड पीसफुली एड्रेस द स्टूडेंट्स. आपके मुल्क के बच्चे हैं ये, उनको पानी के बौछार से, किलो वाली डंडों से. डू नॉट क्रिएट दैट वायलेंस अगेंस्ट देम. एंड जहां तक झारखंड का सवाल है, एज फार एज झारखंड इज कंसर्न, द फैक्ट दैट राहुल गांधी जी एक्चुअली स्पोक अगेंस्ट एवरीथिंग दैट द पुलिस इन झारखंड डिड, द फैक्ट दैट एवरी ऑपोजिशन वॉज इन फेवर ऑफ द झारखंड प्रोटेस्ट, द फैक्ट दैट इट
1: डिड नॉट
13: Can I just elucidate this with an example? Assume ये खंजर है,
0: Nan Padmaja has taken out a restraining order against me. Right up to here, when I'm walking from here up to here, I'm

0: ठीक है, दिस इज नंबर वन. नंबर टू, अंडरस्टैंड विथ यूथ दे विल ऑलवेज सी एवरीथिंग इज एन इंसल्ट. आई रिमेंबर व्हेन माय मॉम यूज्ड टू टेल मी सर्टेन थिंग्स, आई एम लाइक अरे यार ये फड्डी डड्डी अंकल आंटी मम्मी पापा लोग, दे डोंट दिस थिंग, दिस इज नेचुरल. नाउ हु इज द वन अकॉर्डिंग टू यू हु स्पेसिफिकली इंसल्टिंग द यूथ? Because see, I don't think anybody takes the youth lightly at all ever, especially not in India where they're a huge voting demographic. So nobody has ever taken them for a ride. But I think it is also very important to understand that you have to work within the ambit of the law.
1: I think
2: I'll
1: so.
2: I'll tell you why the youth feel that they're being taken for granted. Like I said earlier, the opportunities that you have in privilege, and it's both in government and opposition, you guys don't have. For example, let's look at NEET, okay? And I'm going to be very personal. I hope this is not edited. आप कितनी भी मेहनत करते हो, आप डॉक्टर बन जाओ. सारा पेपर लीक हो गया, यू गेट ऑल दैट. चांसेस अगर आप बिहार से हो, नीतीश कुमार का बेटा आपका शिक्षा मंत्री, आपका स्वास्थ्य मंत्री होगा. एंड ही इज देयर बिकॉज ही नीतीश कुमार का बेटा. सो आई टेल यू द प्रॉब्लम इज, और आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑन, आप किसी भी 10 सेकंड दीजिए, आप किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी में, एक स्पोर्ट्स बॉडी को मत, किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी को देख लीजिए, पूरे भारत के अंदर सारे नेता उनके बच्चे बैठे हुए, उनको मैं बीजेपी को अटैक कर रहा हूं, एंटी बीजेपी, जस्ट 10 सेकंड, आई गिव यू 10 सेकंड. वो महाराष्ट्र में रोहित पवार क्यों एक क्रिकेट बोर्ड में, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बेटा क्यों एक क्रिकेट बोर्ड के ऊपर क्या. एंड सो यू सी व्हेन यू गाइस टुडे आर सीइंग दैट पीपल आर कमिंग एंड टचिंग देयर फीट, अरे दादा अरे साहब आप बन गए, एंड यू गाइस डोंट हैव दैट अपॉर्चुनिटी, इट इज ब्रीडिंग अ डिवाइड व्हिच इज ग्रोन मच मोर. यू हैव टू एक्सेप्ट इट, दे डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी दैट द ज्योतिरादित्य.
3: कोई कुछ भी कर ले, राहुल गांधी के सामने सब कुछ झुकना पड़ेगा.
2: मैं कह रहा हूं
3: राहुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. राहुल गांधी के सामने कोई कांग्रेसी कितनी भी मेहनत करे कुछ नहीं कर पाएगा, ये मुश्किल है ना. यही सोच जा
1: रहा है, तो जवानी जिस ओर चलेगी जमाना उसी ओर चलेगा. आई थिंक दिस वेरी पैथेटिक वीडियो वाज,
3: चलेगा नहीं, चल रहा है, चल रहा है.
1: गवर्नमेंट गवर्नमेंट का
3: तरीका
1: जन अल्फा, क्लियरली दे आर फेलिंग massively at it, monumental failure ye dikha raha hai, unka darsha raha hai.
4: You know, at the end of the day,
1: the opposition is with the janta,
4: not just the youth, every single citizen, the people of India should demand respect, should demand what the government owes them, but also be mindful that in the course of doing that, are you being in any way being influenced or brainwashed, and is there an attempt to try and create Dimagi Naxals? You've heard enough from here, but thank you very much as always to this lovely, lovely group of young people here, and as always to our panelists. And thanks very much for joining us here, because remember, when it really matters, the buck stops here. Thanks for watching. Thank you.

0: Welcome back, and shifting our focus to a viral story of a young girl from Itanagar in Arunachal Pradesh, which has now gone viral after she spoke out against being called Chinese because of her appearance. Her emotional response, firmly asserting that she is Indian, has once again highlighted the racial stereotypes faced by people from the Northeast. Take a listen.
1: 4-year-old Tinkle from Arunachal Pradesh has gone super viral. She's got the entire country in tears, cooing with affection over her video where she, with a very, very serious face, says, "Don't call me Chinese, I am Indian." She has won hearts everywhere in the country, and I am so honored, so happy to be joined today by little Tinkle. Or Tinkle ki ma Ayum is also with us. Ayum ji, pranam. Tinkle ka video itna viral ho gaya hai, to mera pehla sawal Tinkle se hi hai. Tinkle, aapne dekha aapka video itna viral ho gaya hai India mein? Aapne dekha wo? Us video mein aap kya bol rahe hain, Tinkle?
2: Kya bola tha,
1: bol do. Kya main kya
2: bola tha?
3: भैया हमको एक भैया हमको चाइनीज बोल रहे
1: हैं। कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज? आप तो इंडियन हैं। कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज?
3: ए भैया।
1: नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल इंडियन हो टिंकल, आप तो हमारे जैसे हैं इंडियन।
3: हम इंडियन हैं।
1: आयुम जी, ये आइडिया कहाँ से आया? टिंकल ने ये वीडियो कैसे बनाया, क्यों बनाया, उनकी उसके मन में क्यों था ये?
2: वो हमको भी इतना आइडिया नहीं था, तो टिंकल का एक वीडियो था, आइसक्रीम खाने वाला वीडियो जो, तो वो आइसक्रीम वीडियो में टिंकल जो हिंदी बोला था, तो एक आदमी जो है टिंकल को कमेंट किया है, ये चाइनीज बच्चा क्यों हिंदी बोल रहा है बोल के, तो टिंकल को दुखी हो गया, तो टिंकल ने वीडियो बना लिया।
1: टिंकल, आपको बुरा लगा ये कमेंट पढ़कर इंस्टाग्राम में? आपको बुरा लगा?
2: आपको आदमी शैलिश बोले तो बच्चा लगे ना, बुरा लगा?
3: बुरा नहीं,
1: नहीं, मुझे भी बुरा लगता अगर ऐसे कोई कमेंट करता तो। और टिंकल, हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें आप नेशनल एंथम गाते हैं, आप सल्यूट करते हैं, आप तिरंगा को सल्यूट करते हैं, तो आप काफी देश प्रेमी हैं। इंडिया को बहुत प्यार करते हैं आप टिंकल? और टिंकल, आपके पापा पुलिस में हैं, है ना?
3: मेरा
1: तो आपके पापा यूनिफॉर्म में होते हैं, हमने देखा है आपके फोटोज इंस्टाग्राम पर यूनिफॉर्म पहनते हुए, और आपका भी एक यूनिफॉर्म में एक वीडियो है तिरंगा को सल्यूट करते हुए। एक बार हमारे लिए, देश के लिए नेशनल एंथम गाओ टिंकल, अगर आप कर सकते हो तो नेशनल एंथम हम सुनना चाहेंगे आपसे। यस, स्टैंडिंग।
2: Yeah,
3: na na man, yeah na na man.

0: अंकल थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमको, सबने सुना आपको एनडीटीवी पर और देश में, और हम बहुत सारे शुभकामनाएं देते हैं आपको। नमस्ते टिंकल, नमस्ते आयुम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, जय हिंद।
1: थैंक यू, बाय बाय।
2: On that note, we slip into a very short break. Come right back, lots more lined up for you here on NDTV.

0: our top focus on NDTV right now. Now for a very disturbing story that we're starting from, and this is from Vishakhapatnam. It's the death of a six-year-old UKG student. His name, Pranay. It has shocked India. The toddler's family alleges that he was beaten by his teacher for not completing his homework. The family says the boy was healthy when he left home and that he later collapsed inside the classroom after allegedly being hit with a stick. They claim CCTV footage from the school shows the teacher hitting and frightening the child before he collapsed. The family also alleges that other children had been subjected to physical punishment as well. Police have now registered a case and launched an investigation, while the exact cause of death will be established through postmortem. Meanwhile, a video of a tourist confronting security personnel at a checkpoint in Kargil has gone viral. The woman was left waiting near the Minimarg checkpost in Dras after local police stopped travel on the Minimarg Zojila Sonmarg road. The holdup was due to travel restrictions in place on that stretch, and in the video, she can be heard arguing with army personnel, saying that we are Gen Z and that we will not tolerate this nonsense, telling them your salary comes from our taxes. The video has now received massive backlash online.
1: हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया पे, अपना नाम भी नहीं बताया और वहाँ चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है, यहाँ पर हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसीलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए। अब आपका जो भी हुआ था मैंने उसकी वीडियो बनाई, अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना मेरा नाम बदल देना।
0: Well, this lady in this video has now spoken to NDTV's managing editor Shiv Arur. Take a look.
2: What happened? Because this video is viral. You are seen on camera, you know, shouting at security personnel, saying things like, we are Gen Z, you know, how dare you do this? My taxes pay your salaries. There is a lot of anger that has come out, madam, over that video. I want your side of the story. What happened? Tell us.
3: Hello. उस दिन जो चीजें हुई थी उसका जो वीडियो लोगों ने डाला हुआ है वो करेक्ट वीडियो नहीं है। उसमें मैं हूँ और मैं वहां पे चिल्ला भी रही हूँ, शाउट भी कर रही हूँ, इवन मैं फ्रस्ट्रेट होके बहुत चीजें बोल भी चुकी हूँ उस वीडियो में, जो कि मैं जानती हूँ। और पहली बात ये कि ये वीडियो एक मंथ पुरानी है जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीजें बोली। उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे, हमें नहीं पता था कि उस दिन वीआईपी मूवमेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है। हम लोग वहां पे बैठे हुए थे तो हमें 3-4 घंटे वहां सुबह से वहां पे वेट करते हुए हो गए। फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर और कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला कि मैम 1 घंटा और लगेगा। फिर हम लोगों ने 1 घंटा और वेट किया, वैसे वेट करते करते 6 घंटे हो गए। तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है फौजी और शायद जो वहां पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ। हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए, हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की। उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई, मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 6 घंटे हो गए हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं जा पा रहे हैं, आपके वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है? लेकिन उस चीज को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर, मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं रहती।
2: जी बिल्कुल मैडम, लेकिन लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो जो जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है, ये आपके शब्द हैं, हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम, ये लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज जोन है, उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन जी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा, यू नो माई सैलरीज पे योर टैक्सेस, और एंड इन दिस वीडियो वी कैन क्लियरली सी कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये एक महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि

0: कोई किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए, वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है।
1: जी हाँ, मैंने ये सब चीजें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज्यादा गलत था, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा मेरा भी फोन ओपन है। बट जब वो चीजें सारी खत्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि गलती हमारी है। अगर वीआईपी मूवमेंट था, हमें नहीं पता था, प्रेस स्टेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया। मैंने उन सर से वहाँ सॉरी भी बोला था, जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है, वहाँ की पुलिस को भी सॉरी बोला था। अब मैं दोबारा आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, जे एंड के की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को, और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को, उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुंची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वजह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर या कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ कि मैं पॉपुलर होने के लिए किसी के साथ ऐसी चीजें करूंगी। मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, 25 साल की लड़की हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तहे दिल से सबसे माफी मांगती हूँ। कृपा करके आपके माध्यम से मुझे माफी दिलवाई जाए और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ 100 बार 1000 बार, कृपा करके इस चीज को बंद किया जाए।
0: और मैं आपको ये रीअश्योरेंस देना चाहता हूँ मैडम कि आर्मी में कोई गुस्सा नहीं है आपके खिलाफ, कोई भी गुस्सा नहीं है, वो पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता है मैडम रोड क्लोज करने में, डिले करने में, ये फॉरवर्ड एरियाज में ये सब करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है। वीआईपी मूवमेंट्स या सिक्योरिटी मूवमेंट्स, ये एक इनकन्वीनियंस है सबके लिए, और अल्टीमेटली आर्मी किसके लिए काम कर रही है मैडम, देश के लिए,
1: पब्लिक के लिए, सर हमारे लिए,
0: लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन, मैं भी एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं, हम सब इनकन्वीनियंस फेस करते हैं, आर्मी ये समझती है मैडम, ये बिल्कुल समझती है। मैं आखिरी सवाल आपको मैडम, आपकी फैमिली, आपकी परिवार, आपके पेरेंट्स, वो ठीक हैं इस ये सब वायरल होने के बाद, उनका क्या मेंटल स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं आपको?
1: सर वो सब लोग, उन्होंने फोन करके मुझे इतना सुनाया कि कहने लग गए कि तू तो कभी भी ऐसे ऑनलाइन कभी कोई चीज नहीं करती, तू तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उस दिन क्या हो गया तुझे, तू तो कभी इतने तेज बात भी नहीं करती, किसी से लड़ती भी नहीं है, मतलब मैं ऑलवेज ज्यादा सपोर्टिंग रहती हूँ, जो कैट्स और डॉग्स होते हैं जिनको लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं, मैं उनकी हेल्पिंग करती हूँ ऑलवेज। तो उन्होंने बोला तेरा हेल्पिंग नेचर है तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली। मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया कि ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, मुझे भी पीछे से बोला गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते, उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने इतना सब कुछ बोल दिया, तो उसके लिए मैं इसलिए बहुत सॉरी हूँ। मेरी फैमिली बहुत मेंटली बहुत इस टाइम डिस्टर्ब है, क्योंकि वो हैरस हो चुकी है, सारे रिश्तेदार जितने आस पड़ोस सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस वजह पे, क्योंकि लोगों ने इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया है और मुझे इतनी गालियां पड़ रही हैं, मुझे लोग बहुत बहुत चीजें बोल रहे हैं जबकि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, उनको व्यूज के लिए या किसी चीज के लिए वो मुझे यूज कर रहे हैं कोई नहीं, मुझे सिर्फ अपने देश की जनता और अपने जवान भाइयों से माफी मांगनी थी आपके माध्यम से, वो मैंने मांग ली, तो मेरे को अब थोड़ा बहुत दिल को सुकून है कि मैंने ये चीज करी।
0: मैडम हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, मैं सिर्फ फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक दो दिन की बात है, ये लोगों को गुस्सा आता है जब जब लोग ऐसे तस्वीर देखते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, आपको भी पता है, तो इसलिए जो आपने दिल से माफ़ी मांगी है, क्लैरिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, उसके लिए मैं आपको एडमायर करता हूँ, और NDTV पर आपकी बात रखी जाएगी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस।
2: Moving on, shifting our focus to other news now, Maharashtra has now started a statewide drive to check whether auto rickshaw and taxi drivers have a working knowledge of Marathi. RTO flying squads are carrying out checks, asking drivers basic questions in Marathi to assess their language skills. The drive follows the new motor vehicle rules requiring public transport drivers to have a working knowledge of Marathi. Drivers who fail the oral Marathi check are now being issued notices and given 1 month to learn the language.
3: ऐसा हमारा सिलेबस फिक्स है मराठी एग्जाम का वर्किंग नॉलेज चेक करने के लिए, इसके अंदर एक पैसेंजर और एक ड्राइवर इनका कॉन्वर्सेशन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें हम मैं उनको पूछता हूँ कि मेला या ठिकाणी जायचा है, तर उन्होंने ऐसा बोलना चाहिए कि या बसा, मराठी में जब आप बोलते हो मीटर लावू का, हाँ मीटर चालू के लिए रिक्शा स्टैंड कुठे आहे, तो जवळ आहे, समोर आहे। तो असे दोन ये जो 15 क्वेश्चन का सिलेबस है उनके अंदर हम उनको पूछते हैं, उनको उन्होंने उसमें सैटिस्फैक्ट्री आंसर दिया तो हम उनको पास करते हैं।
2: In other news, U.S. Ambassador to India Sergio Gore is in Jammu and Kashmir making a high-profile visit that has drawn attention in New Delhi and Islamabad as well. Gore described Jammu and Kashmir as an important part of India, praised the government's steps in the region and indicated the U.S. may reevaluate its travel advisory. Well, Congress has now welcomed Gore's remarks, saying that Jammu and Kashmir is an integral part of India and that nobody needs to remind the country of this. Pakistan has reacted sharply, summoning the top US diplomat and lodging a formal demarche over Gore's comments. This is the first visit by top US diplomat to Jammu and Kashmir. That's after Operation Sindoor and the abrogation of Article 370.
4: Everybody here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. Last thing I'll share with you is the United States puts out travel warnings, and every so often we reevaluate those travel warnings. I cannot make any big announcements here today, but it is something we're going to look at. New Delhi, the chief minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer.
5: We know that it's very good that he's saying it, but this is something we have been insisting for a long time.
6: Kashmir is an integral part of India, and they must revalidate their, you know, travel advisory. It's part of India, so US should realize.
7: देखो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है, एक अंग है हिंदुस्तान, तो उसको हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, किसी और को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हम लोग मानते हैं कि हमारा अटूट हिस्सा है।
8: Well, I mean, the visit is significant because this is the first time that we've had a U.S. ambassador travel there since Operation Sindoor. There have been previous U.S. ambassadors that have visited the region, but there has been some time. And I think particularly in light of the fact that the Trump administration has taken a bit of an unconventional approach to the issue in terms of President Trump repeatedly claiming that he mediated the ceasefire between India and Pakistan last year, and also given President Trump's comment last year that he would like to help the two sides, find a solution to Kashmir. You know, these are things that are very unusual for U.S. policy. So against that backdrop of an unconventional administration, I think it was it's notable that we have the U.S. ambassador traveling to Kashmir against that backdrop.
2: Meanwhile, the political row over Vande Mataram has intensified, with the Congress asserting its stand on the national song. Union Home Minister Amit Shah has now launched a scathing attack on Congress and said that Congress opposed Mataram in 1937 for appeasement politics, and now they're doing it again. He also urged people to unite against Congress's move. And this, of course, comes after, at the CWC meeting, sources say a resolution was passed on this very issue, with a consensus to sing the first two stanzas of Vande Mataram. The party is also likely to issue a fresh statement referring to the 1937 CWC resolution. Congress said that the party would abide by the decision taken by its leadership in 1937 and that there was no confusion over its position as well.
9: कल कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के दो ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम एपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है।
10: सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात को दोहराया गया कि जो 1937 का वंदे मातरम पर जो रेजोल्यूशन था पहले दो अंतरे गाने का, वो उसी का पालन करेगी कांग्रेस। अब बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं मुस्लिम लीग है।
11: क्या देश के नायक कौन है? बीजेपी है इस देश का नायक। इस देश के नायक सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब हैं। इनके खिलाफ जाएंगे हम, जाएं जिनको जाना है उनके खिलाफ। ये तब भी इनकी खिलाफत करते थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी कर रहे हैं। ये हैं असली देश के दुश्मन। हमें इनसे लड़ना आता है, पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे।
10: आप अपनी परंपरा का पालन करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि
11: नहीं, परंपरा नहीं है, इस देश की संस्कृति है। इस देश की संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की है।
10: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि नई मुस्लिम लीग हो गई है।
11: अरे छोड़िए, ये संघी लोग, देश के दुश्मन, गद्दार लोग, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे? इनको इस देश से निकालना जरूरी हो गया अब।
2: Slipping into a very short break, I'm right back, lots more lined up.

0: And shifting our focus to a viral story of a young girl from Itanagar in Arunachal Pradesh, which has now gone viral after she spoke out against being called Chinese because of her appearance. Her emotional response, firmly asserting that she is Indian, has once again highlighted the racial stereotypes faced by people from the Northeast. Take a listen.
1: 4-year-old Tinkle from Arunachal Pradesh has gone super viral. She's got the entire country in tears, cooing with affection over her video where she, with a very, very serious face, says, "Don't call me Chinese, I am Indian." She has won hearts everywhere in the country, and I am so honored, so happy to be joined today by little Tinkle. Or Tinkle ki ma Ayum is also with us. Ayum ji, pranam. Tinkle ka video itna viral ho gaya hai, to mera pehla sawal Tinkle se hi hai. Tinkle, aapne dekha aapka video itna viral ho gaya hai India mein? Aapne dekha wo? Us video mein aap kya bol rahe hain, Tinkle?
2: Kya bola tha, bol do. Kya
1: mujhe
2: bola tha?
3: भैया हमको एक भैया हमको चाइनीज बोले।
1: कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज? आप तो इंडियन हैं, कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज?
3: एक भैया।
1: नहीं नहीं आप तो बिल्कुल इंडियन हो टिंकल, आप तो हमारे जैसे हैं इंडियन।
3: हम इंडियन है।
1: आयुम जी, ये आइडिया कहाँ से आया? टिंकल ने ये वीडियो कैसे बनाया, क्यों बनाया, उनकी उसके मन में क्यों था ये?
2: हमको भी इतना आइडिया नहीं था, तो टिंकल का एक वीडियो था आइसक्रीम खाने वाला वीडियो जो, तो वो आइसक्रीम वीडियो में टिंकल जो हिंदी बोला था, तो एक आदमी जो है टिंकल को कमेंट किया है, ये चाइनीज बच्चा क्यों हिंदी बोल रहा है बोल के, तो टिंकल को दुखी हो गया, तो टिंकल ने वीडियो बना लिया।
1: टिंकल, आपको बुरा लगा ये कमेंट पढ़कर इंस्टाग्राम में? आपको बुरा लगा?
2: आपको आदमी शैलिश बोले तो बच्चे लगे ना, बुरा लगा?
3: बुरा नहीं,
1: नहीं मुझे भी बुरा लगता अगर ऐसे कोई कमेंट करता तो। और टिंकल, हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें आप नेशनल एंथम गाते हैं, आप सल्यूट करते हैं, आप तिरंगा को सल्यूट करते हैं, तो आप काफी देश प्रेमी हैं। इंडिया को बहुत प्यार करते हैं आप टिंकल? और टिंकल, आपके पापा पुलिस में हैं, है ना? तो आपके पापा यूनिफॉर्म में होते हैं, हमने देखा है आपके फोटोज इंस्टाग्राम पर यूनिफॉर्म पहनते हुए, और आपका भी एक यूनिफॉर्म में एक वीडियो है तिरंगा को सल्यूट करते हुए। एक बार हमारे लिए, देश के लिए नेशनल एंथम गाओ टिंकल, अगर आप कर सकते हो तो नेशनल एंथम हम सुनना चाहेंगे आपसे। यस, स्टैंडिंग।
2: जय
3: जन गण मन।

0: हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया पे, अपना नाम भी नहीं बताया और वहाँ चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है, यहाँ पर यहाँ से कोई नहीं हिलेगा।
1: आपको आपने पूरा पब्लिक को उकसाया, आपने उकसाया पब्लिक को पूरा।
0: ठीक है, हम लोग
2: जेल
0: में हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसीलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए। अब आपका जो भी हुआ था मैंने उसकी वीडियो बनाई, अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना मेरा नाम बदल देना।
3: Well, this lady in this video has now spoken to NDTV's managing editor Shiv Arur. Take a look.
4: What happened? Because this video is viral. You are seen on camera, shouting at security personnel, saying things like, "We are Gen Z. You know, how dare you do this? My taxes pay your salaries." There is a lot of anger that has come out, madam, over that video. I want your side of the story. What happened? Tell us.
5: Hello. उस दिन जो चीजें हुई थी उसका जो वीडियो लोगों ने डाला हुआ है वो करेक्ट वीडियो नहीं है। उसमें मैं हूँ और मैं वहां पे चिल्ला भी रही हूँ, शाउट भी कर रही हूँ, इवन मैं फ्रस्ट्रेट होके बहुत चीजें बोल भी चुकी हूँ उस वीडियो में, जो कि मैं जानती हूँ। और पहली बात ये कि ये वीडियो एक मंथ पुरानी है जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीजें बोली। उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे, हमें नहीं पता था कि उस दिन वीआईपी मूवमेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है। हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे तो हमें 3-4 घंटे वहाँ सुबह से वहाँ पे वेट करते हुए हो गए। फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर और कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला कि मैम 1 घंटा और लगेगा। फिर हम लोगों ने 1 घंटा और वेट किया, वैसे वेट करते करते 6 घंटे हो गए। तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है, फौजी और शायद जो वहां पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ। हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए, हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की। उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई, मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 6 घंटे हो गए हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे, कुछ नहीं जा पा रहे, आपके वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है? लेकिन उस चीज को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर, मैं कभी सोशल मीडिया पर नहीं रही।
4: जी जी बिल्कुल मैडम, लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो जो जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है, ये आपके शब्द हैं, हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम, ये लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज जोन है, उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन जी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा, यू नो माई सैलरीज पे योर टैक्सेस, और एंड इन दिस वीडियो वी कैन क्लियरली सी कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, तो इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये 1 महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि कोई किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए, वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है।
5: जी हाँ, मैंने ये सब चीजें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज्यादा गलत था, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा मेरा भी फोन ओपन है। बट जब वो चीजें सारी खत्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी क्योंकि गलती हमारी है, अगर वीआईपी मूवमेंट था हमें नहीं पता था, प्रेस स्टेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया, मैंने उन सर से वहां सॉरी भी बोला था जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है, वहां की पुलिस को भी सॉरी बोला था। अब मैं दोबारा

0: आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, J&K की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को, उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुंची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वजह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर या कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ कि मैं पॉपुलर होने के लिए किसी के साथ ऐसी चीजें करूंगी। मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, 25 साल की लड़की हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तहे दिल से सबसे माफी मांगती हूँ, कृपा करके आपके माध्यम से मुझे माफी दिलवाई जाए और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ 100 बार 1000 बार, कृपा करके इस चीज को बंद किया जाए।
1: और मैं आपको ये रीअश्योरेंस देना चाहता हूँ मैडम कि आर्मी में कोई गुस्सा नहीं है आपके खिलाफ, कोई भी गुस्सा नहीं है, वो पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता है मैडम रोड क्लोज करने में, डिले करने में, ये फॉरवर्ड एरियाज में ये सब करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है। VIP मूवमेंट्स या सिक्योरिटी मूवमेंट्स, ये एक इनकन्वीनियंस है सबके लिए, और अल्टीमेटली आर्मी किसके लिए काम कर रही है मैडम, देश के लिए,
0: पब्लिक के लिए, सर हमारे लिए,
1: लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन, मैं भी एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं, हम सब इनकन्वीनियंस फेस करते हैं, आर्मी ये समझती है मैडम, ये बिल्कुल समझती है। मैं आखिरी सवाल आपको मैडम, आपकी फैमिली, आपकी परिवार, आपके पेरेंट्स, वो ठीक हैं इस ये सब वायरल होने के बाद, उनका क्या मेंटल स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं आपको?
0: सर वो सब लोग, उन्होंने फोन करके मुझे इतना सुनाया कि कहने लग गए कि तू तो कभी भी ऐसे ऑनलाइन कभी कोई चीज नहीं करती, तू तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उस दिन क्या हो गया तुझे, तू तो कभी इतने तेज बात भी नहीं करती, किसी से लड़ती भी नहीं है, मतलब मैं ऑलवेज ज्यादा सपोर्टिंग रहती हूँ, जो कैट्स और डॉग्स होते हैं जिनको लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं, मैं उनकी हेल्पिंग करती हूँ ऑलवेज। तो उन्होंने बोला तेरा हेल्पिंग नेचर है तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली। मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया कि ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, मुझे भी पीछे से बोला गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते, उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने इतना सब कुछ बोल दिया, तो उसके लिए मैं इसलिए बहुत सॉरी हूँ। मेरी फैमिली बहुत मेंटली बहुत इस टाइम डिस्टर्ब है, क्योंकि वो हैरस हो चुकी है, सारे रिश्तेदार जितने आस पड़ोस सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस वजह पे, क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है और मुझे इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, मुझे लोग बहुत बहुत चीज़ें बोल रहे हैं जबकि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, उनको व्यूज के लिए या किसी चीज के लिए वो मुझे यूज कर रहे हैं कोई नहीं, मुझे सिर्फ अपने देश की जनता और अपने जवान भाइयों से माफी मांगनी थी आपके माध्यम से, वो मैंने मांग ली, तो मेरे को अब थोड़ा बहुत दिल को सुकून है कि मैंने ये चीज करी।
1: मैडम हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, मैं सिर्फ फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक दो दिन की बात है, ये लोगों को गुस्सा आता है जब जब लोग ऐसे तस्वीर देखते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, आपको भी पता है, तो इसलिए जो आपने दिल से माफ़ी मांगी है, क्लैरिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, उसके लिए मैं आपको एडमायर करता हूं और NDTV पर आपकी बात रखी जाएगी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस।
2: Moving on, shifting our focus to other news now, Maharashtra has now started a statewide drive to check whether auto rickshaw and taxi drivers have a working knowledge of Marathi. RTO flying squads are carrying out checks, asking drivers basic questions in Marathi to assess their language skills. The drive follows the new motor vehicle rules requiring public transport drivers to have a working knowledge of Marathi. Drivers who fail the oral Marathi check are now being issued notices and given 1 month to learn the language.
3: ऐसा हमारा सिलेबस फिक्स है मराठी एग्जाम का वर्किंग नॉलेज चेक करने के लिए, तो इसके अंदर एक पैसेंजर और एक ड्राइवर, इनका कॉन्वर्सेशन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, तो इसमें हमें उनको पूछता हूँ कि मेरा या ठिकाने जाए चाहे, तो उन्होंने ऐसा बोलना चाहिए कि या बसा, मराठी में माझा जेव्हा बोलतो आहे, मीटर लावू का, हा मीटर चालू केले आहे, रिक्षा स्टँड कुठे आहे, तर जवळ आहे, समोर आहे, तर असे दोन, हे जो 15 क्वेश्चन का सिलेबस आहे उनके अंदर हम उनको पूछते हैं, उनको उन्होंने उसमें सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर दिया तो हम उनको पास करते हैं।
2: In other news, US ambassador to India Sergio Gore is in Jammu and Kashmir making a high profile visit that has

0: और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधारकर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है।
1: सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात को दोहराया गया कि जो 1937 का वंदे मातरम पर जो रेजोल्यूशन था पहले दो अंतरे गाने का, वो उसी का पालन करेगी कांग्रेस। अब बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है।
2: क्या देश के नायक कौन है? बीजेपी है इस देश का नायक। इस देश के नायक सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब हैं। इनके खिलाफ जाएंगे हम, जाएं जिनको जाना है उनके खिलाफ। ये तब भी इनकी खिलाफत करते थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी कर रहे हैं। ये हैं असली देश के दुश्मन, हमें इनसे लड़ना आता है। पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे।
1: आप अपनी परंपरा का पालन करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि
2: अपनी परंपरा नहीं है, इस देश की संस्कृति है। इस देश की संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की है।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि नई मुस्लिम लीग हो गई है।
2: अरे छोड़िए, ये संघी लोग, देश के दुश्मन, गद्दार लोग, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे? इनको इस देश से निकालना जरूरी हो गया अब।
3: Slipping into a very short break, I'm right back. Lots more lined up.
4: I'm in Ahmedabad's Gift City today. From the lens of the regulator, how close do you think you are at this moment to achieving the dream of being Singapore, Hong Kong, New York, or London when it comes to being an international center of finance?
5: What are global investors looking at? Policy stability, there's legal certainty, and there's also tax certainty. In the last 5 years, the government of India has pretty much put in place all these things. Our regulations are now benchmarked to the best in the world.
4: Let's take the passporting of KYC, Know Your Customer norms. Even that doesn't seem to be as easy as a lot of international bankers expect.
5: We are also doing a pilot for unassisted Aadhaar face authentication or NRIs.
4: You've seen this model operate internationally. How far has India been able to evolve with Gift City till this moment in time?
6: Started as a place for corporates, now wealth managers, individuals, so private banking, a lot is happening.
4: Which are the instruments that you think that have now come up around Gift City in a way that people really need to know it, and if they don't, they're missing out?
6: Let's say you're going to travel. Why do you want to pay a markup on your money you spend out, right? You should be able to spend directly from your bank account, and the bank account should be ideally able to recognize the currency.
4: चलिए, हमारे तो कुलचे आ गए, आप और मैं तो ये खा लेंगे, बट ऑल दीज इंटरनेशनल फैंसी पैंट HSBC टाइप बैंकर्स, आई डाउट दे विल बी ओके विद दीज कुलचास।
6: आई एग्री विद यू दैट सोशल इंफ्रा बनते बनते बनेगा, स्पीड काफी है बनने में। पहले तो ये कुलचे भी नहीं थे, अभी कुलचे तो बढ़िया आ गए हैं।
7: अ वर्ल्ड ऑफ क्वेश्चंस, ideas that challenge the ordinary, conversations that connect countries and cultures. Where different worlds find common ground, NDTV World brings Nepal's ideas to the world.

0: Welcome back and shifting our focus to a viral story of a young girl from Itanagar in Arunachal Pradesh, which has now gone viral after she spoke out against being called Chinese because of her appearance. Her emotional response, firmly asserting that she is Indian, has once again highlighted the racial stereotypes faced by people from the Northeast. Take a listen.
1: 4-year-old Tinkle from Arunachal Pradesh has gone super viral. She's got the entire country in tears, cooing with affection over her video where she, with a very, very serious face, says, "Don't call me Chinese, I am Indian." She has won hearts everywhere in the country, and I am so honored, so happy to be joined today by little Tinkle. Or Tinkle ki ma Ayum is also with us. Ayum ji, pranam. Tinkle ka video itna viral ho gaya hai, to mera pehla sawal Tinkle se hi hai. Tinkle, aapne dekha aapka video itna viral ho gaya hai India mein? Aapne dekha wo? Us video mein aap kya bol rahe hain, Tinkle?
2: Kya bola tha,
1: bol do.
2: Kya main kya bola tha?
1: कौन बोल रहे आपको चाइनीज? आप तो इंडियन है, कौन बोल रहे आपको चाइनीज?
3: भैया
1: नहीं, आप तो बिल्कुल इंडियन हो टिंकल, आप तो हमारे जैसे हैं इंडियन. आयुम जी, ये आइडिया कहाँ से आया? टिंकल ने ये वीडियो कैसे बनाया, क्यों बनाया, उनकी उसके मन में क्यों था ये?
2: हमको भी इतना आइडिया नहीं था. तो टिंकल का एक वीडियो था, आइसक्रीम खाने वाला वीडियो जो, तो वो आइसक्रीम वीडियो में टिंकल जो हिंदी बोला था, तो एक आदमी जो टिंकल को कमेंट किया है, ये चाइनीज बच्चा क्यों हिंदी बोल रहा है बोल के, तो टिंकल को दुखी हो गया, तो टिंकल ने वीडियो बना लिया.
1: टिंकल, आपको बुरा लगा ये कमेंट पढ़कर इंस्टाग्राम में? आपको बुरा लगा?
2: आपको आदमी शैलिश बोले तो बच्चा लगे ना, बुरा लगा?
3: बुरा नहीं,
1: नहीं, मुझे भी बुरा लगता अगर ऐसे कोई कमेंट करता तो. और टिंकल, हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें आप नेशनल एंथम गाते हैं, आप सल्यूट करते हैं, आप तिरंगा को सल्यूट करते हैं, तो आप काफी देश प्रेमी हैं. इंडिया को बहुत प्यार करते हैं आप टिंकल? और टिंकल, आपके पापा पुलिस में हैं, है ना? तो आपके पापा यूनिफॉर्म में होते हैं, हमने देखा है आपके फोटोज इंस्टाग्राम पर यूनिफॉर्म पहनते हुए, और आपका भी एक यूनिफॉर्म में एक वीडियो है तिरंगा को सल्यूट करते हुए. एक बार हमारे लिए, देश के लिए नेशनल एंथम गाओ टिंकल, अगर आप कर सकते हो तो नेशनल एंथम हम सुनना चाहेंगे आपसे. यस, स्टैंडिंग.
2: Yeah, not a man. Yeah, not a man.

0: भैया।
1: नहीं, आप तो बिल्कुल इंडियन हो टिंकल, आप तो हमारे जैसे हैं इंडियन।
0: हम इंडिया है।
1: आयुम जी, ये आइडिया कहाँ से आया? टिंकल ने ये वीडियो कैसे बनाया, क्यों बनाया, उनकी उसके मन में क्यों था ये?
2: वो हमको भी इतना आइडिया नहीं था, तो टिंकल का एक वीडियो था आइसक्रीम, आइसक्रीम खाने वाला वीडियो जो, तो वो आइसक्रीम वीडियो में टिंकल जो हिंदी बोला था, तो एक आदमी जो टिंकल को कमेंट किया है ये चाइनीज बच्चा क्यों हिंदी बोल रहा है बोल के, तो टिंकल को दुखी हो गया, तो टिंकल ने वीडियो बना लिया।
1: टिंकल, आपको बुरा लगा ये कमेंट पढ़कर इंस्टाग्राम में? आपको बुरा लगा?
2: आपको आदमी शैलिश बोले तो बच्चे लगे ना, बुरा लगा?
0: बुरा ना है।
1: नहीं, मुझे भी बुरा लगता अगर ऐसे कोई कमेंट करता तो। और टिंकल, हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें आप नेशनल एंथम गाते हैं, आप सल्यूट करते हैं, आप तिरंगा को सल्यूट करते हैं, तो आप काफी देश प्रेमी हैं। इंडिया को बहुत प्यार करते हैं आप टिंकल। और टिंकल, आपके पापा पुलिस में हैं, है ना?
0: मेरा पुलिस बनते।
1: तो आपके पापा यूनिफॉर्म में होते हैं, हमने देखा है आपके फोटोज इंस्टाग्राम पर यूनिफॉर्म पहनते हुए, और आपका भी एक यूनिफॉर्म में एक वीडियो है तिरंगा को सल्यूट करते हुए। एक बार हमारे लिए, देश के लिए नेशनल एंथम गाओ टिंकल, अगर आप कर सकते हो तो नेशनल एंथम हम सुनना चाहेंगे आपसे। यस, स्टैंडिंग।
2: जय
0: जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय

0: सल्यूट टू यू ट्विंकल, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमको, सबने सुना आपको एनडीटीवी पर और देश में, और हम बहुत सारे शुभकामनाएं देते हैं आपको। नमस्ते ट्विंकल, नमस्ते आयुम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू, जय हिंद,
1: थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।
2: On that note, we slip into a very short break. Come right back, lots more lined up for you here on NDTV.

0: मंत्री यहाँ से कैसे निकलेगा? We are Gen Z. We are not tolerating this nonsense. We are not tolerating this nonsense. आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे?
1: बैठूंगा.
0: चलो
1: चलो
0: कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ियों, चलो.
2: वो कश्मीर एयरपोर्ट नहीं उतरे हो?
0: हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने. कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं. देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, आप अपना नाम भी नहीं बताया और वहाँ चले गए. ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है. यहाँ पर कोई नहीं
2: हिलेगा.
0: आपने
2: उकसाया
0: था. ओके हम किसी को नहीं छोड़ेंगे. हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं. ये लोग हमसे ऊपर हो गए. अब आपका जो भी वो था, मैंने उसकी वीडियो बनाई. अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना.
3: Well, this lady in this video has now spoken to NDTV's managing editor Shiv Arur. Take a look.
4: What happened? Because this video is viral. You are seen on camera, you know, shouting at security personnel, saying things like, "We are Gen Z. You know, how dare you do this? My taxes pay your salaries." There is a lot of anger that has come out, madam, over that video. I want your side of the story. What happened? Tell us.
5: Hello. उस दिन जो चीजें हुई थी, उसका जो वीडियो लोगों ने डाला हुआ है, वो करेक्ट वीडियो नहीं है. उसमें मैं हूँ और मैं वहां पे चिल्ला भी रही हूँ, शाउट भी कर रही हूँ. इवन मैं फ्रस्ट्रेट होके बहुत चीजें बोल भी चुकी हूँ उस वीडियो में, जो कि मैं जानती हूँ. और पहली बात ये कि ये वीडियो 1 मंथ पुरानी है, जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है. जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीजें बोली. उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे. हमें नहीं पता था कि उस दिन VIP मूवमेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है. हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, तो हमें 3-4 घंटे वहाँ सुबह से वहाँ पे वेट करते हुए हो गए. फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर और कितना टाइम लगेगा. उन्होंने बोला कि मैम 1 घंटा और लगेगा. फिर हम लोगों ने 1 घंटा और वेट किया. वैसे वेट करते करते 6 घंटे हो गए. तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है, फौजी और शायद जो वहां पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ. हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए. हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की. उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई. मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 6 घंटे हो गए, हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे, कुछ नहीं जा पा रहे. आपके VIP मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है? लेकिन उस चीज को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर. मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं रही.
4: जी जी बिल्कुल मैडम. लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो जो जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है. ये आपके शब्द हैं. हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम. लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज जोन है. उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन जी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा, यू नो माई सैलरीज पे योर टैक्सेस. और एंड इन दिस वीडियो वी कैन क्लियरली सी कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं. तो इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है. मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये 1 महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि कोई किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए. वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है.
5: जी हाँ, मैंने ये सब चीजें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ. क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज्यादा गलत था. क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, मेरा भी फोन ओपन है. बट जब वो चीजें सारी खत्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी क्योंकि गलती हमारी है. अगर VIP मूवमेंट था, हमें नहीं पता था, प्रेस स्टेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया. मैंने उन सर से वहां सॉरी भी बोला था, जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है. वहां की पुलिस को भी सॉरी बोला था. अब मैं दोबारा आपके माध्यम

0: से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, जेएंडके की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को। उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुंची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वजह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर या कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ कि मैं पॉपुलर होने के लिए किसी के साथ ऐसी चीजें करूंगी। मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, 25 साल की लड़की हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तहे दिल से सबसे माफी मांगती हूँ। कृपा करके आपके माध्यम से मुझे माफी दिलवाई जाए और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ 100 बार 1000 बार, कृपा करके इस चीज को बंद किया जाए।
1: और मैं आपको ये रिएश्योरेंस देना चाहता हूँ मैडम कि आर्मी में कोई गुस्सा नहीं है आपके खिलाफ, कोई भी गुस्सा नहीं है, वो पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता है मैडम रोड क्लोज करने में, डिले करने में, ये फॉरवर्ड एरियाज में ये सब करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है। VIP मूवमेंट्स या सिक्योरिटी मूवमेंट्स, ये एक इनकन्वीनियंस है सबके लिए। और अल्टीमेटली आर्मी किसके लिए काम कर रही है मैडम? देश के लिए,
0: पब्लिक के लिए, सर हमारे लिए।
1: लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन, मैं भी एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं, हम सब इनकन्वीनियंस फेस करते हैं। आर्मी ये समझती है मैडम, ये बिल्कुल समझती है। मैं आखिरी सवाल आपको मैडम, आपकी फैमिली, आपके परिवार, आपके पेरेंट्स वो ठीक हैं इस ये सब वायरल होने के बाद? उनका क्या मेंटल स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं आपको?
0: सर वो सब लोग, उन्होंने फोन करके मुझे इतना सुनाया कि कहने लग गए कि तू तो कभी भी ऐसे ऑनलाइन कभी कोई चीज नहीं करती, तू तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उस दिन क्या हो गया तुझे, तू तो कभी इतने तेज बात भी नहीं करती, किसी से लड़ती भी नहीं है, मतलब मैं ऑलवेज ज्यादा सपोर्टिंग रहती हूँ, जो कैट्स और डॉग्स होते हैं जिनको लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं मैं उनकी हेल्पिंग करती हूँ ऑलवेज। तो उन्होंने बोला तेरा हेल्पिंग नेचर है तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली। मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया कि ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, मुझे भी पीछे से बोला गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते, उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने इतना सब कुछ बोल दिया। तो उसके लिए मैं इसलिए बहुत सॉरी हूँ, मेरी फैमिली बहुत मेंटली बहुत इस टाइम डिस्टर्ब है क्योंकि वो हैरस हो चुकी है, सारे रिश्तेदार जितने आस पड़ोस सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस वजह पे, क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है और मुझे इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, मुझे लोग बहुत बहुत चीज़ें बोल रहे हैं जबकि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, उनको व्यूज के लिए या किसी चीज के लिए वो मुझे यूज कर रहे हैं कोई नहीं, मुझे सिर्फ अपने देश की जनता और अपने जवान भाइयों से माफी मांगनी थी आपके माध्यम से, वो मैंने मांग ली, तो मेरे को अब थोड़ा बहुत दिल को सुकून है कि मैंने ये चीज करी।
1: मैडम हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक दो दिन की बात है, ये लोगों को गुस्सा आता है जब लोग ऐसे तस्वीर देखते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, आपको भी पता है। तो इसलिए जो आपने दिल से माफ़ी मांगी है, क्लैरिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, उसके लिए मैं आपको एडमायर करता हूं और NDTV पर आपकी बात रखी जाएगी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस।
2: Moving on, shifting our focus to other news now, Maharashtra has now started a statewide drive to check whether auto rickshaw and taxi drivers have a working knowledge of Marathi. RTO flying squads are carrying out checks asking drivers basic questions in Marathi to assess their language skills. The drive follows the new motor vehicle rules requiring public transport drivers to have a working knowledge of Marathi. Drivers who fail the oral Marathi check are now being issued notices and given 1 month to learn the language.
3: ऐसा हमारा सिलेबस फिक्स है मराठी एग्जाम का वर्किंग नॉलेज चेक करने के लिए, कि इसके अंदर एक पैसेंजर और एक ड्राइवर इनका कॉन्वर्सेशन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें हम, मैं उनको पूछता हूँ कि मेरा या ठिकाणी जायचा है, तर उन्होंने ऐसा बोलना चाहिए कि या बसा, मराठी में माझा जवाब बोलतोय, मीटर लावू का, हा मीटर चालू केले आहे, एक्सा स्टँड कुठे आहे, जवळ आहे, समोर आहे, तर असे दोन, ये जो 15 क्वेश्चन का सिलेबस आहे उनके अंदर हम उनको पूछते हैं, उनको उन्होंने उसमें सैटिस्फैक्टरी आंसर दिया तो हम उनको पास करते हैं।
2: In other news, US ambassador to India Sergio Gore is in Jammu and Kashmir making a high profile visit that has drawn attention in New Delhi and Islamabad as well. Gore described Jammu and Kashmir as an important part of India, praised the government's steps in the region and indicated the US may reevaluate its travel advisory. Well, Congress has now welcomed Gore's remarks, saying that Jammu and Kashmir is an integral part of India and that nobody needs to remind the country of this. Pakistan has reacted sharply, summoning the top US diplomat and lodging a formal demarche over Gore's comments. This is the first visit by top US diplomat to Jammu and Kashmir, that's after Operation Sindoor and the abrogation of Article 370.
4: Everybody here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. Last thing I'll share with you is the United States puts out travel warnings, and every so often we reevaluate those travel warnings. I cannot make any big announcements here today, but it is something we're gonna look at. New Delhi, the chief minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer.
5: We know that that's very good that he's saying it, but this is something we have been insisting for a long time.
6: Kashmir is an integral part of India, and they must revalidate their, you know, travel advisory. It's part of India, so US should realize.
7: देखो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, एक अंग है हिंदुस्तान. तो उसको हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, किसी और को याद दिलाने की जरूरत नहीं है. हम लोग मानते हैं कि हमारा अटूट हिस्सा.
8: Well, I mean, the visit is significant because this is the first time that we've had a U.S. ambassador travel there since Operation Sindoor. There have been previous U.S. ambassadors that have visited the region, but there has been some time. And I think particularly in light of the fact that the Trump administration has taken a bit of an unconventional approach to the issue in terms of President Trump repeatedly claiming that he mediated the ceasefire between India and Pakistan last year, and also given President Trump's comment last year that he would like to help the two sides, find a solution to Kashmir. You know, these are things that are very unusual for U.S. policy. So against that backdrop of an unconventional administration, I think it was it's notable that we have the U.S. ambassador traveling to Kashmir against that backdrop.
2: Meanwhile, the political row over Vande Mataram has intensified, with the Congress asserting its stand on the national song. Union Home Minister Amit Shah has now launched a scathing attack on Congress and said that Congress opposed Mataram in 1937 for appeasement politics, and now they're doing it again. He also urged people to unite against Congress's move. And this, of course, comes after, at the CWC meeting, sources say a resolution was passed on this very issue, with a consensus to sing the first two stanzas of Vande Mataram. The party is also likely to issue a fresh statement referring to the 1937 CWC resolution. Congress said that the party would abide by the decision taken by its leadership in 1937 and that there was no confusion over its position as well.
9: कल कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है. उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के दो ही छंद गाने का फैसला किया है. मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम एपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी, और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी, और अंततोगत देश का विभाजन हुआ, और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है।
10: सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात को दोहराया गया कि जो 1937 का वंदे मातरम पर जो रेजोल्यूशन था पहले दो अंतरे गाने का, वो उसी का पालन करेगी कांग्रेस। अब बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं है, मुस्लिम लीग है।
11: क्या इस देश के नायक कौन है? बीजेपी है इस देश का नायक। इस देश के नायक सरदार पटेल, सी राजगोपाल आचार्य, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब हैं। इनके खिलाफ जाएंगे हम, जाएं जिनको जाना है उनके खिलाफ। ये तब भी इनकी खिलाफत करते थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी कर रहे हैं। ये हैं असली देश के दुश्मन। हमें इनसे लड़ना आता है, पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे।
10: आप अपनी परंपरा का पालन करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि
11: नहीं, परंपरा नहीं है, इस देश की संस्कृति है। इस देश की संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की है।
10: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि नई मुस्लिम लीग हो गई है।
11: अरे छोड़िए, ये संघी लोग, देश के दुश्मन, गद्दार लोग, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे? इनको इस देश से निकालना जरूरी हो गया अब।
2: Slipping into a very short break, come right back, lots more lined up.
12: Launch control, 0 to 100.
13: This isn't just about cars and bikes, this is about how you move.
14: This car makes no sense, yet it makes every sense.
15: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
16: Your friend said, ye le le. We said, maybe not.
17: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
18: Across the country.
19: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Yeah. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now

0: Focus to a viral story of a young girl from Itanagar in Arunachal Pradesh, which has now gone viral after she spoke out against being called Chinese because of her appearance. Her emotional response, firmly asserting that she is Indian, has once again highlighted the racial stereotypes faced by people from the Northeast. Take a listen.
1: 4-year-old Tinkle from Arunachal Pradesh has gone super viral. She's got the entire country in tears, cooing with affection over her video where she, with a very, very serious face, says, "Don't call me Chinese, I am Indian." She has won hearts everywhere in the country, and I am so honored, so happy to be joined today by little Tinkle. Or Tinkle ki ma Ayum is also with us. Ayum ji, pranam. Tinkle ka video itna viral ho gaya hai, to mera pehla sawal Tinkle se hi hai. Tinkle, aapne dekha aapka video itna viral ho gaya hai India mein? Aapne dekha wo? Us video mein aap kya bol rahe hain, Tinkle?
2: Kya bola tha,
1: bol do. Kya main kya
2: bola tha?
3: भैया हमको एक भैया हमको चाइनीज बोले।
1: कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज? आप तो इंडियन हैं, कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज?
3: एक भैया।
1: नहीं नहीं आप तो बिल्कुल इंडियन हो टिंकल, आप तो हमारे जैसे हैं इंडियन।
3: हम इंडिया है।
1: आयुम जी, ये आइडिया कहाँ से आया? टिंकल ने ये वीडियो कैसे बनाया, क्यों बनाया, उनकी उसके मन में क्यों था ये?
2: हमको भी इतना आइडिया नहीं था, तो टिंकल का एक वीडियो था आइसक्रीम खाने वाला वीडियो जो, तो वो आइसक्रीम वीडियो में टिंकल जो हिंदी बोला था, तो एक आदमी जो टिंकल को कमेंट किया है, ये चाइनीज बच्चा क्यों हिंदी बोल रहा है बोल के, तो टिंकल को दुखी हो गया, तो टिंकल ने वीडियो बना लिया।
1: टिंकल, आपको बुरा लगा ये कमेंट पढ़कर इंस्टाग्राम में? आपको बुरा लगा?
2: आपको आदमी शैलिश बोले तो बच्चा लगे ना, बुरा लगा?
3: बुरा नहीं,
1: नहीं मुझे भी बुरा लगता अगर ऐसे कोई कमेंट करता तो। और टिंकल, हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें आप नेशनल एंथम गाते हैं, आप सल्यूट करते हैं, आप तिरंगा को सल्यूट करते हैं, तो आप काफी देश प्रेमी हैं। इंडिया को बहुत प्यार करते हैं आप टिंकल? और टिंकल, आपके पापा पुलिस में हैं, है ना? तो आपके पापा यूनिफॉर्म में होते हैं, हमने देखा है आपके फोटोज इंस्टाग्राम पर यूनिफॉर्म पहनते हुए, और आपका भी एक यूनिफॉर्म में एक वीडियो है तिरंगा को सल्यूट करते हुए। एक बार हमारे लिए, देश के लिए नेशनल एंथम गाओ टिंकल, अगर आप कर सकते हो तो नेशनल एंथम हम सुनना चाहेंगे आपसे। यस, स्टैंडिंग।
2: जय जन गण मन।

0: सल्यूट टू यू ट्विंकल, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमको, सबने सुना आपको NDTV पर और देश में, और हम बहुत सारे शुभकामनाएं देते हैं आपको। नमस्ते ट्विंकल, नमस्ते आयुम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, जय हिंद।
1: थैंक यू,
2: बाय बाय।
3: On that note, we slip into a very short break. Come right back, lots more lined up for you here on NDTV.

0: Good evening and welcome. You're on India Matters this Thursday night with me, Shiv Arur. As always, it's amazing to have you. We've got a big follow-up tonight on a story that everyone is talking about, whether you're triggered or whether you want to see what happened to the girl in that video. She has joined me today and spoken only to me today. That's what NDTV stands for, when it really matters. Let's get you straight to the top stories at 9. Like I said, the lady in that viral Ladakh tourist video has spoken to me, and you're going to see her entire interview right here on India Matters. She apologizes, says she has been depressed since then, watching the viral fallout of her obnoxious rant against the Indian Army and the forces. Supreme Court forms panel to examine use of force by the police in Delhi's July 20th protest. 5-member committee headed by former Supreme Court Judge R. Subhash Reddy to conduct an independent inquiry. Home Minister Amit Shah slams the Congress's Vande Mataram 2-stanza stand, calls Congress anti-national, says insulting the national song and the nation is the Congress's only agenda. Tamil Nadu Chief Minister Vijay raises the NEET issue as well as questions delimitation during Home Minister Amit Shah's South huddle. D.K. Shivakumar raises the Mekedatu dam issue. Former Tehelka editor-in-chief Tarun Tejpal has moved Supreme Court, challenging the Bombay High Court's verdict that upheld his conviction and sentenced him to 10-year rigorous imprisonment in the 2013 rape case. He is supposed to surrender by the 3rd of September. Coming up on the show tonight, you're about to watch the only response and only interview of the woman who was caught on camera in a viral rant in Ladakh. You'll hear her apologize. You'll hear her side of the story. No matter where you stand, it's the story that's gone the most viral this week. And you will see it only here on India Matters in just a moment. Also coming up, the war over Vande Mataram between the Congress and the BJP. It has exploded now with Amit Shah himself stepping into the ring. I ask, are there no bigger battles to fight? Why has this occupied so much mind space? The big face-off comes up, and I have a surprise for you right at the end of tonight's India Matters. Thanks as always for being with me. Let's get you straight to our top story. I know you don't need reminding, viewer, because you watch India Matters every night. But yesterday on this broadcast, we asked some tough questions while putting the spotlight on a story that went beyond just the virality of what people saw in it. We critiqued this viral video of a young woman confronting security personnel in Ladakh, screaming, "We are Gen Z," as if it gave her the license to expect entitled privilege. We questioned the tone, the confrontation, and the optics of taking on men in uniform who are stationed in one of the most unforgiving terrains on earth to keep this country safe. Many agreed with us. Many pushed back. Today, that same young woman is on our show. She spoke only to me, giving her version of what really unfolded on the ground. Television news cannot simply be about picking a side, delivering a lecture, and shutting the door on the other perspective. And on NDTV, we always return to the story when it really matters. Our security forces deserve unyielding respect that is non-negotiable. But citizens, especially young people in sensitive regions, have voices, frustrations, and context that raw social media videos often leave out. We didn't soften our questions today. She didn't hold back her answers. Here she is, live with me.
1: We are not tolerating this nonsense. We are not tolerating this nonsense. आप लोग मुझे बताओ आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो
2: चलो
1: कैसे रुकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ियों, चलो
2: वो कश्मीर एयरपोर्ट पे नहीं उतरे
1: हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर।
3: and speaking out for the first time and joining me live here on NDTV for the first time since her video from Ladakh went completely viral is the woman who was on camera having that big angry meltdown after there was a road closure for a few hours in that forward area. Madam, at your request, we are not taking your name out of respect for your request. But I would like to start by asking you what happened, because this video is viral. You are seen on camera, you know, shouting at security personnel, saying things like, "We are Gen Z. You know, how dare you do this? My taxes pay your salaries." There is a lot of anger that has come out, madam, over that video. I want your side of the story. What happened? Tell us.
4: Hello. उस दिन जो चीजें हुई थी उसका जो वीडियो लोगों ने डाला हुआ है वो करेक्ट वीडियो नहीं है. उसमें मैं हूँ और मैं वहां पे चिल्ला भी रही हूँ, शाउट भी कर रही हूँ. इवन मैं फ्रस्ट्रेट होकर बहुत चीजें बोल भी चुकी हूँ उस वीडियो में, जो कि मैं जानती हूँ. और पहली बात ये कि ये वीडियो एक मंथ पुरानी है जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ. मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीजें बोली. उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे. हमें नहीं पता था कि उस दिन VIP मूवमेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है. हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे तो हमें 3-4 घंटे वहाँ सुबह से वहाँ पे वेट करते हुए हो गए. फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर और कितना टाइम लगेगा. उन्होंने बोला कि मैम 1 घंटा और लगेगा. फिर हम लोगों ने 1 घंटा और वेट किया. वैसे वेट करते करते 6 घंटे हो गए. तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है, फौजी और शायद जो वहां पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ. हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए. हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की. उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई. मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 6 घंटे हो गए, हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे, कुछ नहीं जा पा रहे. आपके VIP मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है. लेकिन उस चीज को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर. मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं रहती.
3: जी जी बिल्कुल मैडम, लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो जो जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है. ये आपके शब्द हैं. हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम. ये लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज जोन है. उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन जी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा, यू नो माई सैलरीज पे योर टैक्सेस. और एंड इन दिस वीडियो वी कैन क्लियरली सी कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं. तो इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है. मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये 1 महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए. वो सब रहने दीजिए, ये तो आप

0: के शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है?
1: जी हाँ, मैंने ये सब चीजें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज्यादा गलत था, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा मेरा भी फोन ओपन है। बट जब वो चीजें सारी खत्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि गलती हमारी है। अगर VIP मूवमेंट था, हमें नहीं पता था, प्रेस्टेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया। मैंने उन सर से वहाँ सॉरी भी बोला था, जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है, वहाँ की पुलिस को भी सॉरी बोला था। अब मैं दोबारा आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, J&K की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को, और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को, उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुंची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वजह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर या कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ कि मैं पॉपुलर होने के लिए किसी के साथ ऐसी चीजें करूंगी। मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, 25 साल की लड़की हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तहे दिल से सबसे माफी मांगती हूँ। कृपा करके आपके माध्यम से मुझे माफी दिलवाई जाए और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ 100 बार 1000 बार, कृपा करके इस चीज को बंद किया जाए।
0: मैडम बिल्कुल, और आप NDTV पर बोल रहे हैं, ये इंडिया का सबसे बड़ा TV नेटवर्क है, तो
1: जी हाँ।
0: जिन ऑडियंस ने आपको देखा है, ये जो वायरल वीडियो देखा है, आपकी ये जो माफी है, आपकी ये जो रिग्रेट है, सब देखेंगे मैडम। मैं इसलिए आपको इस नेटवर्क पे नहीं बुलाया हूँ कि आपको आप पर शाउट करूँ या आपको स्कोल्ड करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी एक सिटीजन है मैडम, आपने जो फ्रस्ट्रेशन में किया है वो ऑलरेडी वायरल जा चुका है, इसलिए ये आपके लिए एक मौका है कि एक्सप्लेन करने के लिए क्या हुआ था। क्योंकि, और मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैडम, क्योंकि
1: जी सर,
0: सबको ये फ्रस्ट्रेशन होता है मैडम, किसको yes. नहीं होता है, VIP मूवमेंट या मिलिट्री मूवमेंट को लेकर किसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है ना,
1: तो जी इसलिए हाँ।
0: और, लेकिन कुछ शब्द जब हम बोलते हैं वो वायरल हो जाते हैं, और इसी माहौल में बहुत बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं। ये 3 शब्द जो आपने बोला, VR Gen Z, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे, रिस्पेक्टफुली मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, आपने ये शब्द क्यों चूज किए, VR Gen Z? ये माहौल जो चल रहा है जेनजी प्रोटेस्ट को लेकर, इसलिए आपने चुना वो शब्द?
1: सर मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से वो वर्ड अचानक से आ गया, क्योंकि पीछे से बहुत लोग प्रोवोक कर रहे थे मेरे को कि हमारे साथ ये सब चीज बहुत होती है, आप लोग टूरिस्ट हैं, आपके साथ पहली बार हुई, आपको फेस करनी पड़ रही है, हम लोग रोज ये सब चीजें फेस करते हैं, ये सब चीजें उन्होंने मेरे को बताई। तो उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि अगर मैं ये सब चीजें बोलूंगी तो ये सब प्रॉब्लम हो जाएगी, बट ये चीज अचानक से हो गई। तो मैं अब क्या बोली इस चीज को, मेरा कोई अटेंशन नहीं था कि जेन जी का नाम लेके मैं कोई चीज ऐसा करती, ये बस गलती से चीज हो गई है सर।
0: देखिए मैडम, जब हम इमोशनल और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो बात निकल जाती है, मैं समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, और इसलिए मैं आपको ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि आपने ये सब क्यों बोला। क्योंकि देखिए मैडम, हम भी ऑनलाइन होते हैं, हम भी गाली खाते हैं ऑनलाइन, और आपने इस 24 घंटे में बहुत कुछ देखा होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, क्या क्या लोग बोल रहे हैं आपके खिलाफ। मेरे शो कल मेरे शो पे भी कुछ वेटरन्स थे आपके लिए कुछ मैसेज दिए थे, आपने वो भी देखा होगा। लेकिन जब आप बोलते हैं कि कश्मीर में ये हुआ और अब ये यहाँ पे हो रहा है, ये भी आपका गुस्सा था, आप एक पॉइंट, यू वांटेड टू मेक अ पॉइंट, इसलिए आपके गुस्से में ये बोला।
1: सर वहाँ पीछे से लोग बोल रहे थे कि आप लोग टूरिस्ट हो, आपको ये सब फेस पहली बार करना पड़ रहा है तो आपको इतना बुरा लग रहा है, हम लोग रोज ये चीज फेस करते हैं उस वीडियो में, लेकिन वो चीज किसी ने दिखाई नहीं है जो पीछे से वहां जनता बोल रही थी, स्पेशली मेरे को टारगेट करके, मेरे को ही एज अ गर्ल मेरे को इतना बदनाम किया गया है, विक्टिम बनाया गया है, कि मैं उसके खिलाफ अब मैं क्या बोल सकती हूँ। मैं सिर्फ माफी मांग सकती हूँ, क्योंकि मेरे को ये सब चीजें नहीं आती कि मैं वायरल होने के लिए ये करूँ वो करूँ, मेरा कोई पब्लिक फिगर ही नहीं है तो मैं क्या वायरल होंगी सर, आप बताइए। मैं माफीनामा के लिए भी आपके चैनल के थ्रू ये चीज भेज रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं अपना माफीनामा भी कहीं से अपलोड कर सकूँ, इसलिए आपके माध्यम से मैं देश की जनता से जिनको बुरा लगा है उनसे भी सॉरी मांग रही हूँ, अपने इंडियन आर्मी से भी मांग रही हूँ, जिनकी वजह से हम लोग इतना फ्रीडमली जीते हैं, अगर वो लोग नहीं होते तो हम लोग तो घर से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सर मैं इसलिए आपके माध्यम से आगे अपनी माफी पहुंचाना चाहती हूं, बस और मैं कुछ नहीं चाहती हूं सर।
0: क्या आप जेंजी जो जनरेशन है मैडम, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है अभी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे इतना जो वायरल हुआ है, बहुत ऐसे जेंजी लोग हैं जो बोलते हैं कि ये जेंजी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम इसका खंडन करते हैं, हम इसको इसके खिलाफ हैं ऐसे बिहेवियर का। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जेंजी को बदनाम करने के लिए प्लांट हुआ है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियोरीज है मैडम आपके बारे में, ये सब बोला जा रहा है, तो इसके इसका रिप्लाई क्या देंगे आप?
1: सर मैं नहीं जानती कि इसका मैं क्या रिप्लाई दूं आपको, लेकिन जेंजी का जो मैंने वहाँ नाम लिया था वो मैंने किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया था या किसी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लिया था। वो फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया कि हम लोग जेंजी है, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं दिनों आपको पता है एक महीने पहले जंतर मंतर पे जो चीजें चल रही थी वो दिमाग में मेरे घर कर चुकी थी, जिसकी वजह से मेरे दिमाग ने पता नहीं क्या उस टाइम क्या मुझे नहीं समझ आ रहा क्या प्रॉब्लम हुआ कि मैंने उस टाइम वो मेरे मुंह से निकल गया वो वर्ड, जबकि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मेरे को क्या मतलब बनता है कि मैं वहां पे उस सिक्योरिटी जो वो थे वहां पे लोकल पुलिस में उनसे जेंजी बोलूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए मेरे कोई पर्टिकुलर किसी को पॉइंट नहीं था कि मैंने जेंजी को पॉइंट किया या किसी और को पॉइंट किया। मेरे बारे में लोग इतना गंदा गंदा कॉमेंट कर रहे हैं, बहुत उल्टे सीधे कॉमेंट कर रहे हैं, जिससे मेरी फैमिली मेरा सारा पूरा फ्यूचर खराब हो रहा है उस चीज की वजह से। इसलिए मैं आपके चैनल पे आई हूँ, जबकि मैं मेडिकली और फिजिकली अभी फिट नहीं हूँ कि मैं किसी से बात कर सकूँ, बट उसके बाद भी मैंने सोचा कि नहीं बोलना जरूरी है वरना लोगों को लगेगा कि मैं गलत हूँ।
0: पहले तो मैं आपसे आपको ये बोलना चाहता हूँ मैडम कि आप प्लीज रोइए मत, आप इमोशनल मत होइए, ये सब होता रहता है मैडम। ये इस सोशल मीडिया के ज़माने में एक चीज़ जो वायरल होता है एक दो दिन के लिए होता है, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं,
1: मेरे साथ अगर पहली बार हुई तो इसलिए थोड़ा मैं मेंटली बहुत हैरस हो गई। इवन मैं कल 19 तारीख को मैं साइबर क्राइम भी गई थी, मैंने वहां भी कंप्लेन दी कि सर मेरे साथ ये सब चीजें हो रही है। वहां मेरे को पैनिक अटैक आ गया, उन लोगों ने एम्बुलेंस भी बुलाई थी, मैं गई थी उनके पास, उन्होंने मेरे को रिसीविंग कंप्लेन भी दी कि जिसने भी आपका वीडियो इस तरीके से डाला है विदाउट परमिशन के या आपने जो भी वहां चिल्लाया, लेकिन आपका वीडियो इस तरीके से नहीं डालना चाहिए था क्योंकि गर्ल्स की प्राइवेसी, मेरा फेस हाइड नहीं किया था, जिसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन और मेंटली इतना हैरेस हो गई कि उन्होंने मेरे लिए एम्बुलेंस बुला ली थी, मेरी तबीयत इतनी खराब हुई थी।
0: मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं आपको मैडम कि जो वायरल हुआ है वो हट नहीं सकता है। अब आप भी जानते हैं, आप बोल रहे हैं कि आप पब्लिक फिगर नहीं हो, ये ठीक है, लेकिन जब इंटरनेट पे कुछ डलता है मैडम, आपको भी पता है कि वो वहीं पे रहता है, वायरल हो जाता है, लोग बात करेंगे उस पर, गुस्सा करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, आप सब आपको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं अभी। लेकिन मैं आपको दिल से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक इंडियन सिटीज़न है मैडम, ठीक है, आप कोई विलन नहीं हो। जो कुछ भी हुआ है आप इमोशनल हो सकते हो, आप डिप्रेस्ड हो सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि दो तीन दिन बाद ये हट जाएगा, क्योंकि आपने क्लैरिफाई किया है, आपने अपने आपके शब्द के लिए रिग्रेट व्यक्त किया है, आपने माफ़ी मांगी है इंडियन आर्मी से, और देखिए जब हम शो करते हैं NDTV पर, इंडियन आर्मी ने आपसे माफ़ी नहीं मांगा है, वो समझते हैं आपके फ्रस्ट्रेशन। कल हमारे शो में इंडियन आर्मी के वेटरन्स थे मैडम, उनका बोलना था कि हम समझते हैं नागरिकों का फ्रस्ट्रेशन, हम समझते हैं, तो इसलिए सेंसिटाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप आर्मी को क्या बोलेंगे मैडम, क्योंकि एक तस्वीर, एक पिक्चर, एक इमेज, एक वीडियो का बहुत महत्व होता है, वो वायरल होता है, लोगों के मेमोरी में रहता है मैडम, तो आप आर्मी को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आर्मी एक इमोशनल चीज़ है मैडम।
1: मैं आर्मी को पहले तो जय हिंद, अपने जवान भाइयों को जो मेरे भाई बाप सब कुछ हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपने घर में सेफली सो पाते हैं, सुबह उठ पाते हैं, आप लोग बॉर्डर पे रह के हम लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हम जैसे बदतमीज लोग फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी बोल देते हैं, जबकि आप लोग हमें कभी कुछ नहीं बोलते, हम ही लोग फ्रस्ट्रेशन में आपको हमेशा पॉइंट आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने जवान भाइयों से, तमाम इंडियन आर्मी से और JNK की आर्मी से भी दिल से माफी मांगती हूँ, मुझे छोटी बहन

समझ के मेरी बातों को आप प्लीज इग्नोर करें और मुझे माफ कर दें सर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने ये सब चीज बोली। मुझे ये चीज बहुत रियलाइज पहले भी हुई थी, तभी मैंने वो वीडियो कभी

0: अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता है मैडम रोड क्लोज करने में, डिले करने में, ये फॉरवर्ड एरियाज में ये सब करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है। VIP मूवमेंट्स या सिक्योरिटी मूवमेंट्स ये एक इनकन्वीनियंस है सबके लिए। और अल्टीमेटली आर्मी किसके लिए काम कर रही है मैडम? देश के लिए,
1: पब्लिक के लिए सर, हमारे लिए।
0: लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन, मैं भी एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं, हम सब इनकन्वीनियंस फेस करते हैं। आर्मी ये समझती है मैडम, ये बिल्कुल समझती है। मैं आखिरी सवाल आपको मैडम, आपकी फैमिली, आपकी परिवार, आपके पेरेंट्स वो ठीक हैं इस ये सब वायरल होने के बाद? उनका क्या मेंटल स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं आपको?
1: सर वो सब लोग, उन्होंने फोन करके मुझे इतना सुनाया कि कहने लग गए कि तू तो कभी भी ऐसे ऑनलाइन कभी कोई चीज नहीं करती, तू तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उस दिन क्या हो गया तुझे, तू तो कभी इतने तेज बात भी नहीं करती, किसी से लड़ती भी नहीं है, मतलब मैं ऑलवेज ज्यादा सपोर्टिंग रहती हूँ। जो कैट्स और डॉग्स होते हैं जिनको लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं, मैं उनकी हेल्पिंग करती हूँ ऑलवेज। तो उन्होंने बोला तेरा हेल्पिंग नेचर है तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली। मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया कि ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, मुझे भी पीछे से बोला गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते, उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने इतना सब कुछ बोल दिया। तो उसके लिए मैं इसलिए बहुत सॉरी हूँ। मेरी फैमिली बहुत मेंटली बहुत इस टाइम डिस्टर्ब है क्योंकि वो हैरस हो चुकी है। सारे रिश्तेदार, जितने आस पड़ोस, सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस वजह पे, क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है और मुझे इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, मुझे लोग बहुत बहुत चीज़ें बोल रहे हैं जबकि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, उनको व्यूज के लिए या किसी चीज के लिए वो मुझे यूज कर रहे हैं, कोई नहीं। मुझे सिर्फ अपने देश की जनता और अपने जवान भाइयों से माफी मांगनी थी आपके माध्यम से, वो मैंने मांग ली, तो मेरे को अब थोड़ा बहुत दिल को सुकून है कि मैंने ये चीज करी।
0: मैडम हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक दो दिन की बात है, ये लोगों को गुस्सा आता है जब लोग ऐसे तस्वीर देखते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, आपको भी पता है। तो इसलिए जो आपने दिल से माफ़ी मांगी है, क्लैरिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, उसके लिए मैं आपको एडमायर करता हूं और NDTV पर आपकी बात रखी जाएगी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम।
1: थैंक यू सर। थैंक यू।